0: इशारिया पाँच मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 35 मिनट और 22 सेकेंड हो चुके हैं। समाप्त करें प्रोग्राम सुबोगाही।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम सुबोगाही हेत चीज तुहंदिस खिदमत अंदर हाजिर। सामिन मोहतरम, कुरान करीम अंदर चु अल्लाह ताला सुंद इरशाद जील तुहि ब्रोह कनि कुरान करीम च तिलावत ही करन तुहि रुजु खामोश वलि बोजु कान दित ताकि अस पेट सब्दि अल्लाह ताला सुंद रहम।

أَلِفْ لَامَ

روز و شب سوزان درودا روز تو بر ذات اقدس روز و شب سوزان روز

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालन ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
2: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
2: क्या
3: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-112100 पर।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
11: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
10: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का ही उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
11: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, लाइव मॉर्निंग शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शौकीन हिलाल और मेरे साथ हैं
1: तस्लीम अख्तर। हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की सुबह पर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं ढेर सारी दुआओं के साथ, नई ख्वाहिशात के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बख़ैर आफियत होंगे। हिलाल, कैसे हैं आप?
0: जी, अल्लाह का करम, सब खैरियत से हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सामीन हैं सुबह सुबह जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ चुके होंगे वो भी खैर और आफियत से होंगे।
1: हिलाल, हमारे साथ आज जो तकनीकी टीम है उनका नाम बताएंगे अपने।
0: जी, इस ट्रांसमिशन में जो आज हमारे इंजीनियर्स हैं तारिक अहमद और अल्ताफ अहमद, और तकनीकी तावन दे रहे मोहम्मद अमीन, और इस ट्रांसमिशन की निगरानी का जो फरीजा है समीना शाह अंजाम दे रही है।
1: इन सब का हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि इनके ताउन के बगैर हमारा आपके साथ जुड़ना नामुमकिन है।
0: तो जी बिल्कुल।
1: हिलाल, कभी सोचा है कि ये सुबह, ये सूरज की पहली किरणें और ये जो हर रोज एक नई शुरुआत है, ये सब हमें क्यों मिलती हैं?
0: शायद इसलिए कि हम कल की उलझनों और भूल जाने वाली बातों से जरा सा किनारा कर सकें।
1: आज की सुबह की शुरुआत में हम समीन आप से, खुद से, एक दूसरे से एक सवाल करना चाहते हैं, या शायद ये एक शिकवा है।

0: ढूंढना भी मोबाइल ही
1: मोबाइल
0: है।
1: ही है।
0: ये हम सबके साथ होता है, हम मोबाइल हाथ में लिए पूरा घर छान मारते हैं कि मेरा फोन कहाँ है, और जब घर वाले बताते कि वो तो आपके हाथ में ही है तो एक अजीब सी हंसी और शर्मंदगी का एहसास भी होता है।
1: और ये इस बात की अलामत है कि हमारा दिमाग अब काम जो है खुदकार यानी ऑटो पायलट पर कर रहा है। कमरे में आकर ये भूल जाना कि यहाँ क्यों आए थे। अक्सर हम किसी मकसद से एक कमरे से दूसरे कमरे में जब जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार करते हैं जहन एकदम खाली हो जाता है। हम वहाँ खड़े सोच रहे होते हैं कि भी क्या छुसे थे, भी क्या करने आई होस। अचानक से दिमाग में सारी कात का सानी रहे, इंसान शुरू याद ही पेवान से भी क्या करने आई होस।
0: इसे नफ्सियाती जुबान में डोरवे इफेक्ट कहते हैं, जहां दिमाग एक माहौल से दूसरे माहौल में दाखिल होते हुए पुरानी मालूमात को वक्ती तौर पर डिलीट कर देता है।
1: बोलते हुए लफ्ज का अचानक गायब हो जाना, हम पूरी रवानी से बात कर रहे होते हैं हिलाल, लेकिन जुमले के एन दरमियान वो खास लफ्ज जहन से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। हम इसे मेरी जुबान पर है, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा।
0: बिल्कुल,
1: मैं चुजी पे स्पीड में क्या उस मगर मैं छुन सो लफ्ज याद पे वहां कि नहीं कर पाते हैं, हम उस लफ्ज को दोहरा नहीं पाते, हमारी जुबान पर नहीं चढ़ता। और ये मालूमात के समंदर में दिमाग के सर्च इंजन के कुछ लम्हों के लिए जाम हो जाना जैसा है।
0: देखिए, एक और चीज पासवर्ड्स की भूल भुलैया। दुनिया भर के अकाउंट्स, पिन कोड और सिक्योरिटी सवालात हम रोजाना उनके साथ उलझते हैं।
1: और अजीब बात यह है कि अब हमें अपना फोन नंबर या घर का लैंडलाइन नंबर याद रखना भी गैर जरूरी लगता है, क्योंकि वो सब सेव है ना। दिमाग ने ये जिम्मेदारी अब डिवाइसेस को सौंप दी है।
0: चैट में मैसेज पढ़ना और जवाब देना भूल जाना, हम मैसेज देखते हैं जहन में सोचते हैं कि इसका जवाब अभी दूंगा, और इस बस वो ये सोच वही खत्म हो जाती है। आधे घंटे बाद याद आता है कि मैसेज तो देखा था मगर रिप्लाई तो किया ही नहीं।
1: ये मल्टीटास्किंग का शाखसाना है हिलाल, जहां दिमाग एक काम मुकम्मल करने से पहले ही दूसरे काम की तरफ भाग जाता है। और अगर आप देखोगे ना, चाबी या चश्मा वही है मगर नजर नहीं आ रहा है। चीजें सामने पड़ी होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग अब फोकस्ड नहीं रहा। हम देखते तो है मगर गौर नहीं करते, इसे इंटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं।
0: जहाँ बहुत ज़्यादा रश और मालूमात की वजह से अहम चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। बच्चों का किताबी कीड़ा और बड़ों की बेचैनी। बच्चे जो अभी स्कूल में हैं वो भी एक बार पढ़कर चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हैं, वो सिर्फ स्कैन करते हैं, पढ़ते नहीं है। और बुजुर्ग जो पहले बहुत तेज़ याददाश्त रखते थे वो भी अब छोटी छोटी खबरों के लिए याद दहानों पर इंसार करने लगे हैं।
1: नतीजा ये कि ये सब वाकयात इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं हिलाल कि हमारी जो तवज्जो का दौरानिया है यानी अटेंशन स्पैन जो है वो सुकड़ गया है। हम जिंदगी को जीने के बजाय सिर्फ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जहन अहम वाकयात को फाइल करने के बजाय उन्हें एक गैर जरूरी मालूमात समझकर नजरअंदाज कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी इनमें से कोई एक वाकया रोजाना पेश आता है?
0: जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे वाक्यात हमने भी फेस किए, हमें भी इनका सामना रहता है। तो ये अब आजकल की ज़िंदगी का एक हिस्सा मैं समझ रहा बन गया, क्योंकि हम इस भाग दौड़ वाली लाइफ में इतने खो गए हैं कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पीछे छोड़कर चले जाते हैं।
1: शौकीन, जो अभी हमें हमारे साथी सामीन हमारे दोस्त सुन रहे होंगे उन्हें ये बिल्कुल अपनी कहानी लग रही होगी, और वो भी ये सोच रहे होंगे कि उनके साथ भी रोज़ाना ऐसा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है? मैं बासा आत मुतलिक कर और इसका मगर तंबरों बोझ हो इस हिलाल।
0: जी बिल्कुल, पहले एक नगमा अपने सामीन को भी और हम भी मिलके सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: क्यों हमारे आपस के फायदे की हो, जिससे हमें कोई फायदा मिले या कुछ जानने को मिल जाए। फिलहाल हम याददाश्त की बात कर रहे हैं। याददाश्त की कमजोरी का जो अभी का मसला है, बात पीक पर पहुंच चुका है। हर घर की कहानी है, हर इंसान की कहानी है, छोटे बड़ों की कहानी है। कोई कैद नहीं उम्र की या जगह की या फिर किसी रुतबे की कैद के बगैर ही, यह हर एक के घर पहुंच चुका है, हर एक के माइंड में है ये चीज। तो याददाश्त की अगर बात करें, शौकीन याददाश्त की कमजोरी दरअसल छन ये सो कमजोरी दिमागी सालियत छ कम, बल्कि ये उसकी तवज्जो के बिखर जाने का नाम है। जब हमारे जहन की तवज्जो जो है वो बिखर जाती है तो याददाश्त का मसला दरपेश होता है। ये माहिरीन कहते हैं, माहिरीन का कहना है कि अगर हम माइंडफुलनेस और डिजिटल डिटॉक्स को अपनाते हैं तो हम अपने दिमाग को दोबारा तरतीब यानी रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये दो तरीके हमारी याददाश्त को बहाल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, लम्हे मौजूद में जीने का फन। माइंडफुलनेस का मतलब है शौकीन अपने आप को मुकम्मल तौर पर उस लम्हे में हाजिर रखना जब हम कोई काम करते हुए सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। तो दिमाग इस तजुर्बे को याददाश्त के खाने यानी मेमोरी बैंक में गहराई से महफूज करता है।
1: बिल्कुल, यकसुई की मशक यानी सिंगल टास्किंग, जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं, इस दौरान फोन ना देखें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तवज्जो उनकी आंखों और अल्फाज पर रखें। ये मुकम्मल मौजूदगी दिमाग को वो डेटा प्रोसेस करने का मौका देती है जो आमतौर पर जाया हो जाता है।
0: हम वो बातें आपसे कर रहे हैं जिससे हम अपनी याददाश्त की कमजोरी का जो मसला है उसको हल कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली वर्क करता है। एक और बात है, मुशाहदा करने की आदत हमें अपने आप में डालनी चाहिए। रोजाना 5 मिनट के लिए किसी भी चीज को, मसलन एक फूल, एक पेन या बाहर का मंजर, बिल्कुल खामोशी से देखें। इस चीज की हर बारीकी को नोट करें। यह मश्क दिमाग के पोस्टीरियर कॉर्टेक्स को मुतहरिक करती है, जो माहिरीन के मुताबिक याददाश्त के लिए इंतहाई अहम है।
1: मेडिटेशन, मुराकबा, रोजाना 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर तवज्जो मरकुज करने से दिमाग के हीमोकैप्स का साइज बेहतर हो जाता है, जो कि याददाश्त का मरकज है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे नुक्ते की, और यह है डिजिटल डिटॉक्स।
0: जी हाँ, डिजिटल डिटॉक्स से काम अगर हम लेंगे तो इससे भी हमारे जो याददाश्त की कमजोरी है वो दूर हो सकती है। दिमाग को सांस लेने की जगह देना। हमारी याददाश्त का सबसे बड़ा दुश्मन डिजिटल शोर है। डिजिटल डिटॉक्स का मकसद दिमाग को उस मुसलसल मालूमात के बमबारी से नजात दिलाना है। डिजिटल कर्फ्यू, सोने से 1 घंटा पहले तमाम स्क्रीन्स, फोन, लैपटॉप बंद कर दे। ये वक्त दिमाग के लिए डेटा को महफूज यानी मेमोरी कंसोलिडेशन करने का बेहतरीन वक्त होता है।
1: इस वक्त में फोन का इस्तेमाल याददाश्त को पुख्ता होने से रोकता है। तो मालूमात का सैलाब रोकना, इंफॉर्मेशन फास्टिंग यानी सारा दिन सोशल मीडिया फीडर्स को स्क्रॉल करना छोड़ दें,
0: यानी फोन का इस्तेमाल 1 घंटा पहले सोने से बंद कर देना है। तो आप जितना ज्यादा फालतू डेटा, गैर जरूरी खबरें, वीडियोस दिमाग में डालेंगे, आपका दिमाग उतना ही अहम मालूमात को डिलीट करना शुरू कर देगा। दिन में कम से कम 1 घंटा बगैर फोन के गुजारें। लिखने की आदत डालें। छोटी छोटी चीजों के लिए फोन पर नोट लेने के बजाय डायरी और कलम का इस्तेमाल करें।
1: जी बिल्कुल, लिखते वक्त हमारा दिमाग अल्फाज को ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस करता है, जिससे वो याददाश्त में हमेशा के लिए सब्त हो जाते हैं। अमल दर अमद के लिए एक सादा फार्मूला, अगर आप अपनी याददाश्त को दोबारा जला बख्शना चाहते हैं तो आज से ये तब्दीलियां आजमाएं।
0: सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा जो है उस दौरान फोन को खुद से दूर रखें, अपने ख्यालात के साथ वक्त गुजारें, दिन के आखिर में अपने पूरे दिन को याद करें, ये सोचें कि आपने सुबह से अब तक क्या क्या किया। ये एक तरह की दिमागी वर्जिश है जो याददाश्त के पट्टों यानी मेमोरी मसल्स को मजबूत करती है।
1: काम के दौरान हर 50 मिनट के बाद 5 मिनट का ऐसा वक्फा लें जिसमें कोई स्क्रीन ना हो।
0: इसको तवज्जो का वक्फा कहते हैं।
1: सिर्फ अपनी आंखें बंद करें या खिड़की से बाहर देखें।
0: खुलासा ये कि माइंडफुलनेस में हमें देखना, سیکھنا ہے, یعنی مائنڈ فلنس جو ہے وہ ہمیں دیکھنا سکھاتی ہے اور ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہمیں یاد رکھنا سکھاتا ہے. جب ہم اپنے دماغ کو خلا یعنی اسپیس دیتے ہیں تو وہ خود بخود اپنی پرانی

0: जी सामीन, आवाज़ हमारी इसी वादी में रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि हमारी आवाज़ वादी में तो क्या, वादी से बाहर भी आप कहीं भी समाप्त कर सकते हैं आकाशवाणी की एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए। और इस वक्त आप समाप्त करें अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, लाइव मॉर्निंग शो पयाम ए सुबह, शौकीन हिलाल और
1: तस्लीमा के साथ। और हिलाल, एक और बात कहना चाहूंगी, याददाश्त के हवाले से बात चल रही है, अभी गाना चल रहा था कि हमको ना बुलाना, हमको ना बुलाना, हम यहाँ से कहेंगे आपको सामीन कि हमको कभी ना बुलाना। और जो हमारी आपके साथ ये बातें होती है ना, बहुत कीमती बातें हैं और ये गूंजती रहेगी। तो जब भी बात करें, ऐसी बात करें जो आपके फ़ायदे की हो, हमारे फ़ायदे

0: सुनाई और याद रखने की सलाहियत को बहाल कर लेता है।
1: क्या आपको लगता है कि दिन में से कोई एक खास वक्त है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा पुरसकून होता है?
0: अगर हाँ तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, हम भी उठाएंगे शौकीन, आप भी आज के बाद ये करेंगे, क्योंकि इससे हमारी याददाश्त का जो मसला है वो बहुत हद तक नहीं, अगर हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो फुली हम याददाश्त की कमजोरी से छुटकारा पा सकते हैं। फिलहाल हम भी वक्त का थोड़ा फायदा उठाते हैं और सुनते हैं एक नगमा।
1: बिल्कुल।

लाइव इंटरेक्टिव शो आप समाप्त करेंगे सुबह 10:30 पर। प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट, द ट्री मैन ऑफ कश्मीर। इनसे हम कला में प्रोग्राम की मेजबान तस्लीमा और फहमीदा खान। सुनावला ऋषि और उनके साथी चक्री और पेश करेंगे सुबह 11:30 पर, दोपहर 2:30 और सपहर 4:30 पर। इनसे आप सिलसिलावार कला में शकूर ऋषि, कला में अजीज ऋषि और कला में जब्बार ऋषि समाप्त करेंगे। फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं दिन में 12:10 पर और 2:15 पर। खवातीन के लिए फोन इन प्रोग्राम हेलो बज़्म-ए-निस्वां आप सुनेंगे दिन में 12:40 पर, मेजबान शाहीना ऋषि। NCERT का स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम नष्ट होगा दिन में 1:10 पर, जिसके फौरन बाद चंद फिल्मी नगमे भी पेश होंगे। फिल्म संगीत से आरास्ता प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए नष्ट होता सफर 3:00, पहाड़ी प्रोग्राम पेश होगा सफर 4:00, गोजरी प्रोग्राम का वक्त रहता है 5:00, शाम 6:05 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे गर्मी बायन हिंदी खतर। प्रोग्राम में मामूल की नशरियात के अलावा गुफ्तगू नष्ट होगी। मौजू है कैंसर बीमारी निश बचाओ, शेरे की गुफ्तगू है डॉक्टर सुनाउल्ला कुच्छे और वसीम फारूक वानी। शहरवीन हालात हजरा पर मबनी ये प्रोग्राम आप समाप्त करते हैं शाम 7:00। प्रोग्राम वादे की आवाज ब्रॉडकास्ट होता है 8:00, रात 8:30 पर खेल शायकीन के लिए खेलों से मुतलिक प्रोग्राम नष्ट होगा स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम के मेजबान हैं एजाज नाजकी। प्रोग्राम में खेल खबरें पेश करेंगे एजाज सूफी। बारामुल्ला जिला की खेल खबरों पर मबनी एक रिपोर्ट पेश करेंगे परवेज अहमद। और रात 9:00 आप कश्मीरी गजलें समाप्त कर सकते हैं। तो समीनी थी तफसील आज हमारे यहां से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की।

समीन रेडियो की आवाज धीमी रखा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई तालिबे इल्म पढ़ाई में मसरूफ हो या कोई बीमार हो। हकीमाना कौल है कि अच्छा सोचने से अच्छा करना ज्यादा बेहतर है। आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज, सुबह के 8 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नश्र होगा।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल हैं। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक

0: का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए।

0: महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ. मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स।
3: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब है मीडियम वे 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय इस वक्त आप बराह रास्त लाइव मॉर्निंग शो समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान शौकीन हिलाल और मेरे साथ है
4: तस्लीम अख्तर। और हिलाल, 6 जुलाई की आज 6 जुलाई का दिन है और 6 जुलाई की जो ये तारीख है ये इंसानी तारीख के मुख्तलिफ शोबों में अहम वाकात से इबारत है। और कुछ जो है तारीखी वाकया उन पे आज बात करेंगे। 1885 में आज ही के दिन लुई पास्चर ने इंसानी तारीख में पहली बार रेबीज का कामयाब तजुर्बाती टीका एक 9 साल लड़के जोसेफ माइस्टर को लगाया जिसे एक पागल कुत्ते ने काटा था। इस कामयाबी ने तिब की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया।
3: जी बिल्कुल।

0: 1785 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि डॉलर यानी रियासताए मुत्तहिदा अमरीका की सरकारी करेंसी मालियाती इकाई होगा।
1: 1933 ईस्वी में आज ही के दिन शिकागो के कोमस्की पार्क में मेजर लीग बेसबॉल का पहला ऑल स्टार गेम खेला गया, जिसमें अमेरिकन लीग ने नेशनल लीग को 4-2 से शिकस्त दी। और
0: 1942 में एने फ्रैंक और इनका खानदान नाजी जुल्म सितम से बचने के लिए एम्स्टर्डम में खुफिया मकान सीक्रेट एनेक्स में छुप गया। बाद में उन्हीं तजुर्बात को एन फ्रैंक ने अपनी मशहूर डायरी में कलम बंद किया।
1: 1957 ईस्वी में आज ही के दिन लिवरपूल में जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी की पहली मुलाकात हुई, जिसने आगे चलकर दुनिया की मशहूर तरीन बैंड द बीटल्स की बुनियाद रखी।
0: जी हाँ तस्लीमा, आज ही के दिन तारीख के सफ़ात को जब हम पलटते तो एक और इस अहमियत की हामिल ये चीज़ है कि 1964 में मालवी ने बरतानवी नवआबादी हुक्मरानी से आज़ादी हासिल की और एक आज़ाद जमहूरिया के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा।
1: बात और भी करेंगे तारीख के हवाले से, लेकिन पहले एक नगमा सुनवाते हैं अपने सामीन को।

0: जी हाँ समीन, ये वही नगमा हमने आपके लिए पेश किया जिसे वक्त की कमी रहते हुए हम थोड़ी देर पहले आपको पूरा नहीं सुनवा पाए थे, और हमने आपसे वादा किया था कि इस ट्रांसमिशन में आपको ये नगमा जरूर पूरा सुनवाएंगे।
1: थैंक यू सो मच शौकीन कि आपने समीन के साथ साथ मुझे भी ये नगमा फिर से सुनवाया।
0: जी
1: तो अपने जो तारीखी हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ बर्थडेज की बात करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करेंगे तो रणवीर सिंह की आज के दिन यानी 6 जुलाई 1985 को मुंबई में उनका जन्म हुआ है। और रणवीर सिंह जो है एक मारूफ भारतीय अदाकार हैं जो बुनियादी तौर पर हिंदी फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा जा चुका है जिनमें 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। वो भारत के सबसे ज़्यादा मौजा लेने वाले अदाकारों में शुमार होते हैं और फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 फहरिस्त में 2012 से मुसलसल शामिल होते आ रहे हैं। रणवीर सिंह को हिदायतकार संजय लीला बंसाली की तारीखी फिल्मों बाजीराव मस्ताना में बाजीराव अव्वल और पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के यादगार किरदार अदा करने पर गैर मामूली शोहरत और नाखतीन की भरपूर दाद हासिल हुई है।
0: जी आज ही की तारीख यानी 6 जुलाई 1947 को उर्दू के एक मुमताज शायर अनवर जलालपुरी का भी जन्म हुआ है जिन्हें यश भारती एजाज से नवाजा गया। उन्होंने हिंदू मजहब की मुकद्दस किताब श्रीमद् भगवत गीता का मंजूम उर्दू तर्जुमा किया जिसे आलमी व अदबी हलकों में बेहद सराहा गया। अनवर जलालपुरी उर्दू अदब की एक मारूफ शख्सियत में शुमार होते थे और उन्हें मुशायरों की जान कहा जाता था। उनकी अहम तसानीफ में रहरू से रहनुमा तक, उर्दू शायरी में गीतांजलि और उर्दू शायरी में गीता शामिल हैं। उनकी किताब उर्दू शायरी में गीता दरअसल भगवत गीता का मंजूम उर्दू रूप है जिसे खासी पजीराई हासिल हुई। उन्होंने टेलीविजन सीरियल अकबर द ग्रेट के लिए मुकालमे भी तहरीर किए। साल 2018 में उन्हें हिंदुस्तान के मुमताज शहरी एजाज पद्मश्री से भी नवाजा गया।
1: जी आज 6 जुलाई को एक और जो है एक और हस्ती का जन्मदिन है, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जो जन्म हुआ है 6 जुलाई 1901 में हुआ है। एक मुमताज माहिर तालीम है ये, मुफक्किर और भारतीय जनसंघ के बानी थे। इन्हें आज भी एक मजबूत कौम परस्त और सच्चे मुहिब वतन के तौर पर याद किया जाता है। मुखर्जी हकीकी मानों में इंसानियत दोस्त थे और अपने असूलों पर साबित कदम रहने वाले रहनुमा समझे जाते थे। पार्लियामेंट में वो हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकजहती के क़याम को अपनी अवलीन तरजीह करार देते थे। अपने पार्लियामानी खिताब में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा था जिसको आज भी याद किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।

0: उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: उम्मीद है कि जनाब प्रावो

0: गद्दारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शिरा गद्दारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: उम्मीद है कि जनाब पराबो सुबियांतो और वजीर आजम ने मोदी जामे दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे, जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन, तजारत और सरमायाकारी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वजीर आजम ने मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा, जिसमें मुल्क के बाली मैदान सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हजारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादर वतन से अपने रबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बरन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। सारफिन उमूर खुराक और तकसीम अम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक, बैन अलाक्वामी तंजीमें, सारफिन तहफुजाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुजाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज शामिल है, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत करेगा, जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोजा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे, ताकि मुनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले, ऑपरेशनल राबताकारी, सलाहियत साजी और इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाले मुनशियात, जिनमें डार्क नेट के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग, क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा। इजलास के दौरान रुकन ममालिक मुनशियात से मुतालिक बदलते हुए खतरा से निपटने के लिए मुश्तरक हिकमत अमली पर गौर करेंगे और बैन अलाक़वामी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादले ख्याल करेंगे। राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई।

0: का मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकत भी शामिल है। ये तहकीकत ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले यह मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के इहाते में मुनाकत होगी। तफसील हमारे नमनिगार से।
1: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है और इखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुतालिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाजत से दीगर मामलों पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नमानिकार से।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यू टाउन के इको पार्क जाएंगे जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाकई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहायशगाह पर मुनक़दा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला बीसवा बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने उन्हें जुरत, हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर आजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजूं खिराज अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाकये में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने रायगढ़ जिले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली जिलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राज़ील के तजर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साल नेमार ने ब्राज़ील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अल-अक़वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राज़ील की 6ठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग हालांड ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए 1 गोल जरूर किया। لیکن وہ شکست کا فرق کم کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ نیمار کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ برازیل کی فٹ بال کے ایک شاندار بین الاقوامی دور کا اختتام ہو گیا۔ برازیل

0: के लिए यह मुसलसल सातवां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289-094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या हैशटैग #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर, तवानाई तजारत व सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है जिनेवा में मस्नूई ज़हानत AI से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राज़ील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर 8:45 हो चुके हैं। समाप्त करें स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन।
3: سامعین پیش خدمت سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتن ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیفکو پلازا اپوزٹ بس سٹینڈ بٹمالو سری نگر یہ تمام دادن تسلی بخش علاج سپدان ڈسک استن یا پائلز یا استن پروسٹیٹ ان دادن آپریشن ور خالص دباؤ ستی شفا ملان فون 7051545788
4: پروگرام صحت بدن ہچ بے اک لٹہ آج تہس خدمت مز حاضر بس میزبان رشید نظامی تو آج ست کت کر خاطر سٹوڈیوز مز حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سری نگر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آسیہ گلزار صاحبہ اخ معروف ڈاکٹر اخ ماہر اخ یونانی ڈاکٹر آج کرو اس پہ کت اس زن اریٹیبل بول سنڈروم بیمار ونان تر پہ متعلق زی بیمار آسان کیا گسان کت کن کمن لوکن چانس زیادہ آسان یہ بیمار گھنچ تو ڈاکٹر صاحبہ خیر مقدم تہد
5: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈنت یہ زان زی آئی بی ایس یا اریٹیبل بول سنڈروم گو کیا
5: یس یہ آئی بی ایس یا اریٹیبل بول سنڈروم اگر وچھو یہ پیتھولوجیکل ڈزیز کی مطلب یہ وچھو کہ کھانا چیز گئی خرابی کھانا انفیکشن یا کھانا یہ فنکشنل مانتو تو یہ ریلیٹڈ ٹو

0: ओके
1: ये फंक्शनल बीमारी है इंटेस्टाइन्स की, यह मतलब इंटेस्टाइन्स प्रॉपरली शिकारा बिहेव किए या सुनो बिहेव नहीं करते हैं,
0: ठीक है।
1: कभी इसमें बहुत डहेरिया हो जाता है, मतलब इंसान चुके खेवान तो इन पेवान नबर नियर कुछ थोड़ा सा लेते हो और इनको वॉशरूम जाना पड़ता है, या अत मे अख स्टेज पे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब इंसान बेबस हो जाता है कि इंसान को लगता है कि कौन सा बड़ बीमार है तो इसकी वजह से इतना कॉन्स्टिपेशन हो गया,
0: बिल्कुल।
1: मतलब ये बिहेवियर ऑफ इंटेस्टाइन मानो खराब हो जाता है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, इसमें अगर टेस्ट करेंगे या कोई भी ये करेंगे मतलब अल्ट्रासाउंड करेंगे कुछ नहीं दिखाता है, कहीं पे कुछ नहीं दिखाता
0: सही।
1: है, बट इंसान परेशान बहुत होता है।
0: इसमें हमने देखा है ना डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग जो आईबीएस के शिकार हैं वो किसी जगह आराम से जा नहीं सकते हैं, वो सफर आराम से नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं लॉन्ग सफर अगर बाय रोड करेंगे तो मुझे शायद प्रॉब्लम हो सकता है, और वो फिर रास्ते में खाने पीने में परहेज करते हैं, उठने बैठने में परहेज करते हैं। अब अगर वजूहात का जिक्र और हम करें, क्या अच्छा सिर्फ स्ट्रेस ही होता अख वजह कि मैं बेच के खनजनी आदत इमजन ट्रिगर करान छे?
1: मेन तो स्ट्रेस ही देखा गया है, मगर अत हेकन के फूड्स कर ट्रिगर जिसको बोलेंगे कुछ फूड्स जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग एक ऐसी चीज है कि जो इसको ट्रिगर कर सकती है, कुन कुन मन से गसन डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब जो दूध से बनने वाली चीजें
0: हैं,
1: हर एक में नहीं होता है, किसी में कर सकते हैं किसी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कह खेवान सामान तम तम ग प्रॉब्लम, कहे दूध ओम दूध या वनो कर दूध तम तम यूजुअली दही से नहीं देखा गया है, दही से अत मिलान असली मतलब बेनिफिट ही मिलता है, ये कुछ ये चीजें है, या कोई शुर मतलब जिसकी वजह से कुछ ऐसी मतलब माहौल मिलता है ऐसा ऐसा, जैसे कि कहाँ को एक जगह पर बेच जाए शिफ्ट किया, जैसे पढ़ने जाए कहीं या दूर कहीं जाए घर से दूर तम पुन माहौल चेंज तो हाँ बिल्कुल, या तो इसको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या तो इसको बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब ये चीजें इस चीज को ट्रिगर करते है आईबीएस को।
0: डॉक्टर साहब बहसीत मालिज बहसीत माहिर आप ये बताइए, कहते हैं कि जो हसास लोग होते हैं ना इमजन वरिया हसास तिमन छी बीमारी ज्यादा,
1: तो ये ना ऐसी सेंसिटिविटी से है ये रिलेटेड, मैंने आपको पहले बोला स्ट्रेस कौन लेता है ज्यादा जो सेंसिटिव होंगे सेंसिटिव हसास वनो तम ज्यादा स्ट्रेस दिवान हुत कम थोड़ा ये बोल्ड होंगे या जो बेधड़क मतलब जिम ज्यादा सोचन कह तम मे बमारी आम कम पाँच
0: तो हसास लुकन मे आमद वसास लुक बड़ नफासत पसंद आसान खेन चेनस मज बड़ ख्याल थवान पलव लागनस मज वथनस बेहनस मज शोंगनस मज शांद गोंद गज साफ आसुन बिस्तर गज साफ आसुन जाय गज बेहतरीन आसुन, तो इथेन इंसानन छ यथ हिच पत लाहक सबदान इज बेमारी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो यम हसास मतलब अत वनो इस तुम यम आदात फरमाई यह इसको एक हमारी लैंग्वेज में बोलते ओ सी डी,
0: ओके
1: ओ सी डी किसी को किसी में माइल्ड देखा जाता है, मतलब हल्का सा कि अत पुट गंद बसान किसी कपड़े के साथ टच हो गया तो अत वन ओ सी डी, मतलब अल्लाह ताला बचा सीवियर वो नहीं किसी में बिल्कुल हल्का होता है, इन मज तम वे क्योंकि इनको लगता है सब गंदा है वो है ये है, बस इनको उसकी वजह से वो सोचान वन थो मैं ये कप ये रूदा साफ ये वो है उसकी वजह से इनको।
0: बहुत अच्छी बात है आपने फरमाई, मुझे एक बात बताइए अब एक इंसान है उसको कैसे पता चलेगा कि मैं आईबीएस का शिकार हूं, क्या उसको ज्यादा डहेरिया होगा, क्या कॉन्स्टिपेशन होगा, क्या उसको खाने के बाद हाजमा ठीक नहीं रहेगा, क्या चीज हो सकती है जिससे उसे ये पता चले कि मैं आईबीएस का शिकार हो गया हूं?
1: आईबीएस पेशेंट यु अश नश अक्सर कि फ्लूचुलेंस मतलब गैसेस होते हैं,
0: ओके
1: ठीक है, खाते हैं और वॉशरूम जाते हैं
0: ठीक
1: बार बार, या वन असा वक्त ये बार बार मतलब खेत तो नबर नियर खेन तो नबर पे मानते तुम रेत ग पांच रेत ग रेत गिवियर कॉन्स्टिपेशन ठीक प्लस ब्लोटिंग फूल जाता है पेट एग्जैक्टली, तो पे अशन अत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये कि हर कह टेस्ट कर
0: अच्छा।
1: मतलब ये इनको मिलता है सेटिस्फेक्शन इनमें मिलती है इन मतलब ये मिलान कि ना अशन कह बेमारी, क्योंकि इनको ये होता है दिमाग में कि क्या तान प्रॉब्लम छे इन ओतान पाई कह कि आईबीएस ये इन हर कह टेस्ट करान तम ठीक चाहे आप अल्ट्रासाउंड करो इवन सीटी स्कैन, इतने पेशेंट्स कभी कभी वरीड अबाउट दिस डिजीज कि वो सीटी स्कैन करके वहां से आए होते
0: अच्छा,
1: हैं
0: अच्छा।
1: और प्लस कोलोनोस्कोपी कथी कोलोनोस्कोपी प्रोक्टोस्कोपी जो भी कोपीज है एंडोस्कोपीज ये सारे करके आए होते हैं, तो अल्टीमेटली फिर पता चलता है कि इनको आईबीएस।
0: डॉक्टर साहब इसी

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। समीन सुबह के 9 बज रहे हैं।
1: आज की सुर्खियां

0: रेलों की वार्निंग। अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी एक शेर सुर्खी है मेरे पास। अमरनाथ यात्रा के लिए जाली रजिस्ट्रेशन, मुर्तकबीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। एलजी का नुनवन बेस कैंप और चंदनवाड़ी का दौरा, कहा यात्रियों की हिफाजत और सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह।
1: एक ओटीपी, पूरी जमा पूंजी गायब। जम्मू कश्मीर में साइबर फ्रॉड खतरनाक हद तक बढ़ गया। डिजिटल सहूलियतें साइबर जरायम का नया महाज। 8 बरसों में ज़ायदा 700 केस दर्ज। धोखाधड़ी के बाद हर लम्हा कीमती। फौरी शिकायत से अरबों रुपए बचाने का इंकशाफ।
0: एलएनजी सप्लाई मामूल पर आ गई, हुकूमत ने गैस की पाबंदियों को वापस ले लिया। मुतनाज़ किताबों के मामले पर केस दर्ज। जम्मू में पब्लिशर के दफ्तर पर छापा, अहम दस्तावेजात व डिजिटल शवाहिद जब्त।
1: एक और उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में गुटखा, तंबाकू, मलापान मसाला और निकोटीन गजाई मसनूआत पर 1 साल के लिए पाबंदी आई।
0: शुपया में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन का 3रा दिन, कई बार शबाना फायरिंग और धमाकों की गूंज। गैस सिलेंडर फटने से जख्मी शहरी अस्पताल में फौत। मजदूर करंट लगने से लुकमय अजल, गैर मकामी शख्स की मौत।
1: बीजेपी कौमी सदर नितिन नैबिन के दौरे जम्मू की तैयारियां मुकम्मल। 6 और 7 जुलाई को मुतअद्दिद अहम प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे।
0: शानदार इमारत मगर सहूलियत नदारद, हाई स्कूल माछामा त्राल अमले की कमी का शिकार।
1: लाल बाजार श्रीनगर में आग की वारदात, कई रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं।
0: पहले खंबे और बिजली तार, फिर मीटर लगाओ। बातीपोरा उलर त्राल में लोग सरापा एहतजाज।
1: एक और उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, जिला अनंतनाग के दूर दराज इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बराई नाम, लोग मोबाइल कनेक्टिविटी से महरूम। महकमा टेली कम्युनिकेशन की खामोशी पर सार्फीन नाला।
0: एक और उर्दू अखबार की अंदरूनी सुर्खी है, न शेड्यूल न इतला, बस अचानक अंधेरा। शदीद गर्मी में बार बार कटौतियां, गर्मी में बिजली कटौती से परेशान अवाम में शदीद गम गुस्सा।
1: एक और उर्दू रोजनामे की सुर्खी इस तरह है, कश्मीर यूनिवर्सिटी की नेशनल यूथ पार्लियामेंट टीम दिल्ली रवाना, पार्लियामेंट हाउस में एजाज हासिल करेगी वाइस चांसलर।
0: एक और उर्दू अखबार से ये सुर्खी ली है हमने, पटन के कई इलाकों में धान की फसल खतरे में, नाकसाबी इंतजाम और निगरानी के फुकदान से सूरत हाल संगीन।
1: हुकूमत मुलाजमीन की बहबूद और इंतजामी कारकर्दगी को मजबूत बनाने के लिए इसलाहत पर अमल पैरा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
0: सांप के डसने से उत्तर प्रदेश का अमरनाथ यात्री लुकमय अजल।
1: वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस में तारिकीन वतन से खिताब किया, हिंदुस्तानी साइंसदानों और इंजीनियरों की सताइश की।
0: एक और उर्दू अखबार से सुर्खी हमने ली है, जल जीवन मिशन दोम, 1400 करोड़ की मंजूरी, एआईपी ने इंजीनियर रशीद की कोशिशों को सराहा।
1: जमीन सुर्खियां भी जारी है, फिलहाल यहां लेते हैं एक ब्रेक।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
4: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
3: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को

0: हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
1: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: वक्फे के बाद सुर्खियों में आपका एक बार फिर खैर मकदम।
3: एक उर्दू अखबार से हमने ये सुर्खी ली है, बच्चों को इखलाकी तालीम से आरास्ता करें, डॉक्टर फारूक की वालिदैन से अपील।
2: ईरान का आबनाए हुरमुज में दोस्त ममालिक के लिए सहूलियात का ऐलान।
3: अमरनाथ यात्रा 2026, पुलिस यात्रियों को जामिया सहूलियात फराहम करने में पेश पेश।
2: अमरीका और ईरान मुजाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। इसराइल इस्लामाबाद MOU को सबूतास करने की कोशिश कर रहा है। उर्दगान
3: मारूफ उस्ताद, नकाद और अदीब रशीद राशिद इंतकाल कर गए।
2: ट्रंप और पुतिन के दरमियान 1.5 घंटे तवील टेलीफोनिक राबता, यूक्रेन जंग पर तबादले ख्याल।
3: 2026 के आखिर तक हिंदुस्तान में 5 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने का इम्कान, अश्विनी वैष्णव मंजूर किए गए 12 सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट्स में से 3 अब कमर्शियल प्रोडक्शन में हैं।
2: रूसी तवानाई तनसीबात पर यूक्रेनी ड्रोन हमले, बंदरगाह और तेल तनसीबात मुतासिर।
3: वजीर मुल्कत कीर्ति वर्धन सिंह AI गवर्नेंस पर अकवाम मुत्तहदा के पहले आलमी डायलॉग में हिंदुस्तानी वफद की कयादत करेंगे।
2: एक और उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, स्टारमर का अपने मुमकिन जानशीन को आलमी अमूर नजरअंदाज न करने का मशवरा, यूक्रेन जंग व आबनाए हुरमुज जैसे मामलात आवाम की जिंदगी और मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं।
3: एक और सुर्खी हमने एक और उर्दू अखबार से ली है, आलमी सरमायाकारों की दोबारा भारत में दिलचस्पी, AI मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस भारतीय शेयर्स पर तवज्जो।
2: मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है जिसके खेल सफ़े की सुर्खी है, इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेटों से शिकस्त देकर T20 सीरीज 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।
3: मेरे पास भी एक उर्दू अखबार है, इसकी एक सुर्खी है, भारत फसलों की बाकियात से माहौल दोस्त जेट ईंधन बनाकर आलमी हवाबाजी का अहम मरकज बन सकता है, रिपोर्ट।
2: खेल सफे से एक और सुर्खी है, सूर्यवंशी भारत के कम उम्र तरीन बैनुल अक्वामी डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए।
3: खेलों से मतलब एक और सुर्खी है, रोनाल्डो के सामने बड़ा इम्तिहान, प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन से मुकाबला, मैं उस वक्त रिटायर होऊंगा जब मैं खुद चाहूंगा, न कि जब आप चाहेंगे।
2: विंबलडन 2026 दिफाई चैंपियन एगा शूटनेंटिक तीसरे राउंड में बाहर।
3: फ्रांस के हाथों शिकस्त के बावजूद पेरागोए ने अपनी जुर्रतमंदाना मुहिम से सबको कर दिया मुतासर।
2: NIT श्रीनगर ने NIT मणिपुर को 10 विकेटों से शिकस्त देकर शानदार आगाज किया, आकिब शेख की 33 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 103 रन की धुआंधार इनिंग।
3: अर्जेंटीना और मिस्र के दरमियान आलमी कप के आखिरी 16 मरहले में सख्त मुकाबले की तवक्को।
2: तो समीने थी आज की सुर्खियां।

आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चला सुबह के 9:11 और 27 सेकंड। फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक उर्दू गजल।

0: टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती। समीन अनूप जलोटा की आवाज में आप ये गजल समाप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब जरा बात करते हैं मौसम के हवाले से या मौसम के मिजाज के हवाले से।
1: मौसम के मिजाज तो बहुत ही गड़बड़ लग रहे हैं शौकीन। दिन भर बहुत गर्मी होती है और सुबह शाम तो हमें बारिशें भी देखने को मिलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी मिलती हैं, जो कि देख के दिल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इसका ओवरऑल जो इफेक्ट है, असरात है,
0: बिल्कुल
1: वो क्या हो सकते हैं वो एक माहिर ही बेहतर बता सकता है।
0: जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी अभी बता दिया कि मौसम का जो तेवर है मौसम के वो बहुत ही सख्त लग रहे हैं और दिन ब दिन जो गर्मी की तिप्श है उसमें हर गुजरते दिन के साथ जो है इजाफा देखने को मिलता है और ऐसे में कुछ एहतियाती तदाबीर का जो है अपनाना लाजमी होगा और आने वाले कुछ दिनों में कुछ हफ्तों तक जो मौसम का मिजाज है कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गर्मी की जो तिप्श है किस हद तक बढ़ सकती है या कुछ राहत के भी इम्कान है, इस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि आज के इस ट्रांसमिशन में जो हमारे डायरेक्टर मेट्रोलॉजी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आगे। तो आप सुनते रहिए अपना मनपसंद शो पयामे सुबह।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: समीन अपने ट्यून किए हैं आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और हम आपसे मुखातिब हैं आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। 9:20 हो रहे हैं, समाप्त करें खबरें पहले कश्मीरी उसके फौरन बाद उर्दू में।
3: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर, सुबह 9:02 सपद मोहम्मद अलताब बोजनाय खबर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी अजकी पठ इंडोनेशिया आस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड के शन दोन हिंद सरकर दौरस पे रवान सपदान। तम इंडोनेशिया के सदरस अलावा आस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड कन वजीर अजम सहित बाहमी मफादात तो दिलचस्पी कन मुख्तलिफ मामलात पेट तबोदल ख्याल। अमे अलावा करन तम जकार्ता मज भारतीय मुल्क कन बाशिंदन खिताब त। श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम तो सोनमर्ग दशवी वतो रित पट जारी। यात्रा के तेईम दोह कर रात रिकॉर्ड तदाद मज 24,000 खोत ज्यादा यात्रियों गुफाई पे हाजिरी दिख शिव लिंगम दर्शन। यह वर्स तम अकस दोस मज दर्शन करन वाले यात्रियों हूं सारी खोत बोड़ तदाद। इथ पें दोन दौरान दर्शन करन वाले यात्रियों हूं कुल तदाद 57,000 पिठी वोतमुत। अथ दौरान कुर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान रात ननवंद चंदनवाड़ी हूं दौरे कर यात्रियों बाबत करना आम इंतजाम जमीनी सूत्र पे जायजे। तमो कर कैसन यात्रियों सत कत तो प्रव तजुबन मुतलिक तिज जानकारी। मीडिया नुमाइंदन सत कत कर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर
4: पंजीकरण कराए बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्राइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो चंदनबाड़ी से भी और बालटाल से श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है।
3: जम्मू कश्मीर किस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोब किस कमिश्नर सिंह हिदायत पर कुर फूड सेफ्टी हिंद टीम पहलगाम तो ननवनक दौरे तो हेतु

0: आकाशवाणी का सीनिक स्टेशन मीडियम वे 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं डीटीएच और आकाशवाणी के लाइव मोबाइल ऐप पर। सुबह के 9:30:25 हो चुके हैं और समीम, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हमने मौसम के हवाले से भी बात की, गर्मी की जो शिद्दत है उस बारे में भी हमने बात की, और थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपको इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे जो महकमे मौसमियात के जो डायरेक्टर हैं, मेट्रोलॉजी डायरेक्टर जनाब मुख्तार अहमद से बात करने की और मौसम का अहवाल जानने की कि आइंदा कुछ दिनों में क्या कुछ रहने वाला है। मुख्तार साहब, आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियो में पैगाम सुबह में सबसे पहले आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हिलाल और मेरे साथ हैं तस्लीमा जी। मुख्तार साहब
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मौसम एक दो दिन से, पिछले दो दिनों से थोड़ा सा गर्म भी था और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ था, और आज मॉर्निंग में एक हैवी शावर खासकर जम्मू डिवीजन के काफी जगहों पे हुआ, तो उसी की वजह से जो क्लाउड थे वो वैली की तरफ मूव हुआ है और ओवरऑल मौसम जो है अभी फिलहाल बना हुआ है, तो हल्की बारिशें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकती है अभी, और इसी तरह दोपहर के बाद भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है ब्रीफ शावर खासकर साउथ कश्मीर और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर। और जिस तरह कल अर्ली मॉर्निंग आउट में एक स्पेल फिर से होगा पूरे वैली के अंदर और जम्मू रीजन के बिलखसूस काफी सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और हैवी शावर्स के भी चांस हैं खासकर जम्मू रीजन के अंदर, हैवी बारिशों की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ वैली के अंदर भी कल भी मौसम जो है ओवरऑल रहेगा, बारिशों की काफी

0: तरह चांसेस हैं अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, और लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन, मडस्लाइड की भी पॉसिबिलिटी है कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स के अंदर। और कमिंग डेज में भी थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा, लेकिन लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स और खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स में ये दो टाइम के दौरान जो है हल्की बारिश का चांस है खासकर वैली के अंदर, और जम्मू रीजन के अंदर थोड़ा मॉडरेट टू हैवी शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है।
1: ये जो सर फ्लैश फ्लड्स या लैंडस्लाइडिंग का जो पेशगोई हुई है, कोई खतरा मौजूद है क्या, हमें मकामी सतह पर कुछ मखसूस मौसमी अलामत पर नजर रखनी चाहिए?
0: बिल्कुल, देखो जब भी ऐसे थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर बन जाता है तो ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं कि काफी ज्यादा चांस रहता है हैवी शावर्स के, इंटेंस शावर्स के, तो इस दौरान जो है थोड़ी सी एहतियात, और खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर ऐसे ट्रेवल करते हैं या कोई ट्रैकिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए जाते हैं तो वो भी जो है थोड़ा सा एहतियात करें, स्पेशली जब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर थोड़ा कंटिन्यू रहता है कुछ दिन।
1: जी जी, और अगर हम अपने

0: इस दौरान जो है थोड़ी सी एहतियात और खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर ऐसे ट्रैवल करते हैं या कोई ट्रैकिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए जाते हैं तो वो भी जो है थोड़ा सा एहतियात करें, स्पेशली जब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर थोड़ा कंटिन्यू रहता है कुछ दिन।
1: जी जी, और अगर हम अपने किसानों की बात करें, फसलों बागात की बात करें, तो कितना साजगार या नुकसानदेह साबित हो सकता है ये मौजूदा हफ्ते का मौसम का जो रुख है? क्या किसी किस्म की शदीद मौसमी सूरत हाल जैसे चालाबारी या तेज हवाएं उनकी तवक्को है जिसके लिए किसानों को फौरी तैयारी करनी चाहिए या कोई खास एहतियात बरतनी चाहिए?
0: अभी फिलहाल जो हेल स्टॉर्म के जो इवेंट्स होते थे खासकर प्री मानसून में वो आप पे बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे और काफी कम पॉसिबिलिटी है, अदर से अभी टाइम बहुत कम चांस है। बाकी बारिशें हैं ये थोड़ा सा फायदा भी है क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग चल रहा है पैड़ी का या बाकी जो ऑर्चर्ड के लिए या फसल ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके लिए पानी की जरूरत रहती है, तो फिलहाल इरीगेशन वगैरह जो है वो सस्पेंडेड रखें, कोई भी किस्म का पानी ना लगाएं और बाकी जो ऑपरेशन है फील्ड प्रिपरेशन का, फील्ड मैनेजमेंट का, सोइंग का, ट्रांसप्लांटिंग का, ये चीजें जो है
2: जी कंटिन्यू
0: रख सकते हैं कमिंग डेज में भी।
2: जी मुख्तार साहब, आखिर पर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जो आकाशवाणी के सामीन को बताइए कि जो हमने जैसे देखा कि जुलाई के जो इब्तदाई दिन है हमने दो चार पांच दिन देखे गर्मी की जो हरारत है शिद्दत जो है वो हमने बहुत ज्यादा महसूस किया, कि आने वाले कुछ दिनों में क्या इसमें कुछ इजाफा होने का इम्कान है या कुछ राहत मिलने वाली है हमारे यहाँ के आवाम को?
0: बिल्कुल, अभी जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है स्पेशली फॉर 4 वीक्स ऑफ जुलाई, तो इस हिसाब से जो सेकेंड वीक है स्टार्टिंग फ्रॉम 9th जुलाई टिल 14th या 16th जो भी है, तो उस दौरान जो है थोड़ा सा बारिशें सुबह शाम होती रहेंगी, तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कंट्रोल में ही रहेगा, तो ज्यादा गर्मी के चांसेस लग नहीं रहे हैं फोरकास्ट के हिसाब से।
2: जी सर,
1: सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये मुफीद जानकारी शेयर करने के लिए और आपका कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: Thank you very much, sir.

0: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम में 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप लाइव मॉर्निंग शो समाप्त कर रहे हैं पयामे सुबह।
1: पयामे सुबह में आज आपके साथ हिलाल शौकीन और हिलाल शौकीन के साथ साथ मैं तस्लीमा अख्तर भी।
0: जी बिल्कुल
1: हिलाल, बनी बनी पोरस अखबार मजदी यूजर मनके शदीद गर्मी से शदत ग्रीष्म क्राय अत मो लगन खतर यानी हीट स्ट्रोक
0: गत
1: मत हिदायत दिन जन हाई ब्लड प्रेशर मरीज है जन ब्लड शुगर के थ्रू जो जूझ रहे हैं या जो पेशेंट्स है कमजोर जन तम ग एहतियात कर। और हीट स्ट्रोक जो है ये सिर्फ किसी ब्लड प्रेशर मरीज को या फिर एक को ही नहीं हो सकते, ये किसी भी इंसान को,
0: अच्छे भले इंसान को भी इससे खतरा लाक है।
1: तो इसमें बहुत सारे परहेज करने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है। और ये दरअसल आख हंगामी तबी सूरत हाल यथ उर्फ आमस मज लो लागन वनान तो जिसमानी दर्जा हरारत यह खतरनाक हदस ताम बढ़ान इंसानस मज तो यह तमें साथ इंसान सुन जिसम इस गर्मी तथ जज्ब कर पानस अंदर तो मगर नबर चुन हेकान तथ खारिज वापस कर सलाहियत इंसान सिंदिस जिस्मस अंदर कम गसान।
0: बिल्कुल
1: और जिस्म का जो अंदरूनी दर्जा हरारत है वो बहुत ऊपर चला जाता है। बहरहाल ये एक मेडिकल इमरजेंसी यत मस फौरी तौर ऐसे मदतिच जरूरत पे छे आसान तो तम साथ पे ऐसे जरूरत हॉस्पिटल गसनिच या कंस माहिरस निच गसनिच तो मगर यूज जन हीट स्ट्रोक छु नॉर्मली छे इस वनान आम तौर छे इस वचान के गरम मन छ वना के छु परवाई थोड़ा बहुत लज गर्मी एम से गसने किए मगर इसको इग्नोर करना बहुत ही नुकसान का बाइस है। क्योंकि अगर नहीं हीट स्ट्रोकस बर वक्त इलाज गसे इंसानी एजाइम छ तिमन हेके शदीद नुकसान वात नहीं यथ मज यूजन इंसान से खतर जानलेवा ते साबित हेके गसित तो यम जन के असरात अमिक छ तिम छ केहन अजान हज नाकमी यथ मज जिस्म बुलंद दर्ज हरारत दिमाग दिल गर्द या तो मसल जिम से तिहन अफाल तिहज कम हेके रुकावत।
0: जी बिल्कुल, तो इसी तरह से अगर जो इसके असरात जैसे आपने कहा कि इसके क्या क्या असरात जिस्म के किस किस अज़ा पर इसके असरात जो है ज़ाहिल हो सकते और इसके साथ ही अगर हम देख सकते हैं एहतियाती तदाबीर क्या है या यूँ कह सकते हैं इसके सिम्टम्स क्या है कि हीट स्ट्रोक अगर किसी अल्लाह बचाए
1: सिम्टम्स से पहले ये भी कहना चाहेंगे कि इसका जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो दिमाग पर पड़ता है। शदीद गर्मी से दिमाग की सूजन हो सकती है जिसके नतीजे में दौरे पड़ना या बेहोशी तारी हो सकती है। और सूजन और असाबी मसाइल जो है ना ये तवील अरसे तक जिस्म का दर्ज हरारत बुलंद रहने से असाबी निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुँचा सकता है।
0: जी बिल्कुल, तो हमने
1: सिम्टम्स की बात कर रहे
0: थे इसके यानी कि लक्षण या अलामत क्या कि कोई इंसान ये कैसे समझ पाएगा कि उसे हीट स्ट्रोक हो चुका है। तो हीट स्ट्रोक की अलामत को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि वक्त पर मदद ली जा सके। इनमें शामिल जिस्म का इंतहाई दर्ज हरारत, तेज बुखार जैसी कैफियत, जिल्द का छूने पर बहुत गर्म महसूस होना, पसीने का ना आना, शदीद गर्मी के बावजूद जिल्द का खुश्क और गर्म महसूस होना, ये एक वाजिया निशानी है।
1: ज़हनी कैफियत में भी तब्दीली आती है जिसको हीट स्ट्रोक हो जाता है शौकीन। उलझन चकसान, चिड़चिड़ापन चकसान, बोलने में इंसान को लकनत पैदा हो जाती है, लेकिन उस पूरी तरह से बोल नहीं पाता,
0: जुबान
1: हकला जाता है इंसान, अजीब गरीब रवैया अख्तियार करता है इंसान। अगर जिसको ना ये हीट स्ट्रोक हो जाए, इन चीजों से हम ये जान सकते हैं कि हीट स्ट्रोक हुआ है। मतली और काई भी हो सकते, दिल मतलाना या बार बार उल्टी होना ये भी एक निशानी है हीट स्ट्रोक का। सर दर्द, शदीद किस्म का सर दर्द जो बर्दाश्त से बाहर हो, सांस और दिल की धड़कन का भी इसमें एक एक वो भी अलामत है।
0: जी बिल्कुल,
1: सांस लेने में दुश्वारी और दिल की धड़कन का गैर मामूली हद तक तेज इजाफा होना, और बेहोशी भी हो सकती है। ऐसे मरीज का अचानक नींद बेहोश होना या मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है, तो ये ऐसे सिम्टम्स है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हीट स्ट्रोक हो गया है।
0: जी बिल्कुल, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, अगर आप किसी में ये अलामत देखें तो फौरी तौर पर डॉक्टर को मुतला करें या

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो कशीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बज पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
2: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है मून SWR PVC पाइप।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दान बजन दाम नश्र सब्दान।
2: समीन तो ऐसे बोजान प्रोग्राम सूफी सदा रावित पेशकश गुलाम रसूल आखुन ये आकाशवाणी श्रीनगर सनी स्थाई मिसलानस प्रेरियो।

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा आप हमें सुन रहे हैं एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 10:30 हुए हैं। पीएमए सुबह की नशरियात जारी है। पेश है हमारा लाइव इंटरएक्टिव प्रोग्राम मेरी साथी तस्लीम के साथ।
1: थैंक यू फेमिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माइक मुझे देने के लिए। और समीन फिर से आपकी मेज़बान हाजिर प्रोग्राम पयाम सुबह में। लाइव मॉर्निंग शो का ये जो हिस्सा है ये हमारे मेहमान के नाम होता है, हमारा लाइव इंट्रैक्शन जो होता है हमारे मेहमान के साथ होता है। तो आज भी हमने एक ख़ास मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है। प्रोग्राम में हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम कश्मीर की सरसब्ज़-ओ-शादाब पहचान बन चुका है। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपको कश्मीर भर में ट्री मैन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आप ना सिर्फ एक माहिर माहौलियात हैं बल्कि मौजूदा दौर में रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर के सदर की हैसियत से समाजी तरक्की और खिदमत खल्क के मिशन को इंतहाई मुस्तैदी से आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आज हमने अपने शो में मधु किया है डॉक्टर तौसीफ अहमद बट साहब को। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में तहे दिल से हम इस्तकबाल कर रहे हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बचपन से बड़े हुए रेडियो सुनते सुनते, तो आज रेडियो में आने का मौका भी मिला, तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत दिल की उम्मीद गहराइयों से मेरा शुक्रिया।
1: खुशकिस्मती हमारी कि आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए। तो मैंने तो आपका छोटा सा एक तारुफ अपने सुनने वालों अपने सामीन तक पहुंचाया, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ अपने सुनने वालों को पहले दें।
2: मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ है, मैं श्रीनगर बुलवार्ड पे रहता हूँ और मेरा बचपन से ही ऊपर वाले का यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कर्म रहा कि मेरी जो दोनों साइड मेरी फैमिली के थे, जो मेरे नाना साइड थे और मेरे दादा साइड थे, वो दोनों जंगलात में मुंसलिक थे, मुलाजिम थे जंगलात में।
1: ओके।
2: और मेरा बचपन ही गुजरा पेड़ों के साथ, मेरा पिकनिक गुजरा पेड़ों के साथ, मेरी बचपन की सारी यादें गुजरी पेड़ों के साथ। फिर बड़े होते होते जब पढ़ाई की तो 2000 के आसपास जब मैंने अपना 10+2 किया तो कंप्यूटर का काफ़ी जोर था पूरे दुनिया पर में और कश्मीर में स्पेशली। तो पेरेंट्स की ख्वाहिश रहती है कि हमारा बच्चा भी कुछ करे, तो मैंने भी उनकी अपनी, जैसे कि सारे हमारे बच्चे भी वैसा ही करते हैं कि जो माँ बाप की ख्वाहिश होती है वैसे ही आगे चलते हैं, तो मैंने भी कंप्यूटर का हाथ थाम लिया, लेकिन एक ही हाथ थामा क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने वही जो पेड़ उनके साथ मेरा

लगाव था, माहौलियात के से मेरा लगाव था, वो उस चीज़ को छोड़ा नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना बचलर्स, फिर मास्टर्स, मीन्स बी टेक एम टेक कंप्यूटर में, फिर PhD भी कंप्यूटर में करते करते, लेकिन वो जो दामन सरसब्ज कश्मीर, क्योंकि जब मैंने बाहर पढ़ाई की, जब मैं बाहर जाता था, वहाँ कोई मुझे ये नहीं पूछता था कि आपके वहाँ फ्लाईओवर्स कितने हैं। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या वो कोई 5-स्टार होटल है, नहीं है। वहाँ पूछते हैं लोग कि डल कैसा है आज, वहाँ पूछते हैं लोग जंगल कैसे हैं, देवदार कैसे हैं, क्या आप सुबह की जो सवा जो बहुत सुबह की जो हवा होती है उन देवदारों की, क्या आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन चीज़ों ने, जब मैं वापस आया तो इन चीज़ों ने मेरे दिल और दिमाग पे एक गहरा असर डाला, जबकि परवरिश मेरी ऐसी फैमिली

0: वहां पूछते हैं लोग कि डल कैसा है आज, वहां पूछते हैं लोग
1: जंगल कैसे,
0: जंगल कैसे हैं, देवदार कैसे हैं, क्या आप सुबह की जो सुबह की जो हवा होती है उन देवदारों की क्या आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं?
1: करते हैं।
0: तो इन चीजों ने, जब मैं वापस आया तो इन चीजों ने मेरे दिल और दिमाग पे एक गहरा असर डाला, जबकि परवरिश मेरी ऐसी फैमिली में हुई जहां पे पेड़ों की बात होती थी, कोई बिजनेस की बात शायद कमी होती थी, पेड़ों की बात होती थी।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके अगर प्रोफाइल की बात करें, बहुत ही रिच प्रोफाइल है आपका, बहुत सारे एजाजात से आपको नवाजा गया है। और ट्री मैन के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, बहुत ही एजाज वाली बात हमारे लिए वो भी है। डॉक्टर साहब, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो इसकी सिमत का तायुन करता है। तो थोड़ा थोड़ा तो आपने बता दिया, लेकिन हम डिटेल्स में जानना चाहेंगे कि वो कौन सा जज्बा या मुहर्रिक था जिसने आपको माहौल और सामाजिक खिदमत के इस रास्ते पर इस अंदाज में गामजन किया।
0: मैं बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए जो स्विमिंग पूल था वो डल लेक था, क्योंकि मैं डल के इस किनारे पे रहता हूँ जिसको ओल्ड गगरेबल रोड के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे बड़ा हुआ, तो हम जब अपने 8th, 9th, 10th में स्पेशली जब हम स्विमिंग के लिए जाते थे तो हमारे लिए डल था। लेकिन मैं जाता था डल लेक, तो हमें जब हम घर आते थे, धीरे धीरे ये 1998 की बात है जब हमारा स्कूल फिनिश हो रहा था, तो घर वाले कहते थे कि आप लोग अगर डल में अगर आप नहाने जाते हैं तो आपने घर में भी नहाना है। और मैंने अपने दादा से सुना था कि ये तो इसका पानी पीते थे। तो मेरे जहन में एक बात रही कि बेसिकली कि 20 साल या 25 साल में ऐसा क्या हुआ कि जिस डल का हम पानी पीते थे, आज हम उस डल के पानी में अगर हम नहाने भी जाते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि आपने डेटॉल से नहाना है। तो इन चीजों ने मेरे ऊपर बहुत ही एक दिमाग पे एक बहुत ज़रा असर डाला कि मैं ये देखूं कि क्या है। तो 2005 में मैंने पहला जो एक रिसर्च पेपर डल के ऊपर जो मैंने पब्लिश किया, मैंने एक छोटी मोटी एक ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम बनाई कश्मीर कंसर्न के नाम से, उस कश्मीर कंसर्न के अंडर मैंने पहला पेपर जो डल का है वो पब्लिश किया। मैंने लोगों के सामने वो बातें लाई, शायद 2005 में आज से 21 साल पहले जो लोगों के सामने बात नहीं आई थी कि डल का पानी अब पीने लायक क्या, अब तो वो हाथ साफ करने लायक भी नहीं रहा। तो ये मेरे जहन में एक बहुत बड़ा ये रहा कि जिसपे ऊपर मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से अब मैं काम कर ही रहा हूँ उन चीज़ों पे। तो उसी चीज़ जिमन में ये आया कि डल का जो कैचमेंट है वो त्राल भी है, डल का जो कैचमेंट है वो दाजी काम का ऊपर वाला पहाड़ भी है, डल का जो कैचमेंट है वो खिम्बर का पहाड़ भी है। जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था या बताया जाता था, हमें लगता था कि निषाद शालीमार डल लेक का कैचमेंट है, लेकिन जब आप रिसर्च में जाते हैं, जब आप डिटेल में जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि जो बात एक छोटी होती है वो उतनी छोटी बात
1: नहीं होती है।
0: तो मैंने वहां पे क्या देखा, जब मैंने इनिशियल रिसर्च मैंने किया, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े, कुछ बाहर से भी बैरूनी मुल्कों से भी कुछ लोग आए, उनके साथ मैंने कुछ काम किया, तो उन्होंने कहा कि अगर डल को हमें बचाना है तो हमने पेड़ त्राल में लगाना है, हमने खिम्बर में लगाना है, हमने जो हमारा जबरवन पहाड़ है, हरमुख है, वहां पे लगाने हैं। ये आप यहाँ पे इसको, इससे आप बचा नहीं सकते।
1: यहाँ पर मैं एक बात इंक्लूड करना चाहती हूँ, हम अब डल की बात कर रहे हैं, लेकिन डल को बचाने के लिए, वाटर बॉडीज को बचाने के लिए पेड़ लगाना है।
0: हाँ, वो क्योंकि
1: हम सबको समझना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज है ना, मैं एक ही चीज कहता हूँ, जब सरकार कहीं भी कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम उठाती है और एक बड़ा बहस छिड़ जाता है कि हाउ वी कैन बैलेंस डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एक बड़ा बहस छिड़ी हुई है, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं रोड,
1: बहुत बड़ी जंग है आज के रेट की।
0: जी, तो बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक ही चीज हर किसी इंसान को यही कहता हूं कि आप जब किसी पेड़ की तरफ देखें तो आप सोचें कि जितनी भी आपके पास संपत्ति यानी कि दौलत होगी, अगर हम पूरी दौलत भी खर्च करेंगे कि आपको लगता है कि आप उस लेवल का एक पेड़। और एक बड़ा मिथ है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि मैं बैरूनी अकवाम के जो हमारे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनको भी रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया या कहीं पे, पूरे दुनिया भर में, ये यहाँ पर हमारे देश में या हमारे कश्मीर में ही नहीं है, पूरे दुनिया भर में एक बात चल रही है कि हमने पेड़ काटा कोई डेवलपमेंट काम के लिए, लेकिन हमने 10 पेड़ लगाए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है आज की दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो ये पेड़ है, जो ये हमें जो ये हवा दे रहा है, जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, इसके बदले अगर आप 1000 पेड़ भी लगाएंगे, लेकिन उनको उस लेवल तक पहुंचने में मिनिमम 50 साल लगेंगे।
1: ठीक,
0: उन 50 सालों का क्या?
1: तो वही मैं भी जानना चाहती थी कि अगर इसका कोलसा टुंचु इन फ्यूचर, लाइक अगर ऐसे दाहवरी पद का कोलसा टुंचु, ये शायद आज पाए कि अच्छा यूज, सोशल यूज या मतलब इकोनॉमिक यूज या का पर्सनल यूज आत कुलिस, یہ ایسا دہی وہر چاٹو.

0: जी, आज हमारे संग हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जिनके साथ हम माहौल को लेकर बात कर रहे हैं, और माहौली तहफ़ और पानी के ज़खायर की बहाली में इनका काफ़ी बड़ा हाथ है, उस बारे में भी इनसे बात करेंगे। लेकिन हमारी एक बात अधूरी रह गई है। तो डॉक्टर साहब, जो हम ये 50 साल का जो हमारा पेड़ है, उसका काटने के बाद जो हमारे 50 साल का गैप रहता है, उसको फिल करने के लिए प्लान की बात अगर हम करें, तो उस प्लान के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, प्लान्स तो गवर्नमेंट देखे, जैसे अभी मास्टर प्लान इन प्लेस है, जो हमारा 2020 से 2035 का मास्टर प्लान है, उसमें ग्रीन स्पेसेस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिस हिसाब से विंटर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, दो साल में आपके जो 2025 और 2026 का विंटर था, दे वेर ऑलमोस्ट स्नोलेस, बहुत बहुत कम बर्फ गिरी। कुछ ही एरियाज है जहाँ पे बर्फ गिरी। पहले क्या होता था, अगर डेफिसिट बर्फ का होता था या बारिश का होता था, तो लेटर पार्ट ऑफ जो होता था, जैसे फैब अप्रैल या फैब या मार्च में, वो फुलफिल हो जाता था कहीं पे। लेकिन पिछले दो साल से स्नो डेफिसिट चल रहा है। तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए कि अगर ये स्नो डेफिसिट हुआ, उसका समर पे अभी आपकी पानी
0: का
1: असर पड़ ही रहा है। देखिए, आप देखिए, अगर कश्मीर में इस बात पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि वहां पे लोगों को पीने का पानी ही नहीं है, अगर जो बाहर से टूरिस्ट आएगा, वो किसी से पूछेगा, अपने ड्राइवर से, साथी से, दोस्त से, पर ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो सब कुछ ठीक है, वो कहेंगे इनके घर में पानी
0: पानी नहीं है।
1: तो वो कहेगा कश्मीर में हूं मैं, वो अपनी आंखें देखे, फोन पे देखेगा लोकेशन, क्या मैं कश्मीर में ही हूँ कि कहीं और हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट कश्मीर, वी आर एट द टॉप ऑफ द वाटर टेबल। कहीं ना कहीं पे हमारे जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि वाटर डेफिसिट यहाँ नहीं है। क्या है, वाटर की जो स्कैरसिटी, इसलिए मे बी मिसमैनेजमेंट एंड ऑल दैट। रहा आपका सवाल कि जो हमारे डेवलपमेंट काम आ रहे हैं सामने, और भी आएंगे, उसमें पेड़
0: आते रहेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है हमारे,
1: उसमें पेड़ कटेंगे, हम खड़े हो जाएंगे पेड़ के लिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी इन पेड़ों को दी है। मुझे दुख होता है, सिर्फ आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर कहीं पे पेड़ कटते हैं, मुझे लगता है कि जैसे मेरी किसी ने बाजू काटी, क्योंकि मुझे पता है कि पेड़ की वैल्यू क्या है, पेड़ को लगाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है।
0: लगाने में इसको 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसको ग्रो करने में, इसको केयर करने में 5 साल,
1: एग्जैक्टली
0: 5 साल तक इसके पीछे रहना पड़ता है।
1: कि एक अर्बन प्लान जो हमारे पास, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना प्लान है, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की जरूरत है। कि उनको ये बताना चाहिए लोगों को कि ये वाला फॉरेस्ट हमने डेवलप किया, कि हो सकता है कल कहीं पे 200-500 पेड़ कट जाएंगे, उसके बदले ये रेडी होंगे उस टाइम, यानी कि आपने रेडी रखा,
0: रिजर्व रखा, अपना बैंक रखा।
1: आपने जैसे अभी मैं कहता हूं कि जैसे बैंक की बात हुई, मैं कहता हूं, मैं जब बच्चों को सिखाता हूं, मैं कहता हूं बैंक तब देता है जब उसमें आप डिपॉजिट रखेंगे। हमारा बैंक था ग्लेशियर, अब अगर ग्लेशियर ही मेल्ट हुआ तो आएगा कहां से?
0: नहीं,
1: आपके पास तो बैंक होना चाहिए ना। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लानिंग के साथ साथ रोड मैप और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन, क्योंकि बहुत सारे प्लान कभी कभार ऐसे बनते हैं कागजों पर रहे, कागज के आगे चलते नहीं, तो उसका भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ये हो जाएगा कि लोगों को ये मुतमईन रहेंगे लोग कि अगर आप कहीं से भी कोई डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, और आपने एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए जब भी आप कोई डेवलपमेंट प्लान ऐसा बनाते हैं जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ये है कि पेड़ कट रहे हैं, मुझे लगता है कि ऑन बोर्ड उन लोगों को भी लेना चाहिए जिनको तजुर्बा ग्राउंड पे है, जिनको शायद जो किसी लालच के बगैर काम कर रहे हैं, जिनको कोई किसी का कोई किसी चीज का ये लालच नहीं,
0: स्वार्थ काम कर रहे हैं,
1: कोई स्वार्थ नहीं है या कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है वो लोग दिल से काम करते हैं, उनको भी हक बनता है कि उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि वो भी अपना मशवरा दें, ताकि हम अपने कश्मीर को बेहतर और सरसब्ज
0: और वही वही खूबसूरत कश्मीर बना लें। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस चीज़ की प्लानिंग अभी हमारे पास नहीं है, प्लानिंग की कमी है, जिसकी वजह से हमारे जो जंगलात का जो खजाना है वो कम होता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस पर काम करने की जरूरत है,
1: बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा अगर असासा है और कश्मीर को अगर फिर से जन्नत कोई चीज बना सकता है, वो यही सरसब्ज पहाड़, वही सरसब्ज हमारे जो जो अर्बन है या कहीं पे भी, जहां पे भी हम लगा सकते हैं, वो हमें लगाना चाहिए, ताकि हम अपने कश्मीर को फिर से,
0: चूंकि यहाँ पर प्लान की बात आ गई, आम शहरी जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में माहौल को बचाने के लिए कौन से छोटे मगर मौसर इकदाम कर सकते हैं, या अगर नौजवान है उनको माहौलियाती तहफ़ की तहरीक में कैसे शामिल कर रहे हैं आप, और उन्हें इस काम की तरफ रागिब करने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए?
1: देखिए, दो चीजें इसमें हैं जो हम हमेशा कहते रहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं एज अ लेमैन। बड़ी बड़ी बातें तो सब करके जाते हैं, है ना,
0: अक्सर चेस तक यू नो नारे ये दीवान तो, मगर तकरीर ये करान
1: माहौलियात
0: ऑन ग्राउंड चुनिस करान, बहुत सारे लोग ऐसे भी हम आप दूसरे लोग कि ये मिसाल पर ग्राउंड लेवल पर काम

0: हम सबके लिए बहुत से नए दरीचे जो है खोलने का बाइस बनी है। आपका काम इस बात का सबूत है कि अगर इरादा सच्चा हो तो ज़मीन भी साथ देती है। आपकी कही हुई बातें सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा बीज है जो सबके अंदर और इनफैक्ट मेरे अंदर भी इस सरजमीन के लिए मोहब्बत और खिदमत का जज्बा जगा रही है। हम आपके इन तमाम ख्वाबों की तकमील के लिए दुआगू हैं जो आप इस धरती के लिए देख रहे हैं, और आपकी रहनुमाई और इस कीमती वक्त का आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो मशहूर हैं
1: शुक्रिया,
0: आप,
1: शुक्रिया आपका बहुत बहुत
0: इंशाल्लाह
1: शुक्रिया।
0: अगली बार फिर आपको दावत देंगे।
1: इंशाल्लाह
0: जितनी बातें रह गई वो अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर करेंगे।
1: ज़रूर ज़रूर।
0: आज के लिए बस इतना ही। तो समीन ये थे हमारे साथ आज के मेहमान खसूसी, जिनके साथ हमारा ये बातों का सिलसिला बहुत ही अच्छा रहा, दिलचस्प रहा, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी ये इंट्रोडक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, फ़ायदेमंद रहा होगा। लीजिए चलते चलते आपको इस गाने का एक चंद बोल सुनवा देते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं।

0: जी हाँ, जीना इसी का नाम है कि अपनी मुस्कुराहटों को दूसरों पर निसार करें और अपने जो ज़खायर है उनका ख्याल रखें, माहौल का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ख्याल रखिए अपने अपनों का। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, जुड़ती है आपके साथ फहमीदा।
1: शुक्रिया तस्लीमा। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, समय 11:31 हुए हैं, हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये छा आकाशवाणी श्रीनगर, समीन का पचित अख्तर मिनट सपित वली बोजो छकर तरो पेशकरण सनाउल्ला ऋषि तिहिन सती वली बोजो मनीष कला में शकुर ऋषि।

0: سامین تیسو چھکر تو رو بوزان پیش اس کران سناولاری شیتی ہنس لتی منج بوزو تے کلام شکوری شی یہ چھاکشوانی سری نگر سون دوی ملان بوزیو आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन समीन 12 बजने वाले हैं। दिन के लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी दिल्ली खबरों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक

ने खबर दी है कि इस सूर्यताल के नतीजे में डोडा को किश्तवाड़ से जोड़ने वाली इस सड़क को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। सड़क के इस हिस्से पर कई गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। मुतालिका हुकाम ने इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई का आगाज किया है। 17वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट मुकाबले में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म की टीम को कल नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। ये टीम वहां एक तकरीब पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट के चैंपियन होने का एजाज हासिल करेगी। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने मजकूरा टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के नौजवान दूर अंदेशी और एतमाद जैसी सलाहियतों से मालामाल हैं। आज कोऑपरेशन की मरकजी वजारत का 5वां योम तासीस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कोऑपरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि के मौजू पर एक तकरीब मुनक्द हो रही है। तकरीब के दौरान मरकजी वजीर कई प्रोजेक्टों का संगी बुनियाद रखने के अलावा दीगर कई प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ करेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। ये टीम वहां एक तकरीब पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट के चैंपियन होने का एजाज हासिल करेगी। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने मजकूरा टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के नौजवान दूर अंदेशी और एतमाद जैसी सलाहियतों से मालामाल हैं। आज कोऑपरेशन की मरकजी वजारत का पांचवा योम तासीस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कोऑपरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि के मौजू पर एक तकरीब मुनक्द हो रही है। तकरीब के दौरान मरकजी वजीर कई प्रोजेक्टों का संगी बुनियाद रखने के अलावा दीगर कई प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ करेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सामने दिन के एक बजने वाले हैं, पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की

जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में।

0: मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल एनसीईआरटी के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं, जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं।

0: तो
1: जी
0: उनके जो लाइक्स हैं,
1: ऐसा
0: इस
1: भी है।
0: प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है, वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं।
1: जी
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा, और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है,
1: जी
0: इसमें
1: बिल्कुल
0: कोई नई बात नहीं है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं,
1: जी
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना।
1: जी
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया,
1: हाँ
0: लेसन
1: ध्यान
0: के लिए समय
1: भटकता है।
0: कम बच गया,
1: जी
0: तो उनका जो ध्यान भटकता है
1: जी
0: उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को किसी
1: संकोच नहीं
0: प्रकार
1: करना
0: का
1: चाहिए।
0: संकोच नहीं करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक उनकी भूमिका क्या हो सकती है।
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं,
1: जी
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात है।
1: बिल्कुल बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: बार
1: है,
0: यह होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स
1: राहत
0: फील
1: मिल
0: करता है,
1: जाती है। जी
0: राहत
1: हाँ
0: मिलती है।
1: जी
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं
1: जी
0: कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम
0: ये
1: से आपका मतलब रिजल्ट।
0: जी रिजल्ट से,
1: जी
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर
1: जी
0: ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो
1: जी
0: बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे
1: अच्छे
0: बहुत अच्छे
1: खिलाड़ी हैं।
0: रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और
1: बिल्कुल
0: वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि अलावा, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है।

0: म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं
1: जी,
0: कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: मनोबल
0: बढ़ता है
1: जी।
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है
1: जी।
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी

0: थोड़े से कट जाते हैं अपने साथियों
1: अकेलापन भी
0: से,
1: आ जाता
0: अकेलापन आ जाएगा
1: जी।
0: अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं,
1: जी हाँ।
0: तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए
1: जी।
0: और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार
1: जी,
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
1: जी,
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया?
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक

0: अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें, दूसरा जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें, और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें, और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें, और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक

0: टेबल पे भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो
1: जी
0: टाइम टेबल
1: बिल्कुल
0: के अनुसार उसका हम
1: जी।
0: काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूं।
1: जी
0: 8448440632 8448440632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: सामीन, आप समाध कर रहे थे NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी श्रीनगर है।
5: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
6: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
7: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और

0: रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमयी बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
3: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सामिन, 1:50 होने वाले हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी

0: खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहर-उल-काहिल खत्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी, महासागर नजरिए नीज आज़ाद और खुले भारत बहर-उल-काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ता नज़र को मजीद तकवीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वजीर आजम के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेजी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तसादी, तजारती और कारोबारी राबतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 3 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बहामी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकत की निज़ाम बनाने की समत काबिल तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने यह ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आईन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर, मुमताज माहिर तालीम, बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नजरिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के एक पुरज़्म मैमार थे जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों आभा से 104 करोड़ से ज्यादा सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं।

0: एक मजबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिंसों पर मबनी एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है जो लोगों को एक वसीतर सेहत निजाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों और दीगर खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसत देना है ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमात का इहाता किया जा सके। इंतखाबी कमीशन ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में असेंबली की 3 सीटों के जिमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जिमनी इंतखाबात बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके के लिए कराए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरब बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जिमनी चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के अरकान सुखविंदर शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश छी बराइक के मुस्ताफी होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सारिफिन के तहफुजाती कानून और पॉलिसी पर माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि इजलास में रुकन ममालिक, बैन अलाक़वामी तंजीमें, सारिफिन, तहफुजाती हुक्काम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहिरीन का कहना है कि बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर ताउन मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। सारिफिन उमूर के महकमे के सेक्रेटरी निधि खेरे इस इजलास की सदरनशी होंगी। वो सारिफिन के तहफुज से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगे। सारिफिन के तहफुज की अहम आलमी तरजीहात के सिलसिले में मुल्कों के माबैन तबादला ख्याल की रहनुमाई करेंगी। दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: इम्तिहानात के निकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के इम्तिहान की फीस के रिफंड के लिए बैंक खाते की तफसीलात को अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के आइंदा 3 रोज के दौरान आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। यूक्रेन में आज सुबह राजधानी कीफ में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 दीगर जख्मी हो गए। तुर्की में नेटो की अहम सरबराह मीटिंग से एक दिन कबल यह हमला किया गया है जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शिरकत करने का इम्कान था। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि रूस ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मैक्सिको सिटी में इंग्लैंड मैक्सिको को 2-3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मैक्सिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विंबलडन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रूस के खिलाड़ी को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं खवातीन के सिंगल्स में कैरेलोना मोंकोवा प्री क्वार्टर फाइनल में चेक जमहूरिया की अपनी साथी खिलाड़ी और साबिक चैंपियन बारबोरा को हराकर तीसरी मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका भी पहली मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा है कि इससे आजाद और खुले भारत बहरुलकाहिल खत्ते के तई नुक्ता नजर के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है और इंग्लैंड मैक्सिको को 2-3 गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is

पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 203.5 MHz पर। समय 2:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे।

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा,
2: लैला ओ लैला,
0: लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत।

0: वो हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत करेगा।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, आज की निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेज़बान फहमिदा आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी खैर वाफियत से हैं। दोस्तों, फिर हाजिर हैं हम वही फिल्मों के नगमों का सफ़र लेकर आपके लिए, अपने प्यारे सुनने वाले दोस्तों के लिए। दोस्तों, इस सफ़र पे हम शुरुआत करते हैं कुछ ख़ास नगमों से, कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनके बोल, जिनकी धुन कभी भी धीमी नहीं पड़ती, कभी भी नहीं हो जाती, हमेशा चमकती रहती है। उनकी धुन, वो साज़ हमारे कानों में हमेशा ही बजते रहते हैं, वो साज़ जिन पे हमारे दिल थिरक उठते हैं।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा म्यूजिकल प्रोग्राम जिसका नाम है फौजी भाइयों के लिए, जहां हर गीत सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि एक एहसास, एक कहानी और जिंदगी की किसी न किसी खूबसूरत लम्हे की याद। दोस्तों, आज कुछ देर के लिए रोज़मर्रा की मसरूफियात को एक तरफ इंसान रख दें तो दिल के दरीचे खोल दें और मौसीकी के इस हसीन रंगों में खो जाए, जहाँ हर धुन मोहब्बत की खुशबू लिए हुए है और हर बोल जिंदगी का एक नया मफहूम सिखाता है। तो आइए इस खूबसूरत सफर को और मजीद आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आज के नगमे आपको, आपके दिल को छू जाएं।

जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वो नगमा ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, कुछ नगमे सुनने नहीं बल्कि उनमें कुछ महसूस करने का होता है। दोस्तों, ये नगमे सीधे हमारे दिल तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं इस खूबसूरत एहसास के साथ। और एक नगमा सुनते हैं और उम्मीद है कि अंदाज़ आपके नगमे सुनने का बिल्कुल आपके दिल तक उतर जाए।

जी फाजी दोस्तों, ये थी आवाज़ मुकेश की। दोस्तों, मौसीकी वो जुबा है जो दिल को छू जाती है। इस बात को हम यकीनी बनाते हैं कि जब हम इन धुनों को सुनते हैं, इन नगमों को सुनते हैं, दोस्तों इन नगमों से महफिल, जहां हर नगमा, जहां जो महफिल सजती है, हर नगमा एक नई कहानी सुनाने, एक हर नगमा एक नई कहानी सुनाते और हर शय दिल को छू जाती है।

जी दोस्तों, फिल्मों का सफ़र जारी है और हम करते हैं आपसे अपने दिल की बात। दोस्तों, फिल्मी नक़्मे, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे जितनी भी बात की जाए बहुत कम है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे मौजू हैं, अगर उन पे बात की जाए तो कई सारे मौजू और उभर कर आते हैं। और ऐसे ही एक खूबसूरत सा रंगों, रिश्तों और ख्वाबों का सफ़र जो है वो है ये दुनिया। दोस्तों, दुनिया के ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर न जाने कितनी कहानियाँ, कितने ख्वाब, कितनी खुशियाँ और कितने गम सिमटे हुए हैं। कोई इस दुनिया को मोहब्बत की नज़र से देखता है, तो कोई उम्मीद की, तो कोई तजुर्बात की। कहते हैं कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ हर इंसान अपनी एक अलग अलग कहानी लेकर आता है। कुछ यादें छोड़ जाता है और कुछ यादें साथ ले आता है। दोस्तों, कुछ यादें छोड़ें, कुछ बातें, कुछ अपने, वक्त बदलता रहता है लेकिन दुनिया चलती है। वक्त चाहे कितना भी बदले, मौसम बदलते रहें, मगर दिल के एहसास और मौसीकी की मिठास कभी पुरानी नहीं होती।

0: फौजी दोस्तों, प्रोग्राम जारी है, हम लौटते हैं इस वक्फे के बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखें भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: दोस्तों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे फलसफे की, ऐसे लफ्ज की जिसका नाम दुनिया है। दोस्तों, इसलिए मौसीकी भी जिंदगी की ही तरह होती है। कहते हैं कि दुनिया एक मुसाफिर खाना जहाँ सब कुछ बदलता है, जो जहाँ मिठास भी है, कड़वाहट भी, एहसास भी है और भी। इसलिए कभी बीते लम्हों में ले जाते हैं वो नगमे हमें, तो कभी आने वाले कल की उम्मीद जगा देते हैं। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर में हम सुन रहे हैं वो नगमे जिस दुनिया के रंग मोहब्बत, दोस्ती, उम्मीद, जुदाई और जिंदगी के मुख्तलिफ एहसासात को अपनी धुनों में समेटे हुए हैं।

जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे शहर की, यानी ऐसी दुनिया की जो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं बल्कि ये एक ऐसा शुमार, ऐसा साथ रिश्तों, ख्वाबों और तजुर्बात का हुस्न से, जहाँ हर इंसान अपनी एक अलग दास्तां रखता है। किसी की आंखों में ख्वाब है, किसी के दिल में उम्मीद, तो दोस्तों किसी के लबों पर मुस्कुराहट है तो किसी के दिल में खामोशी दर्द। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दौलत नहीं बल्कि वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ये दुनिया हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, कभी सब्र, कभी मोहब्बत, कभी जुदाई, कभी वफा और कभी ये सबक कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।

जी दोस्तों, कहते हैं मौसीकी भी इस दुनिया की तरह रंगारंग है। हर नगमा किसी न किसी दिल की आवाज़, किसी की खुशी, किसी की याद या किसी के ख्वाब की तर्जुमानी करता है। दुनिया की इन्हीं रंगों, खूबसूरत एहसासों और लाजवाल नगमों के साथ अपनी इस मौसीकी के सफ़र को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

लिसनर्स, तो इसी नगमे के साथ आज की निशस्त से लेते हैं आपसे इजाज़त। आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए नगमा और मुझे दीजिए इजाज़त।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। सामिन 3:50 होने वाले हैं। पेश है हमारे यहाँ से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर अजम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा आज से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत 32 जहीन खातीन की इज्जत अफजाई की। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली की मयारी सहूलियात पहुंचाने का दोहराया आज़म। और यात्रा के पहले 4 दिनों के दौरान 74,000 से ज्यादा यात्रियों ने दी पवित्र गुफा में हाजिरी। अब खबरें तफसील से। वजीर अजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुए। पहले मरहले के तहत वो 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। दौरे पर रवाना होने से पहले वजीर अजम ने अपने बयान में कहा कि उनके दौरे से इन 3 मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों को तकवीत हासिल होगी। इस दौरान वो वहां की आला कयादत के साथ बाहमी मफादात और

0: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: कौम आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा कर रही है। इस हवाले से आज मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफ से कोलकाता में वजीर दाखला अमित शाह की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में आनजहानी के रोल को उजागर किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुलाही अकीदत नजर किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आनजहानी को एक अजीम तालीमदान और दानिशमंद स्टेट्समैन में करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है। एक मजमून में वज़ीर आज़म ने उन्हें हिम्मत, हुबुलवतनी और बेलूस खिदमत का मुजस्मा करार दिया। जिन दीगर शख्सियात ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है उनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि कौमी यकजहती और कौम के तई बेलूस कुर्बानियां देने का आनजहानी का जज्बा हमें लंबे अरसे तक तरगीब देता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन आज से जम्मू के दो रोजा दौरे पर हैं। पार्टी की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि नितिन नवीन तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा दीगर कई प्रोग्रामों में भी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से चेरीज और सेंट्रोज आलू बुखारों पर मुश्तमिल अपनी नवियत की पहली खेप को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बरामद किया गया है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यूएई भेजे गए इस खेप की बदौलत यहां के किसानों को अपनी मेवों की अच्छी खासी कीमत हासिल होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वादी के अव्वल से 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीमशुदा प्राइवेट स्कूलों में आज से 14 दिन की गर्माई छुट्टियों का आगाज हुआ। इस सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मज़कूरा स्कूल 20 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। डोडा में आज हुई भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे 44 पर प्रेमनगर के नज़दीक मिट्टी के तोदे गिर आए हैं। हमारी नुमाइंदे खुर्शीद पटरू ने खबर दी है कि उस सूरत हाल के नतीजे में डोडा को किश्तवाड़ से जोड़ने वाली इस सड़क को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। सड़क के इस हिस्से पर कई गाड़ियां दरमद होकर रह गई हैं। मुतलिक हुकाम ने इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई का आगाज किया है। आखिर पर हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा आज से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत 32 जहीन खातीन की इज्जत अफजाई की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली की मयारी सहूलियात पहुँचाने का दोहराया आज़म और यात्रा के पहले 4 दिनों के दौरान 74,000 से जायद यात्रियों ने दी पवित्र गुफा में हाजिरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडिया वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर। समीन सपहर के 4 बज चुके हैं। समाप्त करें पहाड़ी प्रोग्राम से पहले पेश है ये वक्फा।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: कुलमाज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें जन्म दिहाड़े के मौके उत्ते खराजी अकीदत अदा कर रही है। इस हवाले अज मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफों कोलकाता में वजीर दाखला अमित शाह की सरदारी एक तकरीब मुनाकद हुई जिस मुख्तलिफ शोबों में अनजानी के रोग को उजागर किया गया। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्ण सुन उपराष्ट्रपति भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फुल अकीदत नज़र किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें अनजानी को एक अजीम तालीमदान ते दानिशमंद स्टेट्समैन करार दिता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुन भी डॉक्टर मुखर्जी को खराजी अकीदत अदा किया है। एक मजमून में वज़ीर-ए-आज़म सुन उन्हें को अहमियत खुबलवतनी ते बेलोस खिदमत का मुजस्मा करार दिता। जिन दुनिया शख्सियात सुन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराजी अकीदत अदा किया उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वजीर दाखला अमित शाह ते वजीर दिफा राजनाथ सिंह शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी डॉक्टर मुखर्जी को खराजी अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एल जी सुना है कि कौमी यकजहती ते कौम वास्ते बेलोस कुर्बानी देने का अनजानी का जज्बा असा को लम्बे वेले तक तकरीब देता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन आज थी जम्मू के दो रोजा दौरे उत्ते हैं। पार्टी की तरफों जारी एक प्रेस बयान में आ गया कि नितिन नवीन तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा दूसरी कई सरगर्मियों में भी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर थी गलासा ते सेंटोस अलबहारियों तो मुश्तमल अपनी नोई की पहली खेप को मुतहदा अरब अमारात वास्ते जोले गया। एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफों यूए जोले गए इस खेप की बदौलत इतने के किसानों को अपने मेवे की अच्छी खासी कीमत हासिल हो सी ते रोजगार के नवे मौके पैदा हो सन। वादी के अव्वल थी 22वीं जमात तक के सारे सरकारी ते सरकार की तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों में अज थी 14 दिहाड़ियों की गर्मी छुट्टियों का आगाज होया। इस सिलसिले में महकमा तालीम की तरफ पहला ही एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मजकूरा स्कूल 20 जुलाई को दोबारा खुल सन। डोडा में आज हुई भारी बारिश के बाद NH-44 उत्ते प्रेम नगर के नेड़े मिट्टी के ढेर चाड़ आए। अस्ति नुमाइंदे खुर्शीद पाटू सुन खबर दी कि इस सूरत हाल के नतीजे में डोडा को किश्तवाड़ नाल जोड़ने वाली इस सड़क को ट्रैफिक की आमदरफ्त वास्ते बंद किया गया। तो आखिर तय खास खास खबर एक बार फिर सुन गिनो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा आज थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत 32 जहीन खुवातीन की की इज्जत अफजाई। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला सुन जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली की मियारी सहूलत पहुंचाने का दोहराया वादा। यात्रा के पहलिया 4 दिहाड़ियों के दौरान 74,000 से ज्यादा यात्रियों सुन दी पवित्र गुफा में हाजरी। तो इस खबरों का बुलेटिन मुकल गया।
2: इशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव ज्यादातर 8.8 मीटर ते FM 2 73.5 में घटसन पेट 4:03 सपेद सामिन वलिव छकर तरह बोजो सनाउला ऋषि ते सहती बोजदावन कला में जब्बा ऋषि।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 और FM2 103.5 MHz पर। 5 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद आप सुनेंगे आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना समीन ना थारा मेजबान शौकत अहमद बोकड़ा का तरफ ते तमना प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपनो मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहे होएगा। समीन इकराम गोजरी जबान का फरोग मा रेडियो ते दूरदर्शन इन नशरियाती इदारा नाम बड़ी अहमियत हासिल है और यह गल भी जरूरी है कि किसी भी नशरियाती इदारा को जबान की तरक्की वास्ते उस जबान अदब को मवाद जुड़वाना वो होना जरूरी है। गोजरी जबान अदब की तरक्की में रेडियो दूरदर्शन तमारा

बैत सुन रहा था ते अगे गुलाम हसन तबस्सुम की आवाज में थारे वास्ते आमने गीत ला के रखे हुए और कलाम है जनाब इसराइल असर सावरों को।

जिया समीन, आज का प्रोग्राम में हमने गल की जनाब इसराइल असर साहब और के बारे और उनकी शायरी ने लेके। असर साहब और की शायरी के बारे हम जितनी भी गल करा का ते वे काटें, वक्त की मजबूरी की वजह से इनकी शख्सियत ते इनकी शायरी के बारे जितनी गल करनी थी हम थारे नाल नहीं कर सकया। इंशाल्लाह किसी और दिन इसे मौजू ने लेके थारे नाल फिर गल करा का, पर आखिर पर यह गल जरूर थारे संग साझी करना चाहूंगा कि जनाब इसराइल असर साहब और की शायरी ते पैगाम पूरी इंसानियत के मुतलक है। तबिल खसूस गुजर कौम वास्ते उन्होंने हर जा अपनी सिनफ में अपनी कौम की बेदारी वास्ते आवाज चाहिए। अपनी कौम के नाल उन्होंने हर मसाइल ना बांधे आने हुए और अपनी कलम के जरिए उन्होंने इस कौम ना इनकलाब ते अगे आने को राह दस्य हुए। यह हमदर्द शख्सियत तुम्हारे दरमियान नहीं रही, पर इनको ना गुजरी तारीख में हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा।

जी सामिन, इसके नाल ही मारा आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुक्या लगो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी, ते अपना मेज़बान शौकत अमन बोकड़ा ना। अगली मुलाकात तुड़ी दियो इजाज़त। अच्छा जी, राम राम।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:50 हो रहे हैं। आइए अब गोजरी में खबरें सुनते हैं। गोजरी खबरों के फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से आप हिंदी में खबरें सुनेंगे। पहले खबरें गोजरी में।
1: आदाब, यू आकाशवाणी श्रीनगर है। 5:50 हुए हम गोजरी में खबर सुनो। पहला अहम खबर की सुर्खी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा का पहला मरहला के तहत पहुंचा जकार्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत बतरी जहीन कालसरियन की इज्जत अफजाई की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का हर घर तोड़ी बिजली की मियारी सहूलियात पहुँचाने को दोहराया है अज़म। यात्रा का पहला 4 दिन के दौरान 78,000 तो ज्यादा यात्रियों ने दी थी पवित्र गुफा में हाजिरी। हम पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा सरकारी दौरा पर इंडोनेशिया पहुंच गए हैं, जिसे इंडोनेशिया का सदर प्रभाव सुबिंटो ने हवाई अड्डा पर उनको वलहाना इस्तकबाल किया। 8 से 10 तारीख तोड़ी वज़ीर-ए-आज़म आस्ट्रेलिया को दौरा करेगा, जिस तू बाद वे न्यूजीलैंड वास्ते रवाना होगा। दौरा पर रवाना होने तो पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अपना बयान में कहा कि उनका दौरा के नाल इन तीनों मुल्कों के नाल भारत का रिश्ता ना तकवीत हासिल होगी। इस दौरान वे उसकी आला क्यादत के नाल बाहमी मुफादात ते दिलचस्पी का मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल करेगा। कौम आज भारतीय जनसंघ का बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनकी 125वीं जन्म तिहाड़ा का मौका पर खराज अकीदत अदा करी है। इस हवाले के नाल आज मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफों कोलकाता में वजीर दाखला अमित शाह की सिदारत में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबा में अनजानी का रोल ना उजागर किया गया। नायब सदर जमहूरिया सी वी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुलाय अकीदत नज़र किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आनजहानी ने एक अजीम तालीमदान ते दानशमंद स्टेट्समैन करार दितो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर मुखर्जी ने खराज अकीदत अदा किया। एक मजमून में वज़ीर आज़म ने उन हिम्मत हुबल वतनी ते बिलोस खिदमात को मुजस्मो करार दितो है। जिन दूजी शख्सियात ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खराज अकीदत अदा की, उनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखला अमित शाह ते वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह शामिल हैं। यह जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डॉक्टर मुखर्जी ने खराज अकीदत अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एल जी ने कहा कि कौमी यकजहती ते कौम वास्ते बिलोस कुर्बानी देन को आनजहानी को जज्बो हम लंबा अरसा तोड़ी तरगीब दे तो रह गो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म तैड़ा का तकरीब के तालक के नाल आज माए भारत की तरफों श्रीनगर में एक तकरीब को इनकाद किया गया, जिस दौरान नौजवाना ना बहातर बनान और कौम की तामीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रोल ना उजागर करने वास्ते कई सरगर्मी अमलाई गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत बतरी जहीन रिसिपियंट्स की इज्जत अफजाई की। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर में मस्बत बदलाव आने वास्ते उन फेलोशिप की तारीफ करता हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत लगन के नाल नामुमकिन नामुमकिन करके दिखाई है। उन्होंने क्योंकि

0: कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसकी रूह के नाल हत्ता की नारी शक्ति एतमाद के नाल अपना टैलेंट नाम परोयकार आनेगी जम्मू कश्मीर को मुस्तकबल संवारने में अहम रोल भी अदा कर रही हैं।
1: मैं कैसे जम्मू कश्मीर की कल्पना करता हूँ जहाँ प्रत्येक बच्ची अपने बचपन से ही ये विश्वास लेकर के आगे बढ़े कि उसके सपने बड़े मूल्यवान हैं, उसकी आवाज प्रभावशाली है और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रयास हुए हैं। आइए हम इस सामूहिक संकल्प लें कि हम ऐसी व्यवस्था के निर्माण में भागीदार बनेंगे जहाँ प्रत्येक बच्ची को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, प्रत्येक बेटी को अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार और उद्यमिता का अवसर मिल सके और प्रत्येक महिला को नेतृत्व और निर्णय की प्रक्रिया में सम्मानजनक और गरिमापूर्ण भागीदारी मिले।
0: इस मौके पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपल काउंसिल इन इंडिया नामी किताब की रस्मी रुनवाई भी अंजाम दी गई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का हर घर तोड़ी काबिल एतबार काबिल रसाई ते मियारी बिजली सहूलियात पहुँचाने का हुकूमत का अजम ना दोहराए हुए। श्रीनगर में आज बिजली महकमा का कामकाज को जायजा लेता हुआ उन्होंने इस शोभा में हाथ में लिया गया गली की नोवियत का प्रोजेक्ट की बरवकत तकमील न यकीनी बनाने की अदाई दी। उन्होंने क्योंकि एक फाल ते जदीद पावर निज़ाम वजूद में आने वास्ते हर सतह पर जवाबदेही ते असलाहत ना यकीनी बनाए जानू चाहिए। मीटिंग में दस्यो गयो कि जम्मू कश्मीर में RDSS के तहत 5,700 करोड़ रुपया लागत आला प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। वजीर आला ने अफसर हदाय दी कि वे प्रोजेक्ट की अमल आवरी में हाइल तमाम रिकावटा ना दूर करें। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में डिजिटल अरेस्ट लाया अमल को चालू करने का अमल ना तेजी आने में साइबर जराइम की रोकथाम तो मुतलक निज़ाम ना मुस्तकम करने की पेशरफ्त को जायजा लियो। चीफ सेक्रेटरी ने साइबर फ्रॉड्स ते ऑनलाइन माली जराइम का बढ़ता चैलेंज ना को मुकाबला करने वास्ते एहलकारों की तरबियत ते हुनरमंदी ना इजाफा करने की जरूरत पर भी जोर दितो है। खुशगवार ते सुहाना मौसम के बीच सालाना शरिया मुनराजी यात्रा दुआ रवायती रस्ता पहलगाम ते बालतल तो खुशसलूबी के नाल जारी है ते आज 21,394 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी जबकि मजमुई तौर पर यात्रा का चार तैड़ा के दौरान 78,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंग का दर्शन किया। इन यात्रियों में बेशतर यात्री दूर दर्शन तो बाद वापस अपने घर पहुँच गए ते भी ईदगाह इंतजाम ते मेहमान नवाजी तो काफ़ी खुशी। कई यात्रियों ने हमारा नुमाइंदा तसद्दुक रशीद ते साबर अयूब के नाल गल करता हुआ अपना तासुरात को इस तरह इजहार कियो।
2: मध्य प्रदेश से आया हूँ, मैं यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे देश के जो जवान हैं वो अपनी कड़ी मेहनत से हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। सरकार से भी हम बहुत खुश हैं, यहाँ पर हम बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं हमारी यात्रा अच्छी मंगलमय हो। हम बर्फानी बाबा से यही दुआ मांगेंगे कि हमारे देश को और हम सबको सुरक्षित रखें।
3: मेरा नाम पूजा है। यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सारा इंतजाम बहुत अच्छा है, सुरक्षा वगैरह का कोई डर नहीं है। जैसा बताते हैं ना पहले कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमला होने की है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा प्रशासन है, बहुत कड़ी सुरक्षा है यहाँ पे।
4: मैं नवीन अबोहर पंजाब से आया हूँ। यहाँ पे इस साल जो हमें फैसिलिटी देखने को मिली वो पिछले लास्ट ईयरों से नहीं मिली। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, डेट वाइज जा रहे हैं सर, ये नहीं कि फर्स्ट आओ फर्स्ट जाओ, बम बम बोले।
0: आज इस दौरान आज 5,794 यात्रियों पर मुश्तमल पंजमो काफिलो जम्मू गाबगोती नगर बेस कैंप तू वादी पहुंचो। इन विचों 2,304 यात्री बालतल जबकि 3,490 यात्री पहलगाम के रस्ते पवित्र गुफा दर रवाना हो रहे हैं। ते उन यात्रा तो मुतलक यो पैगाम अदालत उज़्मा की हदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाला यात्रियों की ज्यादा तो ज्यादा रोजाना तैदा तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई ते उन तो क्यों गए है कि वे तत्काल सहूलियत तो इस्तेफादो करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने तो बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंची। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सारा यात्रियों ने अपनी बारी को इंतजार करन ते इंतजामिया की तरफों मुकर की गई तारीखों पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। कॉपरेशन का मरकजी वजीर अमित शाह ने क्यों है कि इसलाहत डिजिटाइजेशन ते पेशावरान निज़ामत की बदौलत मुल्क में कॉपरेटिव तहरीक एक नवा मरहला में दाखिल हो गई है। वजारत कॉपरेशन की पंजवीं योम तासीस तकरीब नाल खिताब करता हुआ वजीर मौसूफ ने क्यों कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां ना मुस्तकम करने वास्ते कोशिश जारी। उन्होंने किसानों तो अपील की कि वे आर्गेनिक एशिया की पैदावार ना बदामी ते कीमियावी खादन ते जराइम कुछ अद्वियात को घट तो घट इस्तेमाल करें। उन्होंने क्योंकि पिछला 5 सालों के दौरान वजारत कॉपरेशन ने करोड़ों लोगों की म्यार हयात में बेहतरी आने में अहम रोल अदा किया है।
5: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधन

0: के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर शब्द 5 मिनट सपद पेश छो गमी बाइन हिंद खतर अजिक प्रोग्राम।

وشروه بثمن بخس دراهم معه.

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसमात हैं डोडा और पाडर किश्तवाड़ में बादल फटने के वाकयात, सड़क के साथ साथ कई गाड़ियों को नुकसान। मेवा गाड़ियों के लिए कौमी शाहरा को दो तरफा खुला रखने की ग्रोवर्स की सरकार से अपील। बीजेपी कौमी सदर का जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा और भगवती नगर जम्मू से 5,500 अफराद पर मुश्तमिल यात्रियों का काफिला पहुंचा बेस कैंप। और भी वजुआत है आज के शेरबीन में एक वक्त के बाद।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 9018074333।
7: 9018074333।
8: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
9: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
8: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
9: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्राव नहीं हुआ। विटामिन ए छो साइन इम्यूनिटी बढ़ावा, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करा। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
8: मगर यह है सठा द्रो?
9: हाँ ना ना, सुई कम मत मज मुशुक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
10: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस मज दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन हिं जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
12: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
13: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहां प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड

0: सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
1: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
0: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शेरवीर, अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खवातीन की तरक्की ही माशरे की तरक्की है और एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर उसी वक्त मुमकिन है जब खवातीन बाख्तियार माशी तौर पर खुद मुख्तार हों और क्यादत और फैसला साजी में फाल किरदार अदा कर रही हों। श्रीनगर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाने की ये मुहिम जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी और इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की खवातीन ने हमेशा समाजी हम आहंगी और इस्लाह मुआशरे में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 2029 के बाद खवातीन की सियासी नुमाइंदगी में नुमाया इजाफा होगा। अब एक और मौजूद, भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन आज दोजाक दौरे पर जम्मू पहुंचे, जहां वो तंजीमी इजलासों की सदारत करेंगे, पार्टी कारकुनों और नौजवानों से मुलाकात करेंगे, जबकि गोरखनाथ मंदिर और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी हाजिरी देंगे। मौसूला इतला के मुताबिक नितिन नवीन की आमद पर BJP कारकुनान की जानिब से जम्मू हवाई अड्डे समेत मुख्तलिफ मकाम पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शेरबीन अफसरी नगर से सुन रहे हैं। सामिन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन दिनों बरसात जारी है, जिस वजह से इन इलाकों के लोगों को गर्मी से कदरे राहत मिल रही है। इधर गुज़श्ता 2-1 हफ्तों से जम्मू कश्मीर में भी मौसम दिगरगू है। इलाकावार आंधी चलने, जालाबारी और बारिश की वजह से बादल फटने के वाकयात भी रोनुमा हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा खत्ते में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश हुई और इस वजह से दो जगह पर सैलाबी रेलों की वजह से माली नुकसान हुआ, जबकि चंद गाड़ियां भी मलबे की जद में आई हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं नसीर खोड़ा से।
3: देर गए गुज़श्ता रात और आज आलस सुबह खिताई चनाब के कोहिस्तानी जिला डोडा में तेज हवाओं, बारिशों व बादल फटने के वाकात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में जिला के मुख्तलिफ नदी नालों में तुगयानी आने से कई मकामात की राबता सड़कें जहराब आई हुई हैं और बाज मकामात पर रहायशी ढांचों व दुकानों के अंदर सैलाब का पानी दाखिल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जिला डोडा की तहसील चिराला सेवा में तेज आंधी, बारिशों और आज आलस सुबह बादल फटने का वाका पेश आया, जिसकी वजह से अचानक सेवा चिराला और गड़सू प्रेमनगर के नदी नालों में पानी भर आया और पानी के तेज बहाव ने अपने साथ पेड़ पौधे, मट्टी, मलबा, पत्थर बहा लिए और सैलाब का ये पानी रहायशी ढांचों व दुकानों के अंदर चला गया और चंद दुकानें पानी व पत्थर और मलबा से भर पड़ी हैं, जिसकी वजह से दुकानों के अंदर मौजूद अशियाई जरूरिया व दीगर साधु सामान का बड़ा नुकसान हुआ है। इलाका चिराला सेवा के लोगों ने शहरबीन को बताया कि सेवा के बालाई इलाके में सुबह सादिक के वक्त अचानक बादल फटने की आवाज सुनाई दी, जिससे लोगों में खौफ का माहौल पैदा हुआ और सेवा के बालाई हिस्से से पानी के रेलों के खौफनाक आवाज की वजह से मुकामी आबादी में लर्जा तारी हुआ। बताया जाता है कि बादल फटने के वाका इस जगह पेश आया जहां ये नदी नाले अलग अलग जगहों से अलग अलग मकाम की जानब गुजर रहे थे, वरना एक ही जगह पानी गुजरने से दुकान व रहायशी ढांचों को काफी नुकसान होने का खदशा था। लेकिन तब भी सैलाब के रेलों ने खड़ी फसलों, मेवा, दरख्त व सब्जी का बहुत बड़ा नुकसान किया है और इलाका की राबता सड़कों के साथ साथ कई दुकानों के अंदर मौजूद राशन व दीगर खाने पीने की चीजें मलबे के अंदर दब गई हैं और तजात पेशा दुकानदार नुकसान से दो चार हुए। इधर चिराला गड़सू के मकाम पर किश्तवाड़ भटोत शहर पर भी भारी पत्थर, मट्टी, मलबा घिर आए हैं और जमीन का कटाव होने की वजह से ये सड़क कई घंटा गाड़ियों की नकल हमल के लिए बंद पड़ी है, मगर अब दोबारा इसको बहाल कर दिया गया है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी जिला डोडा के कई मकाम पर तेज हवाओं, बारिशों व बिजली गरजने से इलाका देसा, गादी, मरमत, कास्तीगढ़, कोटी, कल्याण, कोडरा, उदयानपुर, छलतन व गुंडो बलेस के कई इलाकाजात में फसलें, मेवा बागात, सड़कों व खड़ी फसलों के अलावा आर्जी पुलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जबकि बलेसा के गौड़ी, गुजर बस्ती, हलारंग, कलोत्रान, मच्छीपाल, काहरा, धुनदी, कालजू गासर में राबता सड़कों पर पसियां गिर आई हैं, जिसकी वजह से राबता सड़कें भी बुरी तरह

0: असर हुई है। अलबत्ता चिराला प्रेमनगर रोड की हालत अभी भी इंतहाई खस्ता बताई जाती है। जिला के दही किसानों ने खड़ी फसलों, मेवा बागात, राशि ढांचों व दुकानों और माल मवेशी के नुकसान के एवज माकूल मुआवजे का सरकार से मुतालबा किया है, क्योंकि तूफानी बारिशों व बादल फटने के नतीजे में इनका रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ है।
1: ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। इधर किश्तवाड़ के पाडर इलाके में भी बादल फटने का वाकया पेश आया है और इस वजह से सड़क को नुकसान पहुंचा है, जबकि चंद गाड़ियां भी पत्थरों और मलबे की जद में आई हैं। इस दौरान मौसमी और माहौलियाती तब्दीली की वजह से जम्मू कश्मीर में ज़राअत के साथ साथ हार्टिकल्चर शोबे को काफी नुकसान का सामना है। गुज़श्ता कई बरस से बेवक्त की बारिश, आंधी, जालाबारी और खुशकसाली के लंबे लंबे दौर हमारी ज़राअत और मेवा सन्नत को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस साल गिलास, खुबानी और दीगर मेवाजात की पैदावार में काफी कमी का खदशा है। अलबत्ता इस साल मेवाजात की मंडियों में बेहतर कीमत मिल रही है, जिससे कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो रही है। मेवा ग्रोवर्स के मुताबिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर माल बरदार गाड़ियों को एकतरफा चलने की इजाजत दी जा रही है, जबकि मेवा गाड़ियों को मुगल रोड से चलने की इजाजत है, जो कि मेवा ताजरों के लिए परेशानी का बायस बन चुका है। चेयरमैन कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर के मुताबिक गिलास, खुबानी, आड़ू चूंकि जल्द खराब हो जाते हैं और इन मेवाजात को कम से कम वक्त में मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में पहुंचाने की जरूरत है, मगर एक तरफा ट्रैफिक की वजह से इसमें ताखीर हो रही है। उन्होंने सरकार से अपील की कि मेवा गाड़ियों को कौमी शाहराह 44 पर ही चलने की इजाजत दी जाए।
2: सर, इसमें मेरी गुजारिश है कि इस साल हमारे पास जो फ्रूट की पैदावार है बहुत कम है। बहुत सारी जगहों पर, जैसे आपको मालूम ही है कि ये जालाबारी हुई है और जबरदस्त जालाबारी हुई है, इसकी वजह से हमारा माल बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरी बात है कि गर्मी की लहर जारी है और इस वजह से हमारा माल थोड़ा सा अर्ली भी है, मगर इन दिनों जो हमारी चेरी की फसल थी, अगर उसकी फसल बहुत कम थी मगर रेट उसके मुनासिब मिले, इसकी वजह से चेरी फ्रूट ग्रोवर्स को अभी हमारा यही तकमीन है कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। कीमत उनको अच्छी मिली मंडियों में, तो उसकी वजह से उनके जो भी कंसर्न थे वो पूरे हो गए। मगर इस वक्त हमारा आलू बुखारा और अर्ली एप्पल का सीजन चल रहा है। हर साल इसी तरह हमारे जुलाई के महीने में शुरू होता है, क्योंकि हर साल कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की शुरू हो जाती है और वादी के तमाम फ्रूट ग्रोवर्स श्री अमरनाथ यात्रा की यहाँ आते हैं। लोग उनका स्वागत करते हैं, हम खैर मकदम करते हैं दिल के गहराइयों से, मगर इसकी वजह से क्योंकि पिछले दिनों जो एडवाइजरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जारी की है उसमें वन वे ट्रैफिक रखा गया है, क्योंकि हमारा जो ये माल है आजकल जो तैयार है अर्ली वराइटी और ये पलम और उसके बाद हमारा बकोचा भी तैयार होगा, ये बहुत ही हाईली परिशेबल फ्रूट्स है, इमीडिएट इसकी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो हमारी एडवाइजरी पेश की कि एक दिन वो आप मगर रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसमें ये दिक्कत है उसमें 10, 12 और 16 वाली टायर वाली गाड़ी नहीं जाती है, उनको इजाजत नहीं है और हमारा माल ज्यादा इन्हीं गाड़ियों में जाता है। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, जैसे हर साल यात्रा के दौरान हमारे जो फ्रूट से रहती हुई गाड़ियों को प्रायोरिटी बेसिस पर हर दिन डेली बेसिस पर नेशनल हाईवे 44 से आगे जाने की इजाजत मिलती थी, इस साल भी होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम IGP साहब से भी मिले, IGP ट्रैफिक साहब से भी मिले, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारी बातें सुनी और यकीन दिलाया था कि हम कोशिश करेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी हम ड्यूरिंग दिस यात्रा पीरियड हम फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को डेली बेसिस पर आगे जाने की इजाजत दे देंगे ऑन नेशनल हाईवे 44। मगर अभी तक इसकी तरफ कभी अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्योंकि हमारे यहाँ यहाँ जालाबारी हुई है, बारिशें भी कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, हर दिन यहाँ आंधी भी आती है और गर्मी की लहर भी है। हमारे जो फ्रूट है अभी जो अर्ली वराइटीज इनकी शेल्फ एज बहुत कम है, बहुत कम होगी इनकी वो जो आपकी पिना चाहिए। तो ये हमारा फ्रूट जब मंडियों में पहुंच जाता है इसमें यहाँ से पहले हमारा चलिए हम विदिन 24 हमारे पहुंच जाती थी दिल्ली मंडी तक, अब इसमें 3 या 4 दिन लग जाते हैं। तो ये हमारा फूल जो रास्ते में होगा ये सारा सड़ जाएगा, आगे मंडी में सही तौर नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए हमारी यही गुजारिश है आबादी के तमाम फ्रूट ग्रोवर्स गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं, हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी इस्तदा करते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे भी इस्तदा कर रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे 44 पर जो भी फ्रूट की गाड़ियां ज्यादा उनकी तादाद देंगे 100 होगी उनको आगे जाने की इजाजत होनी चाहिए नेशनल हाईवे 44 डेली बेसिस पर। अगर ऐसा नहीं हो सका तो हमारे यहाँ बहुत नुकसान होगा, जो अर्ली वराइटीज है जिन जिन फ्रूट ग्रोवर्स के ट्रेडर्स का ये माल होगा उनको बहुत

0: नुकसान उठाना पड़ेगा और ये आगे मंडियों में सही सूरत में नहीं पहुंच पाएगा। जब ये सड कर पहुंच जाएगा तो वहाँ इसके दाम भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ये इस पर फिर दोबारा रिविजिट करें और इस एडवाइजरी पर, और इसके लिए हमने डिविजन कमिश्नर साहब को भी लिखा है। हम इंशाल्लाह कोशिश करें चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलने के लिए ताकि ये मसला हल हो जाए। अभी फिलहाल आज के दिन में ये हमारा एक बर्निंग इशू है नेशनल हाईवे का, क्योंकि पहले के मुकाबले में हमारी नेशनल हाईवे बहुत बेहतर है। पहले जब नेशनल हाईवे की हालत ठीक नहीं थी तब भी इनको आगे जाने की इजाजत मिलती थी, मगर आज अगर नेशनल हाईवे की हालत बहुत अच्छी है तो इसमें हमें फिर ये क्यों दिक्कत उठानी पड़ती है। हमें ये क्यों एडवाइज किया जाता है कि आप मगर रोड से इनको गाड़ियों को यहाँ रवाना करें, क्योंकि वहाँ मगर रोड में बर्दाश्त 12 और 16 टायर वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। और दूसरी बात है वहाँ बहुत सारी गाड़ियां और ट्रक ड्राइवर हजरत वहां से जाना नहीं मानते क्योंकि वो उस रोड में काफी दिक्कतें भी है। अभी वो लिंक रोड ही है, अभी नेशनल हाईवे का उसका दर्जा नहीं मिला है। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसकी तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए।
1: चेयरमैन कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर का सरकार से मुतालबा। समीन गोशबुग हुसन लोलीपोरा चंदरहामा और मौलिक हदयात से मकामी सार्फीन की तरफ से शहरबीन आकर बताया गया कि इलाके में इन दिनों पीने की पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। मकामी बाशिंदों ने शहरबीन को बताया कि इलाके को पहले ही जरूरत से कम पानी दिया जा रहा था, मगर गुज़श्ता 15 रोज से सप्लाई में मजीद कमी रोनुमा हुई है और आजकल सार्फीन अपनी जरूरियात पूरा करने में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गोशबुग और मौलिक हदयात के बाशिंदों के मुताबिक पानी की अदम दस्तियाबी का मामला कई बार मुतल्लिक अफसरान के नोट्स में भी लाया गया, मगर उनकी तरफ से मौसर इकदाम का हनूज इंतजार है। मुतासर लोगों ने जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर से अपील की है कि पानी की बहाली के लिए फौरी तौर इकदाम किए जाएं। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
4: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
5: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
4: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखें ना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
5: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
1: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन श्रीनगर हवाई अड्डे से आज कोई भी बाकायदा तिजारती परवाज उड़ान नहीं भर सकी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आज इस बात की तस्दीक की कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे के मरम्मती काम के पेश नजर 3 माह तक हफ्ते में 2 दिन फ्लाइट्स बंद रखने का अपना सबका फैसला वापस ले लिया है। अथॉरिटी के इस इकदाम से जम्मू कश्मीर की सियाहती सनत ने रात का सांस लिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया कि पीर और मंगल के लिए मुजवजा नोट्स को मनसूख किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि तब्दील शुदा टाइम टेबल को हतमी शक्ल देने और इसे शाया करने में कुछ वक्त लग सकता है। मुतलिका एयरलाइंस की जानिब से नया शेड्यूल जारी होने के बाद पीर और मंगल की फ्लाइट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल होने की उम्मीद है। समी जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से आज श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 5,794 यात्रियों का 5वां जत्था सख्त सिक्योरिटी के बीच वादी के लिए रवाना हुआ। यात्रियों की 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा जो बालतल और पहलगाम के रास्तों से जारी है 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के दिन इत्ताम पजीर होगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जारी

0: से अपील की है कि वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही तयशुदा तारीख पर अपनी यात्रा करें, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को बेस कैंप तक जाने की इजाजत नहीं होगी। एक रिपोर्ट इस तारीख से।
1: आज दिन भर श्री अमरनाथ जी यात्रा पुरअमल और मुनज्जम अंदाज में जारी रही। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ के दर्शन के लिए आने वाले यात्री खुश उसलूबी के साथ यात्रा जारी रखे हुए हैं। आज सुबह 4 बजे निर्मल बेस कैंप से हजारों यात्रियों ने अपनी यात्रा का आगाज किया। ये काफिला चंदनवारी, पुशुटाप, जोजबल और नागरकोटी से होते हुए शिशनाग और पंचतरणी पहुंच गए, जहां वो रात का कयाम करके सुबह सादिक गुफा के ओर रवाना होंगे। इस तरह बिलतरतीब शिशनाग और पंचतरणी में रात गुजारने वाले हजारों यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम का दर्शन किया। इधर ट्रांजिट कैंप काजीगुंड से सख्त हिफाजत इंतजाम के दरमियान 139 छोटी और बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला, जिसमें मजमूई तौर पे 3490 यात्री सवार थे, पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंच गए। इन यात्रियों में 2448 मर्द, 630 खवातीन, 362 साधु, 45 साधवियां और 5 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट फाइल करने तक आज 24,013 यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस तरह 3 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 80,040 पहुंच गई है। मौकम मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदे 4 घंटों के दौरान उमूमी तौर पर मतला अबरालूद रहेगा, जबकि कहीं कहीं हल्की बारिशें या गरज चमक के साथ मुख्तसर बारिश का इम्कान भी मौजूद है। जिला इंतजामिया और मुतलिक इदारे मौसम की बदलती हुई सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। यात्रियों की सहूलियत और हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के तहत नोयोग टनल काजीगुंड से लेकर पहलगाम तक 3 सतह हिफाजती हिसार कायम किया गया है, ताकि यात्रा पूरा अमन और महफूज खुशूबी के साथ जारी रहे।
0: आपने इस तारीख की रिपोर्ट सुनी। कुपवाड़ा से इतलात है कि हायर सेकेंडरी स्कूल करालपुरा में आज अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें मारूफ शायर और माहिर तालीम अली मोहम्मद मीर रावतपुरी के शेरी मजमूए की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा के सरपरस्त मीर गुलाम रसूल दर्दपुरी, सदर अयूब दिलबर, जडियो करालपुरा अली मोहम्मद लोन और फनादब से शुभ रखने वाली शख्सियात की खासी तादाद मौजूद थी। इधर कायरवन पारक देवर इंदरबुक लोलाब में शहजार अदब लोलाब की तरफ से एक महफिल मुशायरा का अहतमाम रहा। मुशायरे में शहजार अदब लोलाब से वाबस्ता मुख्तलिफ शुराए कराम ने अपना कलाम पढ़कर सामीन को महसूस किया। जवाद रसूल ने सिविल सोसाइटी की तरफ से शुरा का इस्तकबाल किया और इस प्रोग्राम की मेजबानी की। सामीन, वादी में पीने के पानी की गैर तसली बख्श फराहमी का सिलसिला जारी है। किसी एक जिले तक ये महदूद नहीं, बल्कि जगह जगह इस तरह की शिकायत सामने आ रही है। आज बात करते त्राल सब डिवीजन की, रिपोर्ट सुनते हैं शबीर भट्ट से।
2: वादी कश्मीर में जहां इन दिनों जुलसा देने वाली गर्मी से आवाम को मुश्किलात का सामना है, वहीं जनूबी कश्मीर के त्राल सब जिले में कई देहात के अंदर पीने के पानी की शदीद किल्लत ने सार्फीन को मुश्किलात में धकेल दिया है और लोग मकम जल शक्ति के इन दावों पर हैरान है, जो की मकम आए रोज अपनी तशहीरी मुहिम के दौरान कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक गर्मी के इन अयाम में जबकि आवाम को पीने के पानी की ज्यादा जरूरत है, त्राल के जरारी हार, ब्रंद पथरी, दूधमर्ग, गुलशनपोरा, नगीनपोरा, गुजरबस्ती सेमू, गुजरबस्ती राजपोरा, अवंतीपोरा टाउन, लारमू, पोशवन और कई दीगर देहात से पीने के पानी की किल्लत की शिकायत आवाम के लिए सुहाने रूह बनी हुई है और पे दर पे शिकायत के बावजूद महकमा जल शक्ति अवामी तवक्कात पर पूरी तरह उतरने में नाकाम नजर आ रहा है। शालद रमन नामी गांव में महकमा जल शक्ति की मकानी स्कीम के अंदर मैकेनिकल फॉल्ट आने की वजह से कई देहात पीने के पानी से महरूम हो चुके हैं। तहम इस बारे में महकमा जल शक्ति का मैकेनिकल डिवीजन बदस्तूर सर्दमारी का मुजाहिरा कर रहा है और खमियाजा आम सार्फिन को भुगतना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने कई मरतबा हुकाम को इस जानब तवज्जो देने की अपील की, लेकिन सितम जरीफी है कि महकमा अवामी गुजारिशात को बदस्तूर नजरअंदाज कर रहा है। इसी तरह पीने के पानी की शिकायत शाहजन, हाजन, बंगरार, कारमोला और दीगर देहात से मौसूल हो रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक गर्मी के नैया में महकमे जल शक्ति की नाकिस कारकर्दगी एक तरफ, महकमे बिजली की जानिब से हफ्ते में 2-3 मरतबा शटडाउन करने से कई सारी स्कीमें मुतासर हो गई हैं, जिसकी वजह से सार्फीन अदर परेशान है। इस दौरान शदीद गर्मी की वजह से लोग सब्जी क्यारियों और किचन गार्डन में गैर कानूनी तरीके से पीने का पानी सैराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई मुतासर हो गई है। हालांकि محکمہ نے لروجاگیر امیر آباد سنگرامہ اور کئی دیگر جہات میں اس حوالے سے ڈرائیو تو چلایا تھا لیکن

0: बाकी जात में इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जलशक्ति डिवीजन अवंतीपुरा जुबैर अहमद नकाश ने शहरबीन को बताया कि अगर सार्फिंग गर्मी के नियाम में पानी का मुनसिफाना इस्तेमाल करें तो किसी भी जगह पानी की सप्लाई मुतासर नहीं होगी। तमाम कई जात में शदीद पीने के पानी की किल्लत का एतराफ करते हुए उन्होंने एतराफ किया कि वहाँ पर टैंकर सर्विस शुरू की गई है।
1: ये थे त्राल से शब्बीर भट्ट। इस दौरान उड़ी से जफर इकबाल ने खबर दी है कि सईदपुरा में सड़क की तामीर के दौरान पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने के बायस बाणी और लगाम इलाकों में गुज़श्ता दो माह से पीने के पानी की शदीद किल्लत है। मकामी लोगों का कहना है कि खवातीन गर्मी में कई किलोमीटर पैदल चलकर नाले तक जाकर पानी लाने पर मजबूर हो रही है। महकमा जल शक्ति के एडब्ल्यू के मुताबिक मुतासर पाइपलाइन की आरजी बहाली के लिए मुतद्दिद बार पीएमजीएसवाई नामी एजेंसी से राब्ता किया गया, ताम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल बहाली का तखमीना भी भेजा गया है और महकमा पानी की सप्लाई बहाल करने की कोशिश कर रहा है। समीन साहित्य अकादमी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस अनंतनाग के इश्तराक से आज 95 किताबों के मुसन्निफ मरूफ कश्मीरी शायर अदीब और दानिश्वर गुलाम नबी आतिश के एजाज में एक बावकार तकरीब का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम साउथ कैंपस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कद हुआ जिसमें अदबी तालीमी और समाजी हलकों से तल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में साहित्य अकादमी के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान मरूफ अदीब डॉक्टर समीर शफी सिद्दीकी डॉक्टर शफी अयाज सदर मराज अदबी संगम डॉक्टर गुलजार अहमद डायरेक्टर कैंपस वसीम भारी समेत वादी के नवम्बर शोरा उदबा असाजा तलबा और अदब से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर गुलाम नबी आतिश की जिंदगी अदबी सफर और तख्लीकी खिदमात पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म भी जारी की गई जिसमें कश्मीरी जबान अदब के फरोग के लिए उनकी गिरा कदर खिदमात को उजागर किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर सवाल और जवाब का एक सिलसिला भी रहा। बानियाल से मोहन तस्कीन ने खबर दी कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल करेवा जोन बानियाल के तमाम मुलाजमीन को मुअत्तल किया है। ये कार्रवाई एक तालिब इल्म के मुबैना तौर पर कई घंटों तक स्कूल के अंदर बंद रह जाने के वाकये के बाद अमल में लाई गई है। समीप चौगाम कुलगा में गुजशत शाम में एक मोटरसाइकिल और बस के दरमियान टक्कर के नतीजे में एक नौजवान आजा जबकि दो शदीद जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक जांबाक हुए नौजवान की शिनाख्त बशीर अहमद शेख वलद गुलाम अहमद शेख साकिन हांद जवलगाम के तौर पर हुई है जो पेशे से एक तरखान था। हादसे में जख्मी हुए दोनों अफराद की इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। मरूफ अदीब और उस्ताद रशीद राशिद गुज़श्ता रोज अपने आबाई घर दुरसू पुलवामा में इंतकाल कर गए हैं। वो 72 बरस के थे। रशीद राशिद के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम मराज अदबी संगम के सरपरस गुलाम नबी आतिश सदर डॉक्टर मोहम्मद शफी अयाज साबिक सदर अली शैदा यूसुफ जहांगीर डॉक्टर हसरत हुसैन और मुख्तलिफ अदबी अंजुमनों ने ताज़ियत का इजहार किया। बाज एक ने मरहूम के घर जाकर लवाकिन से जाती तौर ताज़ियत की और दुआया मजालिस में शामिल हुए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौजूदात मुकम्मल हुआ चाहते हैं अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
4: घर का AC हो या गीजर वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबिलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामज
7: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान
6: मगर ये

0: فورٹیفایڈ آسان کیا چھو
1: فورٹیفایڈ دود تو تیل چھ برابر مقدارس مز تراؤن یوان وٹامن اے چھ سانہ امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھ اڑجہ مضبوط کران دود تو تیل چھ برابر مقدارس مز
0: مگر یہ ہے آج سٹھا دروگ
1: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تیز سوئی چھ بہتر پوشن دیوان
2: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
3: ایشوڈ ان پبلک ان ٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جینڈ
4: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता है। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कृपया कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।
5: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहाँ काम नहीं करते। यात्री बालटाल लुनवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
4: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: इसके तहत 5,700 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। वजीर आला ने अफसरों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों की अमलावरी में हायल तमाम रुकावटों को दूर करें। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू में मुख्तलिफ इंजीनियरिंग दफातर का अचानक दौरा करके उनके कामकाज और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो कामों के मैयार को बरकरार रखते हुए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सड़क राबतों को जम्मू कश्मीर की समाजी व इकतसादी तरक्की में एक कलीदी अहमियत हासिल है, इसलिए तमाम दरिदस्त लिए गए सड़क प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। आज वर्ल्ड जूनोसिस डे है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने इस दिन के ताल्लुक से अपने पैगाम में कहा कि जानवरों से इंसानों को लगने वाली बीमारियों के बारे में बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अवामी सेहत को तहफ़ुज़ देने के लिए जानवरों के सेहत को बरकरार रखने के लिए इकदाम कर रही है। खुशगवार और सहावने मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी से जारी है और आज 22,000 से जायद यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी, जबकि मजमूई तौर पर यात्रा के चार दिनों के दौरान लगभग 79,000 यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इन यात्रियों में बेशतर यात्री दर्शन के बाद वापस अपने घरों को लौट गए हैं और वो यहां के इंतजामात और मेहमान नवाजी से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कई यात्रियों ने हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद और गांदरबल के हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए अपने तासरात का यूं इजहार किया।
1: मध्य प्रदेश से आया हूं, मैं यहां पर पहली बार ही आया हूं, मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे देश के जो जवान हैं वो अपनी कड़ी मेहनत से हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। सरकार से भी हम बहुत खुश हैं, यहां पर हम बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं हमारी यात्रा अच्छी मंगलमय हो। हम बर्फानी बाबा से यही दुआ मांगेंगे कि हमारे देश को और हम सबको सुरक्षित रखें।
2: मेरा नाम पूजा है। यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सारा इंतजाम बहुत अच्छा है, सुरक्षा वगैरह का कोई डर नहीं है। जैसे बताते हैं ना पहले कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमला होने की है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा प्रशासन है, बहुत कड़ी सुरक्षा है यहाँ पे।
3: मैं नवीन अबोहर पंजाब से आया हूँ। यहाँ पे इस साल जो हमें फैसिलिटी देखने को मिली वो पिछले लास्ट ईयरों से नहीं मिली। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, डेट वाइज जा रहे हैं सर, ये नहीं कि फर्स्ट आओ फर्स्ट जाओ। बम बम बोले।
0: दरियासना आज 5,794 यात्रियों पर मुश्तमिल पांचवां काफिला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी पहुंचा। इनमें से 2,304 यात्री बालतल जबकि 3,490 यात्री पहलगाम के रास्ते दर्शन के लिए रवाना होंगे। और अब यात्रा से मुतल्लिक ये पैगाम। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तीफ़ादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतज़ार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। कॉपरेटिव्स के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि इस्लाहात, डिजिटाइजेशन और पेशेवराना निजामत की बदौलत मुल्क में कॉपरेटिव तहरीक एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। वजारत कॉपरेशन की पांचवीं यौम तासीस तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटियों को मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो ऑर्गेनिक अशिया की पैदावार को बढ़ावा दें और कीमियावी खादों और जरासीम कुश अद्वियात का कम से कम इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान वजारत कॉपरेशन ने करोड़ों लोगों के मैयार हयात में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया है।
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: कौम आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा कर रही है। इस हवाले से आज मगरबी बंगाल की

0: की। इस मौके पर उन्होंने नशाखोरी का धंधा करने वाले लोगों को एक वाजे पैगाम दिया था।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: वादी के अव्वल से 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीमशुदा प्राइवेट स्कूलों में आज से 14 दिन की गरमाई छुट्टियों का आगाज हुआ। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मजकूरा स्कूल 20 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। बारामुल्ला के जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज सोपोर इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके वहां ताजरों, कारखानदारों और यूनिट होल्डरों के साथ बातचीत की। तरक्याती कमिश्नर ने कारखानदारों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आज दमहाल हांजीपोरा सब डिवीजन का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों और देही तरक्की की स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मैयार को बरकरार रखते हुए इनकी मैयाद बंद तकमील को यकीनी बनाएं। DC बड़गाम अथर आमिर खान ने एक मीटिंग के दौरान 220 KV वागूरा बड़गाम जैनकू ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट के लिए हसूल अराजी मामले का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान शिशिर गुप्ता ने आज एक मीटिंग के दौरान SASCI, PMGSY और दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों की तकमील में हाइल रुकावटों को फौरी तौर से दूर करें। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अक्सर मकामात पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:26 और गुरूबे आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
4: वो कहा है?
5: मिठाई।
6: RBI कहता है
7: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। वादी कश्मीर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है जिसके बाइस रोजमर्रा जिंदगी, सेहत आमा, तालीम, ज़िराअत और कुदरती माहौल पर मुख्तलिफ नौयत के असरात मुरतब हो रहे हैं। कश्मीर को अमूमी तौर पर मुअत्तदिल और खुशगवार आबोहवा के लिए जाना जाता है लेकिन हालिया बरसों में मौसम के बदलते रुझानात ने यहाँ के कुदरती तवाजुन को मुतासिर किया है। ये सूरतहाल इस बात की मुतकाजी है कि न सिर्फ मौसमी तब्दीलियों के असबाब को समझा जाए बल्कि इनके मुमकिन असरात से निपटने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया जाए। माहरीन के मुताबिक मौजूदा हीट वेव महज एक वक्ती मौसमी तब्दीली नहीं बल्कि आलमी हिद्दत के वसी तर असरात का हिस्सा है। दुनिया भर में सन्नती तरक्की, जंगलात की बेदरीग कटाई, फॉसिल ईंधन के बेतहाशा इस्तेमाल और माहौल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते हुए इखराज ने जमीन के दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफा किया है। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ खितों की तरह वादी कश्मीर में भी मौसम की रिवायती तरतीब मुतासिर हो रही है। सर्दियों का दौरान या मुख्तसर होता जा रहा है, बर्फबारी में कमी वाकया हो रही है और गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता सरमा इस तब्दीली की एक नुमायां मिसाल था जब वादी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी न होने के बराबर रही। हीट वेव के दौरान इंसानी सेहत बराह रास्त मुतासिर होती है। शदीद गर्मी, पानी की कमी, थकन, कमजोरी और मुख्तलिफ तिब्बी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। खसूसन बच्चों, बुजुर्गों, हामिला खवातीन और पहले से बीमार अफराद के लिए ये सूरत हाल खतरनाक साबित हो सकती है। माहिरीन सेहत इस दौरान

प्रोग्राम वादे की आवाज सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से खलूस भरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बखैर वाफियत होंगे। आइए समीन बात करते हैं पाकिस्तान की। समीन, बलूचिस्तान का पूरा सूबा एक बार फिर दुल उठा है। वैसे तो बलूचिस्तान दहाइयों से खाक और खून की आंधियां सह रहा है, मगर वक्फन वक्फन ये आंधी मुंह जोर होती जाती है। पाकिस्तान की फौज बलोच बागियों को एक सियासी प्लेटफॉर्म तश्कील देने में ऐसी रुकावटें डालते हैं जिन्हें हटाते हटाते बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसे मुख्तसरन BLA कहते हैं, के बेशुमार जंगजू अपनी जाने खो बैठते हैं। इन दिनों पूरा बलोचिस्तान सरापा एहतजाज है, क्योंकि पाकिस्तानी अदलिया ने डॉक्टर महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर महरंग बलोच पर एक सिक्योरिटी अफसर को कत्ल करने का इल्जाम है। डॉक्टर महरंग बलोच दरअसल गांधियाई सियासी फिलासफी की दिलदादा है। उनके बारे में मुसद्दी का इतला है कि उन्हें कोई भी जानलेवा हथियार चलाना नहीं आता है, इसलिए वो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया करती थी, मगर उनके गांधियाई तरीकाकार ने पूरी बलोच कौम को मुत्तहिद कर दिया। चूंकि ये गांधियाई तरीका सियासत है जिसने अंग्रेजों को 200 साल की जाबराना हुकूमत के बाद बरसगीर से भागने पर मजबूर कर दिया, इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत डॉक्टर महरंग बलोच की गैर मुसल्लह सियासत से खौफ खा गई। इसलिए पाकिस्तानी फौज ने डॉक्टर महरंग बलोच को एक फर्जी कत्ल में मुलविस ठहरा कर उसे गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुनाई। यहाँ पे इस बात का जिक्र करना जरूरी बनता है कि बलोच लीडर अकबर बुगती की मौत के बाद बलोच आजादी पसंद लोगों में कोई काबिल जिक्र या काबिल कदर सियासी लीडर उभर न सका। अकबर बुगती को उस जमाने के बदनाम जमाना पाकिस्तानी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने हलाक करवाया। अपने सियासी करियर के शुरुआती दौर में अकबर बुगती अलहदगी पसंद सियासत से दूर था, लेकिन जब उसने पाकिस्तान की विफाकी हुकूमत की तरफ से बलोच कौम पर तरह तरह के मजालिम और मौशी इस्तेसाल को पहचाना तो उसने अलहदगी पसंदी इख्तियार की। बलोच कौम के एक काबिल कदर सियासी लीडर की हैसियत से जब उसकी मकबूलियत चार दांग हो गई तो पाकिस्तान का विफाक उससे डर गया। ये देखते हुए कि अकबर बुगती बलोचिस्तान की तहरीक आजादी को

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। समीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाजा भड़क उठा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इलाके में घुसकर ऐसी फौजी कार्रवाई की कि पाकिस्तानी फौज के होश उड़ गए। दो दिन पहले अफगान फौजियों ने ड्यूरेंड लाइन पार करके पाकिस्तानी फौज के बंकरों पर रोजदार हमले में 38 पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। असल में पाकिस्तानी फौज वक्तन फवक्तन ड्यूरेंड लाइन के इस पार अफगान फौजियों पर फायरिंग करके उनका जानी नुकसान करते रहते हैं। इसलिए चंद दिन पहले अफगान फौजी सरबराह ने एम भारत की जुबान में बात करके ये बताया कि अब मामला अफगान फौज के बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसलिए अब पाकिस्तानी फौज को घर में घुसकर मारने की जरूरत है। एक साल पहले बिल्कुल इसी नवियत पर भारतीय फौज ने भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी फौज को घर में घुसकर मारा था। इस मौके पर हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाजे की नौबत पर रोशनी डालनी होगी। बरसगीर की तकसीम के वक्त अंग्रेजों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन सरहद कायम करने के लिए एक लाइन खींची, जिससे दोनों मुल्कों के इलाका जात मुतायन किए गए। इस लाइन को सरहद बनाकर ड्यूरेंड लाइन का नाम दिया गया। दरअसल ड्यूरेंड उस शख्स का नाम था जिसने ये सरहद मुतायन की। ये अमर एक तलख हकीकत पर मबनी है कि अफगानिस्तान ने ड्यूरेंड लाइन को कभी सरहद माना ही नहीं, क्योंकि अफगान लीडरशिप का मानना है कि अफगानिस्तान का बहुत सा इलाका ड्यूरेंड लाइन के उस पार पाकिस्तान के जेर कब्जा है। फिर 1977 में जब अफगानिस्तान में रूसी फौज दाखिल हो गई तो दोनों मुल्कों के बीच ड्यूरेंड तनाजा मुलतवी रहा, क्योंकि रियासत हाई मुतहदा अमरीका ने इस खत्ते में रूस को पछाड़ने के लिए अफगान मुजाहिदीन की हर तरह की मदद की, जिसके लिए उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ी। यूं अफगानिस्तान में रूस के इनखिला तक पाकिस्तान और अफगान एक दूसरे के हमनिवाला और हम प्याला बने रहे। इस दौरान अफगानिस्तान के करीब 35 लाख लोग पाकिस्तान में मुहाजिर बने रहे। रूस के इनखिला के बाद अफगानिस्तान में कायम हुई तालिबान हुकूमत अमरीका और बाकी दुनिया के दर्द सर बनी रही, इसलिए अमरीका ने मुदाखलत करके तालिबान हुकूमत को बेदखल कर दिया। उस दौरान तालिबान पाकिस्तानी सरजमीन से अमरीका के खिलाफ नबर्द आजमा रहे। अफगान तालिबान के जेर असर पाकिस्तान में भी कट्टर मजहब परस्त पाकिस्तान तहरीक तालिबान नामी जंगजू तंजीम पनपती रही, जो पाकिस्तान में सिकुलर ढांचे को तरक करवा कर मुस्लिम बुनियाद परस्त हुकूमत की तश्कील देना चाहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तानी तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयां शुरू की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज को काफी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अफगानिस्तान छोड़कर गया। यूं अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान हुकूमत का वजूद कायम हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कयाम के साथ ही पाकिस्तान ने तकरीबन 45 साल से मुहाजिर बने अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। इधर पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले बढ़ा दिए। इसके साथ ही

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा एफएम 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 हुए हैं। समाप्त करें स्पोर्ट्स टाइम।
1: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। आगाज में नजर डालते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 पर, जिसके राउंड ऑफ 16 का आगाज हो चुका है। एक बड़ा अपसेट उस वक्त देखने को मिला जब नॉर्वे ने 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हरा दिया। इस मुकाबले में पहला गोल 79वें मिनट में स्कोर किया गया। हालांकि इससे कबल ब्राजील को पेनल्टी पर गोल स्कोर करने का आसान मौका मिला था, लेकिन ब्रूनो ग्योमारिस ने इस पेनल्टी को जाया किया। तहम दूसरे हाफ के 34वें मिनट में अर्लिंग हालैंड ने गोल स्कोर करके नॉर्वे को लीड दिला दी। मैच के मुकर्रर वक्त के आखिरी मिनट में अर्लिंग हालैंड ने पेनल्टी एरिया के बाहर से खूबसूरत लो शॉट मारकर टीम को 2-0 की बढ़तरी दिला दी। हालांकि स्टॉपेज टाइम के आखिरी लम्हात में ब्राजील ने एक और पेनल्टी हासिल की, जिससे स्टार खिलाड़ी नेमार ने गोल में जरूर बदल दिया। तहम ये वाहिद गोल ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल करने के लिए काफी न था। वाज़ह रहे कि 1990 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला मौका है जब ब्राजील की टीम क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल न कर सकी। खेलों की ताजा और अहम सरगर्मियों पर एक नजर, खेल खबरों के साथ सुहेल निसार।
2: अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में जारी फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वाहिद गोल सेकेंड हाफ में किलियान एम्बापे ने पेनल्टी से स्कोर किया। एम्बापे का यह टूर्नामेंट में 7वां गोल है। मेसी ने भी अब तक टूर्नामेंट में 7 गोल स्कोर किए हैं। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। मोरक्को ने होस्ट कनाडा को ह्यूस्टन में 3-0 से हराया। एजरीन ओनाही ने 2 और सोफियान रहीमी ने 1 गोल स्कोर किया। कोलंबिया ने घाना को हराकर लास्ट 16 में जगह बना ली। वाहिद गोल जॉन अरियास ने स्कोर किया। लास्ट 16 में कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अर्जेंटीना ने कैप वर्डे को 3-2 से हराकर ड्रामेटिक अंदाज में लास्ट 16 में जगह बना ली। 111th मिनट में डिनी बोस के ओन गोल की बदौलत अर्जेंटीना की टीम क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई। अर्जेंटीना के लिए पहला गोल मेसी ने और दूसरा गोल लिसेंड्रो मार्टिनेज ने किया। डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना का मुकाबला लास्ट 16 में इजिप्ट से होगा। इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर 4-2 से शिकस्त दी। एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी दोनों टीमों ने 1-1 गोल स्कोर किया। विनिंग पेनल्टी इजिप्ट के लिए हुसैन अब्दुल मजीद ने स्कोर की। रेगुलेशन टाइम में 7-time अफ्रीकन नेशन चैंपियंस इजिप्ट के लिए इमाम अशोर ने गोल स्कोर किया। टेनिस स्टार फिलिपिनो टेनिस प्लेयर एलेक्जेंड्रा एयाला ने दिफाई चैंपियन इगा स्वेटेक को विंबलडन के 3rd राउंड में स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। अपने मुल्क से टूर्नामेंट के 4th राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली एयाला पहली टेनिस प्लेयर बन गई। एयाला 29th सीड है और दूसरी तरफ स्वेटेक 6-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। ये स्वेटेक की किसी मेजर टूर्नामेंट में अर्लीएस्ट एग्जिट है। 2 साल कबल विंबलडन में स्वेटेक को 3rd राउंड लॉस हुई थी। 4th राउंड में एलेक्जेंड्रा एयाला का मुकाबला फॉर्मर विंबलडन रनर अप जैस्मिन पाउलिनी से होगा। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने अमेरिका के जेनसन ब्रुक्सबी को स्ट्रेट सेट्स में हराकर 4th राउंड में जगह बना ली। 24-time ग्रैंड स्लैम विनर नोवाक जोकोविच ने 4th राउंड मैच में रशियन क्वालिफायर रोमन सफियोलिन को 4 सेट्स में हराकर विंबलडन में अपना 106th मैच जीतकर रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मार्टिना नवरातिलोवा 120 विंस के साथ ऑल इंग्लैंड क्लब पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली प्लेयर है। ये 39 साल नोवाक जोकोविच का 17th विंबलडन क्वार्टर फाइनल है और लगातार 9वीं बार जोकोविच ने यह कारनामा अंजाम दिया है। फेडरर ने यह टाइटल 8 बार जबकि जोकोविच ने 7 बार जीता है। नौमी ओसाका ने वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबलेंका को स्लिट सेट्स में हराकर पहली बार विंबलडन

0: और वादी बर से 10 डिस्ट्रिक्ट्स की टीमों ने इस लीग में शिरकत की। लीग की खास बात ये रही कि ISL में खेलने वाले कुछ लोकल स्टार्स जैसे दानिश फारूक, मुहीद शबीर और सजाद हुसैन ने भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की टीमों की तरफ से खेला। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जुड़े माजिद डार ने ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बारे में कहा।
1: ये जो कश्मीर चैंपियंस लीग है ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मुझे लगता है ये कंट्री में पहली बार हुआ होगा कि डिस्ट्रिक्ट टीम्स को रेज करके उनको प्रोफेशनल लीग में खिलाया होगा। तो ये आसान नहीं था, हमारे लिए भी एक चैलेंज था। तो सबसे पहले हमें स्काउटिंग टीम बनानी पड़ी जो डिस्ट्रिक्ट में चले गए और फिर उन्होंने हर एक प्लेयर को डिस्ट्रिक्ट में देखा। गवर्नमेंट का मंशा यही था कि डिस्ट्रिक्ट जो फार ऑफ है, जहाँ

0: है, ये कंट्री में पहली बार हुआ होगा कि डिस्ट्रिक्ट टीम्स को रेज करके उनको प्रोफेशनल लीग में खिलाया होगा। तो ये आसान नहीं था, हमारे लिए भी एक चैलेंज था। तो सबसे पहले हमें स्काउटिंग टीम बनानी पड़ी जो डिस्ट्रिक्ट में चले गए और फिर उन्होंने हर एक प्लेयर को डिस्ट्रिक्ट में देखा। गवर्नमेंट का मंशा यही था कि डिस्ट्रिक्ट जो फार ऑफ है, जहाँ पे स्पोर्ट्स का कम जो है बलवाला है, उनको कैसे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के साथ में जुड़ाया जाए। और हमारी स्काउटिंग टीम ने बड़ी जबरदस्त मेहनत की है, उसमें वो एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए और लोकल आइडेंटिफिकेशन जो है प्लेयर्स की। उसके बाद फिर जैसा आपको पता ही है, वो एक तरह से ऑक्शन प्रोसेस हुआ जिसमें हमारा जो प्रोफेशनल पूल ऑफ प्लेयर्स है, कोचेस है और जो दीगर हमारा प्रोफेशनल सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया इन 10 डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो कॉम्पिटिशन है वो काफी बैलेंस रहे। और इस तरह से जो है हमारे ISL और I-League के प्लेयर्स भी आए हुए थे, उनका भी ऑफ सीजन चल रहा था और वी वेयर लकी इनफ कि हमने उनको भी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया और 10 की 10 टीमें हमने बैलेंस तरीके से बनाई।
1: 16 जून को शुरू हुई इस अवलीन चैंपियंस लीग के बारे में फॉर्मर ISL प्लेयर और मौजूदा इंटरनेशनल कोच इश्फाक अहमद ने स्पोर्ट्स टाइम को बताया।
2: डिसीजन लिया स्पोर्ट्स काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट वाइज लीग करेंगे, मुझे लगता है इट्स फैंटास्टिक स्टेप, ताकि फुटबॉल पॉपुलर हो लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है वहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट हो और वहाँ का जो टैलेंट है उनको मौका मिले टॉप प्लेयर्स के साथ खेलने। जैसे आप बात कर रहे थे, वहाँ पे काफी ISL प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं, दानी जैसा प्लेयर भी खेल रहा है। जो ये यंगस्टर्स हैं, इनके लिए ड्रीम कम ट्रू है और आप अपने रोल मॉडल्स के साथ जब खेलते हैं तो ज्यादा मोटिवेशन मिलती है।
1: इंटरनेशनल और इंडियन सुपर लीग प्लेयर दानिश फारूक ने भी KCFL में खेला और अपने तासुरात कुछ यूं बयान किए।
3: कश्मीर चैंपियंस लीग जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, हमने भी जब सुना कि ऐसा टूर्नामेंट होने वाला है तो मैं भी यहीं पे था, हमारा ऑफ सीजन चल रहा था। मैंने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मुझे भी बहुत टाइम हो गया था, मैंने खेला नहीं है, बहुत टाइम से मैं बाहर ही होता हूँ। तो मैंने सोचा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जो यहाँ पर यंग प्लेयर्स है उनको भी हम थोड़ा सा टिप्स दे सकते हैं, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ के प्लेयर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स बहुत हेल्प करते हैं एक प्लेयर को। कश्मीर चैंपियंस लीग या कश्मीर सुपर लीग यहाँ पर हुआ था लास्ट ईयर, तो लोगों ने बहुत उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लोग बहुत देखने आए थे, तो प्लेयर्स भी उससे मोटिवेट होते हैं, उनको भी खेलने का मजा आता है। ये गेम जो है फैंस की वजह से ही है, तो जितने ज्यादा फैंस देखने आएंगे उतना ज्यादा प्लेयर्स को भी मजा आता है खेलने में। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि टैलेंट बहुत ज्यादा है प्लेयर्स में, बस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत कम है प्लेयर्स के लिए।
1: ये है फाइनलिस्ट और फर्स्ट KCFL विनिंग टीम बारामूला स्ट्राइकर्स के लिए गोल कीपिंग करने वाली ISL टीम पंजाब FC के मोहित शबीर स्पोर्ट्स टाइम को।
4: इस टूर्नामेंट से मुझे साजिद कोच का कॉल आया था, हु हैज बीन माय वेरी हेल्पफुल पर्सन थ्रू आउट माय फुटबॉलिंग करियर, ही इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गाय इन माय फुटबॉलिंग करियर, तो आई कुडंट से नो टू हिम। So, whenever I got call from him, I say yes, whatever he says. वैसा ही था, मैंने हाँ बोल दी थी पहली बार ही और बहुत ज्यादा शौक होता है अपने घर के पास खेलने में, तो मेरे लिए भी वैसा ही था। जब टीम बनी तो I wasn't happy with the teams, मुजम्मिल कोच ने हमें बहुत हेल्प की, ज्यादा से ज्यादा जल्दी हम लोग जलप हुए। चार पांच लड़के ऐसे जिनको पहली बार श्रीनगर में खेलना था अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर आके, उन्होंने जी जान लगा के बहुत मेहनत की और टीम के साथ जलप हुए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे हेल्प करता था। मैं चाह रहा था कि उनको कोई भी शको शुभाव ना रहे कि मैं एक ज्यादा अच्छे लेवल पे हूँ और ये हमसे बात ना करता, लेकिन मैं उनके साथ अपने छोटे भाइयों की तरह, अपने बड़े भाइयों की तरह जलप हुआ और अल्लाह पे भरोसा रख के कहता हूँ कि हम ये फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह।
1: सजाद हुसैन जो नेशनल लेवल पर मोहम्मदन FC के लिए खेलते हैं, इस टूर्नामेंट में पुलवामा की टीम के रुकन थे। सजाद हुसैन,
5: ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है JK स्पोर्ट्स काउंसिल ने कश्मीर के फुटबॉलर्स के लिए, क्योंकि इसमें 10 टीम्स है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है टीम्स, तो इसमें बहुत सारे लोकल प्लेयर्स भी इन्होंने चूज किए हैं, ट्रायल्स किए पहले। इसका एक इनिशिएटिव ये भी है कि बच्चे ड्रग्स से दूर रहेंगे, तो जितना बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, तो वो नेचुरली आएगा उनमें कि वो खुद ब खुद ड्रग्स से दूर रहेंगे।
6: आज के स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
7: स्पोर्ट्स टाइम,
8: आप समाप्त कर रहे थे खेलों से मुतलिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम के मेजबान थे एजाज नाजकी और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। आठ बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो

0: महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
4: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
5: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए

0: येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल

0: मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 77.8 मीटर ते एफएम 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ सन पेट रात संज 9 बजे सामिन वाले कशर मौसीकी बोजो गुड़ बोजो कलामे फयाज दिलगैम पेश करन असद अंजुम।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वज़रा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि यह दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीप रौन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब-ए-वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को दो साला कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है

0: कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। जनाब मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के साथ रियासत इस कौमी एजाज के तई जोशो खरोश में मजीद इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इससे पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत की। इन तकरीबात में मगरी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा के रुकन शमक भट्टाचार्य और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले सुबह में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता की रेड रोड पर हुई तकरीब में शिरकत की, जहां वजीर आला और दीगर मौजूद शख्सियात ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किए। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सदगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का संग बुनियाद रखा। 200 से ज्यादा सरकर्दा सनतकारों और सरमायाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों लोगों ने राम मंदिर को दिए गए दान में खुर्द बुर्द के मुबैना मामले में अपने नाम आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे। कृष्ण मोहन को उस वक्त तक के लिए उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जब तक कोई नया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हो जाता। उनकी शिकायत उस FIR की बुनियाद बनी थी जिसके तहत दान में दी गई चीजों के सिलसिले में मुबैना बेजाब्तगियों का मामला दर्ज किया गया और जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरीरी का भी फैसला किया है। 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि वो तकरीरी के लिए मुनासिब नाम तजवीज करे। मीटिंग के दौरान गोपाल नागरकोटे का नाम भी ट्रस्ट के खसूसी मदुईन की फहरिस्त से निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराफ किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में ट्रस्ट ने कहा है कि राम के करोड़ों अकीदतमंद अब भी राम मंदिर में ऐसा यकीन रखते हैं जिसमें कोई तजलजल नहीं है और यह भी दान की अशिया में मुबैना खुर्दबुर्द का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मगरबी एशिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज बहरीन पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के अपने हमनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलजियानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हमनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों वुजरा ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये मामूल की 800 से ज्यादा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने की गरज से आने वाली रथ यात्रा के लिए रेलवे की वजारत ने आज तैयारियों का जायजा लिया।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इस साल ओनम त्योहार के दौरान 100 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। दो जबानों में नशर होने वाले हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बाख्तियार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। कौमी ई गवर्नेंस महकमे के सदर और CEO नंद कुमारम और कौमी साइबर सिक्योरिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर डॉ गुलशन राय हमारे सामईन के सवालों का जवाब देने के लिए

0: स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप इस मौजू पर रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-23-1-0-4-8-1-2-3-7-1-7-1-7-2-3-7-1-7-1-0-6। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। POJK में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि POJK के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों ने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गईं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। यह दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी ना आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंसानी हकूक के कौमी कमिश्नर ने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 मुहाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी 2 जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कत नजर मयारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीद तर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर आंध्र प्रदेश गंगाई मगरबी बंगाल अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय छत्तीसगढ़ नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोदे खिसकने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हकानी।
0: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्ला खा अली खामनई के जज्बे खाकी के जुलूस के लिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में सौगवार सियाह लिबास में मलबूस थे। ईरानी परचम में लिपटे खामनई के जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जज्बे खाकी को इमाम के रोजे से मुशाबहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। हुकाम ने सोग के दौरान सड़कों व मुल्की फजाई हदूद को बंद कर दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को मुअत्तल कर दिया है। यह सोग सनीचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में दफनाया जाएगा। और फीफा आलमी कप में अमरीका के एरलिंगटन में आज राउंड ऑफ 16 के एक मैच में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा जबकि इसी राउंड के एक और मैच में साथी मेजबान अमरीका बेल्जियम से कल सुबह सिएटल में मुकाबला करेगा। इंग्लैंड नॉर्वे मराकश और फ्रांस क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और आज सुबह राउंड ऑफ 16 के एक मैच में इंग्लैंड साथी मेजबान मैक्सिको को 2-3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 1-2 गोल से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बनाया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट तीरथ

0: ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 हुए हैं।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: इशा आकाशवाणी श्रीनगर। समीन वाले बुजुर्ग कोशु ड्रामा बदर न तापस, तहरीर रहीम रहबर।

0: आ आ दीदी, अष्टुडल साफ थावन।
1: यस, अदरवाइज सिटी विल टर्न इनटू द डेजर्ट, सन विल किल अस।
2: पुलिस वर्ट यम आब सर हिलम वकलन लुकिन ताप क्राइमस पाइन।
0: ना ना बाबा, तिना सब दिन
2: पाक पाक भाई।
1: ओ ओके
2: ओके।

0: और ज़्यादा शौक बढ़ गया कि मैं भी कर लेती, खासकर एज अनाउंसर मैं काम कर लेती। तो सबसे पहले मैं दूरदर्शन में एज अनाउंसर काम करती थी, लाइव अनाउंसमेंट हुआ करती थी उस वक्त, और वहाँ ज़्यादा डर लगता था मुझे, क्योंकि वहाँ पर मुझे ये दिमाग में होता था कि लोग मेरी शक्ल भी देख रहे हैं आवाज़ के साथ साथ, पता नहीं अगर ज़रा सा भी कुछ गलती हो जाएगी तो एकदम से उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाई जा रहा था जी। फिर मैं 4-5 साल तक वहाँ पर मैंने अनाउंसमेंट की। फिर जब मैं यहाँ आई, यहाँ पर भी मैं 4-5 साल तक एज कैजुअल अनाउंसर ही थी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जितना मुझे दूरदर्शन में लग रहा था मुश्किल। अच्छा। दूरदर्शन में मुझे दिमाग में ये होता था कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, पता नहीं मैं क्या करूँ। यहाँ तो मुझे बस स्क्रिप्ट सामने होता था, हम बोलते जाते थे।
1: बिल्कुल जी। कैसा रहा पहला तजुर्बा माइक पर आने का, उस लम्हे की कोई खास याद, अब वो रेडियो हो या टेलीविजन हो, तो उस वक्त की वो कैफियत, वो माहौल?
0: मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कह रही हूँ कि दूरदर्शन में था, वहाँ भी माइक हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहाँ पर ये था कि माइक के साथ साथ हमको
1: कैमरा
0: भी फेस करना होता था, उसका सामना भी करना पड़ता था। यहाँ पर मुझे थोड़ा आसानी लगी, वो ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप माइक पर बोल भी सकते हैं, आपका मुँह कैसा है, आपका फेस कैसा है, कंघी की है, क्या पहना है, क्या कर रहे हैं, कौन सी हरकत कर रहे हैं, वो भी नहीं हमारे सामने को पता चल जाता था, लेकिन बस यही है कि हमारी आवाज़ सुनते थे कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे।
1: रेडियो की अनाउंसमेंट आसान लगी कि आपको अपने ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, आपका फेस कैसा है, आप यहाँ पर तो सिर्फ आवाज़
0: का
1: लोग आवाज़ से ही पहचानना शुरू करते हैं। और माशाल्लाह जब आपकी आवाज़ लोगों ने सुनी, दूरदर्शन से भी और रेडियो से भी पसंद आने लगी लोगों को आपकी आवाज़, और फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने किए।
0: जी, मैंने शहरबिन भी किया है, मैंने आज की सुर्खियां भी करती थी, मैं एक प्रोग्राम तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो भी मैंने किया है, और भी कुछ प्रोग्राम्स मैंने इसके साथ साथ
1: मैं
0: किए।
1: एक खास प्रोग्राम का जिक्र करूंगा
0: जी,
1: वो है आपकी फरमाइश।
0: जी हाँ,
1: इस प्रोग्राम ने पहले ही एक मकाम हासिल किया था
0: जी।
1: जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये प्रोग्राम 60 की दहाई में शुरू हुआ।
0: हाँ जी,
1: उस वक्त ये शुरू किया था मोहम्मद अबी निज़ामी और शांता कौल साहब।
0: जी जी,
1: उन्होंने तकरीबन 15-17 साल ये प्रोग्राम पेश किया, तो उनकी जोड़ी काफ़ी मकबूल थी मुल्की सतह पे।
0: जी,
1: उसके बाद सूरजा साहिब ने, उसके बाद नूर मोहम्मद लोन साहब ने, उसके बाद सिराज मीरानी साहब ने, यानी इतने बड़े स्टारवार्ड्स ने ये प्रोग्राम किया। तो आपके लिए एक चैलेंज था वो प्रोग्राम?
0: मेरे लिए चैलेंज, जब मुझे बोला गया कि आपको ये प्रोग्राम पेश करना है, आपकी फरमाइश, एक तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ये प्रोग्राम देते, मैं इस लायक हूँ कि मैं ये प्रोग्राम कर सकूँ, क्योंकि उन दिनों वो बहुत मकबूल था वो प्रोग्राम,
1: क्योंकि टेलीविजन नहीं था।
0: जी हाँ, टेलीविजन नहीं था, और मैं समझती थी पता नहीं मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, और इतने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने ये प्रोग्राम किया है, मैं कर पाऊँ कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बहुत मैंने
1: तैयारी भी की, और उसके बाद जब प्रोग्राम में आए और जबरदस्त तरीके से आए।
0: जी, जी।
1: मुझे याद है कि जब आप प्रोग्राम पेश करती थी, आप लाइव करती थी?
0: जी, मैं लाइव
1: अक्सर लाइव करती थी, हालांकि ये प्रोग्राम बहुत सालों रिकॉर्ड भी हुआ, तो लेकिन आप लाइव किया करती थी। एक जो ठहराव आप में कुदरत ने दिया है आपकी आवाज़ में, एक अदायगी जो अल्लाह ने आपको अता की है, उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगे आपकी फरमाइश से।
0: प्रोग्राम तो हम, क्योंकि मैं उस दिन, जिस दिन ये प्रोग्राम होता था, अक्सर ये प्रोग्राम होता था इतवार और बुधवार को, तो इन दो दिन मैं शाम की ड्यूटी रखती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि मैं लाइव ये प्रोग्राम करूं।
1: ठीक।
0: तो जिस दिन नहीं होती थी उस दिन रिकॉर्ड हम करके रखते थे, लेकिन लाइव में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था, ऐसा लगता था बस मेरे सामने
1: लिसनर्स
0: बैठे हुए हैं। जी,
1: और मैं आपको इसी प्रोग्राम की एक बात कहूंगा जो हमने अपने उस्ताद जनाब मोहम्मद अमीन निज़ामी साहब से सुनी है। उन्होंने कहा कि उन दिनों लोग रेडियो के बगैर कुछ सुनते नहीं थे, ज्यादा रेडियो ही सुनते थे, टेलीविजन था नहीं। उन्होंने कहा कि एक लड़का जिसकी शादी होने वाली थी, उसी रोज उसकी शादी थी, जब उसको घर से दुल्हन के घर की तरफ जाना था दुल्हन लाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक मिनट कार रोक दो, कहीं से रेडियो ले आओ, मेरा नाम आने वाला है प्रोग्राम में, मैं आपकी फरमाइश सुनूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे एक रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार स्टेट हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मेरी उस दिन ड्यूटी लगी रात के लिए, बोला आपको रात के लिए रहना, गर्मी का मौसम था, तो शाम के टाइम बहुत गर्मी लगी थी अंदर वार्ड में, तो मैंने कहा मैं ज़रा बाहर जाऊँ, बाग में उधर टहलने जाऊँ थोड़ी सारी हवा में। मैं जब बाहर गई तो वहाँ पर लाउडली किसी ने ये प्रोग्राम रखा था आपकी फरमाइश, उस दिन मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो मैं अपनी आवाज़ सुन रही हूँ, अपने गाने सुन रही, किसी को तो पता नहीं था, लेकिन बहुत ज़ोर से उसने रखा था लाउड।

0: ले रखा था, तो मैंने देखा कि वहां पर लोग जो है वो सुन रहे हैं, बड़ी एक ही जगह जमा हो गए,
1: ठीक ठीक,
0: तो बड़े मजे से सुन रहे थे, तो मैं भी बड़े मजे से सुन रही थी।
1: मैंने तो भी अच्छा लगा होगा,
0: मुझे भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा इतनी लिसनर्स है यहाँ पर, इतनी कीनली सुनते हैं ये प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: आपकी फरमाइश प्रोग्राम का कोई वाकया अगर आप अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी वो शेयर कीजिएगा, लेकिन जसविदा जी यथ प्रोग्राम करो तुम्स पसंद पेश अगर तुम यसु के बोजुन, तिकाजी आपने आज तक बराबर लोगों की पसंद का ख्याल रखा, आज हम आपकी पसंद का ख्याल रखेंगे, क्या सुनना चाहेंगे?
0: उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकबर चुन नसीमुल हक सबन चुंगे उमस बदकार पानो
1: खदरादा
0: खदरादा सना याद रुदी
1: के सच्चा वाले पास
0: सच्चा कराल सब
1: जरूर करो
0: स्वागत ही पेश करो
1: जरूर।

0: नसीम उलॉग की आवाज़ में आपने ये कलाम सुना। ये हमारे आज की मेहमान, हमारे आज की गेस्ट मोहतरमा चश्मीदा खान साहिबा की पसंद थी। चश्मीदा जी क्यों लोग बहुत
1: वारिया पसंद है, जिसमें गहरे बहुत आते बहुत सारे, मैंने रिकॉर्ड करके रखा अपने मोबाइल पे है ये।
0: आज आपने अपने साथ साथ अपने लिसनर्स को भी सुनवाया
1: जी जी।
0: तो मैं अर्ज कर रहा था इस प्रोग्राम में कि आपके फरमाइश इस प्रोग्राम का कोई दिलचस्प वाकया जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक तो बताया आपने कि जब मैं बाहर निकली एक जगह पे प्रोग्राम रिकॉर्डेड था, कभी ऐसा होता है ना कि खत आता है, खत में कुछ तारीफें ऐसी हों या खत में कोई ऐसी चीज हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, खत ऐसे ऐसे ना, क्योंकि फोनिंग प्रोग्राम तो होता नहीं था, ऐसे मोबाइल नहीं।

0: ये
1: तो
0: आपको लगता है।
1: बेअगर क्या है या सो बोजन क्या बोजन जसविदा जी
0: जहारा जानबाज सिंह आवाज में नजर चैन रोजिन मैकुन या मा रोजिन
1: जरूर पेश करेंगे।

0: जहाँ जांबाज की आवाज़ में ये नगमा आपने सुना और ये पसंद है हमारे आज की गेस्ट, हमारी आज की मेहमान मोहतरमा चश्मीदा खान साहिबा की, जो आज नशरियात में हमारे साथी प्रोग्राम की हमारी मेहमान है। चश्मीदा खान साहिबा ने सालों रेडियो में काम किया, बजट अनाउंसर, बजट ड्यूटी ऑफिसर, और आज हमारे साथ अपने दिल की बात कर रही हैं। रिटायरमेंट पाते योजना जिंदगी तो ऐशा ना मैं क्या रेडियो से लो अच्छा दिलस मुड़ित
1: याद वही याद रेडियो से वारे याद है, अपने साथियों की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एक बात बताऊं, बहुत ही प्यार मिला है मुझे रेडियो से, डायरेक्टर से लेकर पियोन तक,
0: सही,
1: मुझे इन्होंने सब ने प्यार दे दिया है, मुझे सबकी याद आती है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन अब यह है कि 60 साल के बाद इंसान चाहता है अपने घर में बैठे, अपने बच्चों के बच्चे भी होते हैं, फिर उनके साथ माशाल्लाह जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है, लेकिन यह है कि बस सेहत ठीक रहनी चाहिए, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, उसकी थोड़ी परेशानी रहती है।
0: चश्मीदा जी को ब्रॉडकास्टिंग के बगैर क्या पसंद था, जिसमें अब चेंज आ गई या पसंद नहीं है, या अब वो पसंद आपकी बन गई है?
1: मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, जॉब के दौरान भी मैंने ट्रैवलिंग बहुत की। मैं यहाँ से जाते थे हम वर्कशॉप करने के लिए, देहरादून गए, लखनऊ गए, जयपुर गए, दिल्ली भी गए, मैं जाती थी, मैं अटेंड करती थी वर्कशॉप, और अपने घर वालों के साथ भी हम सर्दियों में एक महीना कहीं ना कहीं गुजारते थे, जाते थे कहीं घूमने शूमने। यहाँ गर्मियों में भी हम जैसे छुट्टी होती थी तो निकल जाते थे कहीं गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह कहीं जाते। अभी भी यही चाहे, लेकिन अब यह है कि हिम्मत नहीं पड़ती है। जैसे आप गुलमर्ग जाएंगे, आप पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते हैं, अब आप वॉक नहीं कर सकते हैं। यह है कि अब गए हट में बैठ गए, मैं बैठी हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं घोड़ों पर, मैं देख रही हूँ बस, इसलिए इंजॉय करती हूँ मैं।
0: वक्त के साथ साथ इंसान की पसंद भी बदल जाती है
1: जी,
0: जो तकाजे होते हैं ना शौक के, वो भी बदल जाते हैं। क्या लगता है आपको कि आपकी जिंदगी में अब कैसा बदलाव आ रहा है जहाँ तक हॉबीज का ताल्लुक है?
1: हॉबीज तो वही रहती हैं, हॉबीज तो बुढ़ापे में भी वही रहती है, लेकिन अब यह है कि हिम्मत की बात होती है, उस वक्त कर सकते हैं, इस वक्त नहीं कर सकते हैं। जो जैसे घर के कामों में भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं करती थी जो अब नहीं कर सकती हूँ, तो जो मुझे अच्छा भी लगता था, मैं घर के कामों में भी मुझे बहुत अच्छा लगता पकाना, घर का काम
0: आप
1: करना,
0: कुक हैं, आप होस्ट जबरदस्त हैं
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। होस्ट तो मेहमान मेरे घर आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरी बहू आई है, मैंने उनको उसको पहली बात ये बोली, मैंने कहा मेरे घर अगर कोई आएगा कभी नाक नहीं चढ़ाना,
0: माशाल्लाह,
1: कभी भी नाक नहीं चढ़ाना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरे पास कोई आए। आजकल कहाँ फुर्सत है कोई
0: किसी
1: के पास
0: के
1: जाने की,
0: मोबाइल पे ही सारा कुछ हो रहा है,
1: सारा कुछ, सब कुछ मोबाइल पे,
0: मोबाइल पे ही जाने
1: सारा की सारे रिश्तेदार खा गया ये मोबाइल,
0: बिल्कुल
1: है। आजकल खैरियत पूछनी होगी, पहले हो तो हम जाती थी, चलो जी वो थोड़ा सा बीमार है, चलो हम जी जाएंगे उधर, आजकल

0: मोबाइल्स पे कैसा खरीचा आ रहा है। ठीक है, शायद वो भी नहीं चाहते हैं कि वो लोग आए फिर यहाँ पर, है ना।
1: मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा। जिन दिनों आप मुख्तलिफ प्रोग्राम यहाँ किया करते थे,
0: जी
1: तुम्हें याद हो कि ना याद हो, आपकी फरमाइश जैसा प्रोग्राम, उस दौरान जब आप कहीं दावत पे जाती थीं या किसी फंक्शन में जाती थीं, तो जब आप बात करती थीं, लोग पहचानने लगते थे।
0: नहीं कहते थे, कहता उस मुझे, बस जब मैं बात करती थी मैं जो कहता उस मुझे मिशन याद पे मैं कह
1: आवाज तो उसका तहफ़्फ़ुज़ हो,
0: आवाज नहीं उसको समझ नहीं आ रही थी।
1: अच्छा,
0: कि आवाज दलच मिशा आवाज
1: कि
0: मैं ये मिश कहता उस मुझे तु क्या कर तु कर बहस वन बह रेडियो मुझे ना हाँ अस बूजम तुम आवाज अस प्रजन आवाज
1: माशाल्लाह आपकी आवाज वही आवाज वो अभी भी माशाल्लाह है, और अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: आमीन।
1: जब इंसान के बच्चे होते हैं ना, अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं
0: जी,
1: अगर वो सेटिस्फाई हों अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी इस प्रोफेशन में आए।
0: जी
1: आपने अपने बच्चों में ये रुझान नहीं देखा?
0: नहीं, मैंने नहीं पाया, देखा मैंने अपने बच्चों में रुझान नहीं देखा। मेरी बड़ी वाली बेटी, उसकी जल्दी शादी होगी, वो 12th में पढ़ती थी।
1: हाँ, बहुत जल्दी,
0: बहुत जल्दी शादी होगी। फिर वो दिल्ली चली गई, दिल्ली में फिर उसने एमए इन सोशियोलॉजी वहीं पर किया, दिल्ली में किया। फिर वो 8-10 साल के बाद यहाँ आ गई, तो यहाँ पर वो एज अ टीचर काम करती है। दूसरी बेटी ने MBA किया, उस दौरान तो उसको बस पढ़ाई पढ़ाई की तरफ ज्यादा होता था। फिर उसके दौरान ही पढ़ाई जो ही खत्म होगी तो सेक्रेटरी में उसकी जॉब लग गई जी। फिर शादी होगी तो शादी में ये प्रॉब्लम आ गई, हस्बैंड ने कहा मैं कहाँ जम्मू जा सकता हूँ, 6 महीने उन दिनों जाते थे, 6 महीने इधर 6 महीने इधर, तो उसने जॉब छोड़ दी वो।
1: अच्छा,
0: बच्चे भी हो गया, बच्चे कहाँ रहते हैं, मैं भी जॉब में थी, मैं भी नहीं जा सकती थी उसके साथ जम्मू, हस्बैंड भी अपना काम यहाँ पर करते थे, वो भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो छोड़ दी। अब यहाँ पर वो माशाल्लाह से अच्छा बिजनेस उसने संभाला है, वो अपना बिजनेस खुद करती है। तो बेटी में भी मैंने ये चीज देखी नहीं, बेटा अपने खेल कूद में फुटबॉल वगैरह ये उसमें ज्यादा, जो मेरे में था ना जोश था कि मैं कुछ बोलूं, कि उनमें मैंने वो चीज देखी नहीं, तो मैंने कहा कि ये शायद नहीं चाहते हैं।
1: जो आप में लगन थी ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, वो लगन आपने उनमें
0: नहीं, उनमें मैंने वो लगन देखी नहीं, बच्चों में, तीनों बच्चों में मैंने वो लगन देखी नहीं। अगर मुझे जरा सा लगता शायद मैं यहाँ पर किसी को बोलती, आपको बोलती इसको जरा इसको प्रोग्राम में दे दो, आपको पता लगता ये कैसे है, इसको बोलते या कुछ ना कुछ पता लग जाता, लेकिन मैंने वो चीज देखी नहीं उनमें।
1: जसवीर जी, ये साथ तो ये प्रोग्राम्स कराने से इशू अक क्रिएटिव जॉब अक इशू सन काम छ यत मस छ के चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस इस दरपेश। बाज़ वक्त प्रोड्यूसर इवन ये प्रोग्राम करना है, आपने स्क्रिप्टिंग खुद करनी है, फिर आपको एडिट भी खुद करना है, फिर आपको ये शाम तक कैप्सूल तैयार होना चाहिए, ऐसी कई सिचुएशंस का सामना आपने किया होगा?
0: हुआ है कहीं कहीं, एकदम से किसी की फोत हो जाते थे कोई, तो बोलते थे कि भाई आपको इस बात इस पे प्रोग्राम करना है, वो करना है। तो उस टाइम पर यहाँ पर हमारे कुलीग्स भी ऐसे थे जो मदद करते थे, एकदम से आ जाते थे, स्क्रिप्ट लिखने में मदद करते थे, इतनी ये करना है ये करना, हम आपस में सब मिलके वो प्रोग्राम तैयार करते थे, उसके बाद मैं पेश करती थी वो प्रोग्राम।
1: हाँ, ये तो सही है क्योंकि टीम वर्क है
0: जी, ये
1: रेडियो में
0: टीम वर्क
1: है। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब खुद निगाह रखे हुए हैं
0: जी,
1: और हमारे जो मुआविन हैं वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें
0: टीम वर्क
1: होता है
0: जी।
1: तो बेद करो तो ऐसी तिकाजी वक्त बड़ गनीमती वक्त, तो बे बोझो के क्या बोझन चस्वीदा जी आज बुझो तशिर बी तुम बुझा बी
0: अच्छा मेर बोधी ज्यादा बोझन
1: बुझे दुनिया भर के चलाए हैं
0: बहुत इतने चलाए हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, उसमें भी आपकी फरमाइश में भी, और फिर फौजी भाइयों का प्रोग्राम भी करते थे यहाँ पर, और भी 12 बजे गजलों का प्रोग्राम होता था, लेकिन अब मुझे अपना कश्मीरी गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बोजमन राशिद जहांगीर का एक नगमा है, माई चाइना रोम रात दा,
1: जरूर पेश करेंगे।

0: राशिद जहांगीर की आवाज में आपने कश्मीरी नगमा सुना, ये पसंद थी हमारी आज की मेहमान, हमारी आज की गेस्ट मोहतरमा जसविदा खान साहिबा की। जसविदा खान साहिबा हमारी आज की गेस्ट नशियात में हमारे साथी, हमारी साथी रह चुकी हैं यहाँ, आज सर्विसेज मुखदोश हो चुकी हैं, लेकिन आवाज़ वही, अंदाज वही, अदा वही। आज आप अगर रेडियो सुनती हैं जसविदा जी,
1: जी,
0: तो आज के जो ब्रॉडकास्टर्स आपको सुनने को मिलते हैं, कैसे लगते हैं, उनकी ब्रॉडकास्टिंग का जो सफर है वो आपको कैसा दिखता है?
1: ये मेहनत करते हैं आजकल के बच्चे, मैंने देखे हैं। यहाँ पर जब मैं एज ड्यूटी ऑफिसर काम करती थी तो नए नए अनाउंसर हुआ करते थे, बहुत मेहनत करते थे। और दूसरी बात, जब मैं अनाउंसर लगी हूँ उस वक्त प्रोग्राम होता था देहाती भाई हूँ प्रोग्राम उसका नाम, तथ मजे टेप ऐसे थे, एक मजे स्पोकन वर्ड्स आसान, एक मजे बर्थ, एक मजे आसान
0: चीज,
1: तम सात बड़ मुश्किल असान खड़ा रोज या तो आसान सह वादी की आवाज तथ तो
0: स्पोकन वर्ड
1: अलग, म्यूजिक अलग चला, सू चीज़ आजकल के अनाउंसरन पे फेस कर एकदम से कंप्यूटर पर एकदम से क्लिक किया वो सारा कुछ आ गया।
0: तैयार सिस्टम उनको मिलता है,
1: तैयार सिस्टम मतलब आज के अनाउंसर को तैयार सिस्टम, हमको वो तैयार सिस्टम नहीं मिलता था, अस पे सब टेप तथ मज फ्लैग थे ये स्पोकन वर्ड्स वन तथ मे गलत शब्द खड़ा उस पे अच्छा हेकान कुर्सी पे तम सा बिहित क्या स्पोकन वर्ड्स दोन मिनटन एक मिनटस वल सा वन सा बोझ ये बोध सब बोझ तैयार थोसान अलग चला।
0: जसविदा जी किसको फॉलो करती थी और आपको कौन पसंद थे ब्रॉडकास्टिंग में?
1: मोहम्मद अमीन निजामी साहब मैं उनको बहुत पसंद करती थी, और नूर मोहम्मद लोन साहब के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए, हम कहते थे खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम करती थी मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। लोन साहब ने सिराज मीरानी साहब के साथ भी मैंने कई प्रोग्राम किए हैं, सबके साथ वो तो एक से बढ़कर एक थे। ऐसे रहमान साहब भी थे, जी जी वो भी थे, वो बहुत काम आते थे जब मैं थी, मतलब माइक्रोफोन में बहुत काम आते
0: थे।
1: हाँ जब मैं शुरू शुरू में जब मैं आई तो वो ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं करते थे, वो ज्यादा एज ड्यूटी ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन सिराज साहब हमारे थे उन दिनों, शांता जी भी बहुत, मतलब उन्हीं उन दिनों में लगी थी, जिन दिनों शांता जी थी, सुरजा साहब थी, गिरजा वातल, गिरजा वातल जी थी, हाँ खुशू सा वो क्या है, उपिंदर खुशू साहब थे, या सूर्जा जी थी वो थी, तो ये सारे अनाउंसर से तो
0: यादें बस
1: यादें तो बहुत है,
0: यादें रह जाती हैं।
1: और बहुत प्यार करते थे अपने जूनियर्स के साथ, बहुत अच्छी तरह से, कोई जेलस नहीं थी। आजकल मैंने देखा है कि नहीं सिखाते हैं, मतलब अपने सीनियर्स है वो नहीं सिखाते अपने जूनियर्स को इतनी अच्छी तरह से, लेकिन वो लोग कहते हैं ना हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते थे, नहीं ये करना है ये करना है।
0: मुझे उसमें एक और बात लगती है जसविदा जी, अगर आप मेरी बात के साथ इत्तफाक करेंगी तो,
1: जी
0: जो आप जैसे ब्रॉडकास्टर्स थे या मैं, हमें सीखने की उपज थी।
1: हाँ वो बात थी जी,
0: आजकल के ब्रॉडकास्टर्स में उसका फुकदान है।
1: आजकल के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं क्यों पूछूं उसको, वो कौन होता है कि मैं पूछूं। हमको एक एक पक्के के पास जाना पड़ता था, जरा ही मुझे बताइए ये ना उसमें ठीक है, इसका ये चीज़ है, इसका ये तलफ़ ठीक है कि नहीं। मुझे याद आ रहा है मैंने एक बार अनाउंसमेंट की, उसमें एक वर्ड था, मैंने बोला था तजुर्बा, तो अनाउंसमेंट की मैंने, प्रोग्राम हो गया ब्रॉडकास्ट, उसके साथ फारूक नाज़की साहब ने मुझे फ़ोन किया, बोला ये क्या होना तजुर्बा, ये नहीं चुना तजुर्बा, ये तजर्बा तले वन दही लेट वन में फोन पर मैंने दही लेट वन फोन पर तजर्बा, ये तजर्बा तजर्बा, मैंने भी 10 बार तजर्बा तजर्बा। और ये बात मैं बोली जब मैंने क्लोजिंग की तो मैंने फिर वही तजुर्बा बोला, तजुर्बा दिमाग में ऐसा रहा, टेंशन भी नहीं, वैसे एक अनाउंसर को टेंशन भी नहीं रहा होना चाहिए।
0: सही।
1: आपको पता मेरे फादर जी जब फोर्थ हुए तो मैं ड्यूटी पे थी एज अनाउंसर, स्टूडियो में थी, तो यहाँ पर मुझे याद नहीं कोच अनाउंसर था, तो मेरे कजिन आया, उन्होंने शायद ड्यूटी ऑफिसर से बात की कि इनके फादर की डेथ हुई है, इनको ले जाना है, तो ड्यूटी ऑफिसर ने एकदम से फौरन दूसरे अनाउंसर जब तक नहीं लाया, तैयार नहीं किया, तब तक

0: ने मुझे नहीं बोला। फिर स्टूडियो में आए, फिर मुझे निकाला वहाँ से, वहाँ से फिर दूसरा अनाउंसर बैठ गया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि फादर आपके
1: गुजर
0: गए हैं, आप चलिए।
1: ऐसी चैलेंजेस तो आती रहती हैं
0: जी
1: एक अनाउंसर के लिए। बेचने ब्याह चीज अगर अंदर हाल खबर क्या आस माइक्रोफोन पर चाहिए लिसनर खतर पे
0: बिल्कुल
1: बराबर खड़ा रोज
0: खतर
1: हाँ उनकी तफरी का सामान मैसर करना है।
0: चाहे आपका दिल रोता हो, चाहे आप गमगीन हो, चाहे कोई भी आपके दिल में गम हो, लेकिन आपको लिसनर को बिल्कुल नहीं महसूस करने देना है कि मैं, या ज्यादा खुशी हो कि मैं उनको दिखाऊं कि मैं आज बहुत खुश हूं, या मैं उनको दिखाऊं कि आज मैं बहुत उदास हूं। हमको बिल्कुल पैरेलल रहना पड़ता था एक लिसनर के लिए।
1: इतने साल काम करने के बाद जसविदा जी एक सेटिस्फेक्शन है आपको?
0: बहुत सेटिस्फेक्शन है मुझे, मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया है, ऐसा महसूस होता है कि मैंने कुछ किया है। अभी भी मुझे कोई बोलता है आप प्रोग्राम करती थी, आपका बहुत अच्छा लगता था हमको ये प्रोग्राम,
1: कोई ऐसा तो, प्रोग्राम जसविदा जी कि जो आपको लगता था कि मुझे करना चाहिए लेकिन आपने किया नहीं?
0: हाँ, मैंने विमेंस प्रोग्राम बहुत कम किए, कम नहीं एक दो बार किए हैं, मैं चाहती थी कि मैं करूँ
1: ठीक,
0: तो लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि थे हमारे कैजुअल्स थे जो करते थे ये प्रोग्राम, बहुत सारे अच्छे अच्छे थे वो, बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी भी वो करते हैं, तो वो मुझे मौका नहीं मिला काम करने का, मुझे अच्छा लगता था। क्या अच्छा, अब ये भी बताऊँ मैं आपको, हम कई दफ़ा हम रिकॉर्डिंग बाहर करते थे, जाते थे। एक दिन हम बशार साहब थे मेरे साथ ड्यूटी में,
1: बशार बुखारी साहब
0: जी जी वो थे ड्यूटी पर, शायद मुझे लगता ईद का मौका था, तो यहाँ उन्होंने बोला भाई आप वैन ले जाओ और रिकॉर्डिंग करके आ जाओ, ये जो
1: आउट बेस्ड रिकॉर्डिंग,
0: जी जी ओपी रिकॉर्डिंग, जरा देखो लोगों की तासुरात। तो इतने में हमने एक वो थी, एक भीख मंगन वाली थी, बाहर की थी, तो उनसे अपने पूछा, हमने पूछा कि भाई आप क्यों भीख मांगती हैं और यहाँ क्यों आई, आप जयपुर की रहने वाली
1: है, रिकॉर्ड किया आपने ये?
0: जी जी आप जयपुर की रहने वाली है, यहाँ पर आपने क्यों भीख मांगी? उसने बोला देखिए ऐसा है कि हमारे जयपुर में वो कितना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा देंगे 54 देंगे, 10 पैसे दे देंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो 10 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं, 100 रुपए भी वो देते हैं। उसको इतना ये था कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं, तो वो जयपुर से यहाँ आई थी भीख मांगने के लिए। कभी कभी हम जाते थे गुजर इलाके में, जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनके साथ बात करते थे कैसा लग रहा प्रोग्राम, क्या करना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो प्रोग्राम, क्योंकि ट्रैवलिंग का तो आपको पता ही है मुझे शौक था ये, तो इसी के साथ हम प्रोग्राम भी करते थे बाहर की रिकॉर्डिंग।
1: चलिए जसविदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त हमें दिया, अपने लिसनर्स के साथ बात की, हमारे साथ बात की,
0: ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वसीम फारूक साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे मधु किया, मुझे इस लायक समझा कि आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए बुलाएंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं पता नहीं,
1: लोग आपको बहुत मिस करते हैं, हम जानते हैं,
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम नशरियात में हमारे साथ थी। प्रोग्राम के मेहमान थे मारूफ ब्रॉडकास्टर जसफीदा खान। इनके साथ बात कर रहे थे रशीद निज़ामी और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है वसीम फारूक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शब के 11 बज रहे हैं। अब आइए आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आइए सुनते हैं समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है।

0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए तीन सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said,

6:35 पर, सुबह 7:10 पर आप मॉर्निंग शो पायाम सुबह सुनते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफर नश्र होगा सुबह 8:45 पर। कल के प्रोग्राम का मौजू है आलम मलाइका अलैहिस्सलाम। मुकर्रर है मौलाना फयाज अहमद जरू और इस प्रोग्राम के पेशकार हैं सलीम एजाज कपरा। आज की सुर्खियां आप सुनेंगे सुबह 9:00। सुबह 10:00 पेश होता है प्रोग्राम सूफी सदा। कल के प्रोग्राम का मौजू है मसनवी गुलो सुनो बरज वजाहत तसव्वुफ। मेहमान हैं खुर्शीद जरगर इब्ने अहद जरगर। प्रोग्राम के मेज़बान हैं गुलाम रसूल आखून। इंटरैक्टिव लाइव शो सुबह 10:30 पर पेश होगा। मोहम्मद यूसुफ बेग और साथी सूफियाना मौसीकी में मकामी माज पेश करेंगे सुबह 11:30 पर और मकामी रिहावी दिन में 2:30 पर। चंद फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 12:10 पर। बज़्म-ए- निस्वां प्रोग्राम पेश होगा 12:40 पर। इसमें प्रोग्राम के मेहमान माहिर तालीम शफकत ककरू के साथ बातचीत करेंगी मेज़बान रूबी निसा खान। दिन में 1:10 पर NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग पेश होगा। पहाड़ी प्रोग्राम 4:00 पेश होगा। पंजाबी प्रोग्राम नश्र होगा 4:30 पर। प्रोग्राम पेश करेंगी मनमीत कौर। गोजरी प्रोग्राम शाम 5:00 नश्र होता है। शाम 6:05 पर गनी बाइन हिंद खतर प्रोग्राम में मामूल की नशरियात के अलावा जून ऋषि चौकी बलकोपाड़ा में तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम भी शामिल है। हालात हाजर का प्रोग्राम शहरबीन पेश होगा शाम 7:00। वादी की आवाज़ प्रोग्राम रात 8:00 और रात 8:30 पर स्पॉटलाइट प्रोग्राम पेश होगा। सामिन की तफसील कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले चंद प्रोग्रामों की। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी की श्रीनगर स्टेशन की आवाज़ है। शब के 11:13 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की नशरियात अब यहीं पर बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात लेकर कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

0: In positive market sentiment, the Sensex climbed 521 points to close at 78,285. The Nifty added 160 points to settle at 24,430. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index rose over 0.4%, while the Small-Cap 100 Index gained more than 0.7%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.7% और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो HDFC बैंक 3.5% से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.8% की बढ़त हुई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, Realty jumped 1.8%, Private Bank Index rose 1.5%, and Mid-Small Private Banks Quality Tilt Index added 1.4%. In contrast, PSU Bank Index shed 1%, hospitals as well as IT fell 0.6%.

0: 6%, and focused IT lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,366 declined, 1,985 companies advanced, and 193 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.09 पर कारोबार कर रहा था. दीपशिखा, आज के जो हमारे बाजार की जो चाल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ऐसे किन कारकों को आप मानती हैं जिन्होंने बाजार को तेजी की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं जो बाजार को तेजी की तरफ लेकर गए?
2: प्राची, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एक जो सेंस ऑफ रिलीफ रहा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मोन्स खुल गया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा ईज हो गया है, ऑयल प्राइसेस जो एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो उसके दाम जो है ईज कर रहे हैं, तो उसका एक मिला जुला असर है. दूसरा, जो बाजार में एक ऑप्टिमिज्म है मॉनसून को लेकर के, और जो आप कहें कि तिमाही जो खत्म हुआ है उसमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है, ऐसी उम्मीद है कि जो ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस था उसका उतना खराब असर शायद अर्निंग्स पर नहीं होगा जैसी पहले आशंका की जा रही थी. क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह के आंकड़े आए हैं, अगर आप जीएसटी लें या डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े लें, तो दोनों आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं जैसी आशंका तर ही रहेंगे. तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बाजार में कुछ हद तक दिखाई दे रहा है.
0: Right, Deepshikha, if I may ask you, you mentioned about the first quarter earnings. Of course, it's coming on the 11th. It starts on the 11th of this month. But I would like to draw your attention to the IT sector in particular. You know, the IT kind of in the past 4 or 5 months now, especially after the West Asian crisis, we saw kind of, you know, declining by quite some considerable points. And now, again, you know, you mentioned about the opening of Hormuz and all, tensions easing, so on and so forth. But still, we see that the IT is still kind of being a laggard. So what sense do you get out of this?
2: Nishit, if you look at the tech sector as a whole, and not just in India, if you look at tech sector in other markets as well, other Asian markets, you've seen that this sector has been quite unnerved, and there has been a lot of upheaval which it has witnessed, largely because of what the AI impact would be. There's been an AI rally in the West. Some of the companies are sort of making strides towards aligning with AI. But again, you know, there is apprehension about what would be the impact of AI, especially on the tech sector. So I think that is playing out in a big way. I think once there is clarity on, you know, once these large IPOs sort of come in the US markets of large AI companies, this hype around the AI and its impact sort of make clear. And then probably investors can take a more sort of reasoned view, and they can get a very clear picture of what is going to happen, what would be the way forward for the tech sector.
0: We'll come back to that. But before that, we are joined in by our first caller from Delhi, Amit Jha. Amit, welcome.
3: Namaskar, sir.
0: Namaskar.
3: Deepshikha, madam, namaskar, ma'am.
2: Namaskar, Amit Ji.
3: एक तो निशित सर ने सवाल पूछ लिया है किससे रिलेटेड, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ मेटल के बारे में पूछ रहा था मैम कि हालिया दिनों में पिछले जो तीन महीने में मेटल के स्टॉक्स काफी मैम, तो क्या रीजन था? दूसरी चीज, जैसे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग की बात बताई, तो इतने सारे जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं, तो क्या हमारी कंपनियां फिर भी उसको डिस्काउंट कर देगी इन प्रभावों को? धन्यवाद.
2: अमित जी, पहला आपका सवाल था जो मेटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो मेटल क्षेत्र में अगर आप उस

0: दो भाग में बांट ले, एक तो आपके फेरस मेटल्स हैं और नॉन फेरस मेटल्स हैं। तो फेरस में आप देखें जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है सरकार, उसका फायदा उसको काफी हद तक मिलेगा और वो असर दिख रहा है इन क्षेत्र के स्टॉक्स पर। और अगर आप नॉन फेरस में देखें तो खासतौर से एल्यूमिनियम में जो है वो तेजी आई है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में होता है, ईवी इलेक्ट्रिकल्स में, जहां पे इस्तेमाल जो है उसका बढ़ा है और खपत बढ़ रही है, डिमांड काफी है, तो इसलिए उसका फायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है। कॉपर में काफी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफी हद तक डिमांड जो है इकोनॉमी में कैसी रहती है उस हद तक वो दर्शाता है। और दूसरा आपका जो सवाल था परफॉर्मेंस,
1: यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स,
0: कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के, तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऑप्टिमिज्म है कि उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है जो कंपनीज थी, जो हालांकि सप्लाई चेन्स काफी हद तक डिसरप्टेड थी, तो हैं कि उतना ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है अगर आप आंकड़ों को देखते हैं, तो उसी हिसाब से शायद बाजार जो है वो सेंटिमेंट दर्शा रहा है।
1: राइट,
2: दीपशिखा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ। बहुत हम देखें बहुत सेलिब्रेटेड सेक्टर रहा है कुछ पास्ट वीक्स में, तो इसे आप अब आज्ञा ये इस तरीके से ही रहेगा या इसमें आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव को आप देख पा रही हैं आने वाले समय में, या निवेशकों के लिए? साथ ही मैं आपसे एक राय भी जानना चाहूंगी मगर इसके बाद।
0: प्राची, अगर आप देखें फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफी समय से एक मतलब पॉजिटिव रहा है और काफी निवेशकों को आकर्षित भी किया हुआ है
2: जी।
0: तो ब्याज दरों का मूवमेंट, और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका अपना जो मजबूती है, अपना जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, तो वो सब जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इश्यूज आए थे लेकिन वो कुछ हद तक उनके मैनेजमेंट्स जो हैं वो डिस्पेल कर चुके हैं
2: जी।
0: तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है उम्मीद की जाती है कि गति उसकी बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको सपोर्ट में आगे उसी हिसाब से बढ़ेगा और उसका असर हमें बाजार में दिखाई दे।
1: या प्राची, यू टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, बट दीपशिखा, जस्ट कपल ऑफ डेज बैक वी सॉ प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटिंग दैट सानन प्लांट ऑफ द सेमी कंडक्टर्स, यू नो, वेर इन इंडिया वुड बी प्रोड्यूसिंग दैट प्लांट, द सीजी प्लांट वुड बी प्रोड्यूसिंग मोर देन 5 billion चिप्स, यू नो, एनुअली, एंड दैट्स ह्यूमंगस नंबर considering it's more important, significant rather, when we consider our dependency on, you know, on the chip imports, especially for countries like China and Taiwan, so on and so forth. Because China, as we all know, can be, you know, a very truant kind of a player, you know, every time, all the time. So now with this semiconductor plant coming up, you know, in big numbers, how do you see this sector playing out? And if I may ask you, what sector or what kind of stocks would you mention? I'm not asking about particular stock names and all, but do you see this sector kind of coming up in the coming times, big time?
0: Nishit, you know, it's an interesting sector if you look at. And the semiconductor, the push that has come from the government side is largely because India wants to remain independent. It wants to ensure that its supply chains are totally insulated. And that is where the entire push is coming from, because we were totally dependent for chip manufacturing. Chips are used in everything.
1: Across the board, yes.
0: Across sectors.
1: Yes.
0: So definitely it is a sunrise sector. But we also have to keep in mind the thing one fact, which is technology can become redundant very, very soon. The kind of development that is happening in the chip technology, it is very, very rapid. So if we definitely are able to keep pace with that, then definitely it's a sector which can be looked at. Apart from that, you have drugs and pharma, you have different

0: applications. Mm-hmm. You have some of the sectors which have an interplay with infrastructure development.
1: Electronics.
0: Electronics, definitely. Yes. So these sectors would definitely have a play going forward. Monsoon, if it as is expected, that if it improves, then definitely the demand would be strong. Then some of the sectors which have interplay in the rural demand sector, the consumer, you know, sectors, the FMCG.
1: Absolutely.
2: श्रोताओं कार्यक्रम में आप अपना सवाल लेकर के हम सबसे जुड़ सकते हैं. आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. हमारे साथ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी जुड़े हुए हैं जो आपके तमाम सवालों के तमाम जवाब देंगी. आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज एशिया शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ. ताइवान का ताइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत गिरा, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और जापान का निकी मामूली गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहा. उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की तेजी आई. दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: धन्यवाद मैडम. ये हमें दो बातें पूछनी है. यूलिफ की परिभाषा आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे, क्योंकि हर बार कार्यक्रम में यही बताया जाता है आप यूलिफ के चक्कर में ना फंस जाएं. जैसे बैंकों में जाते हैं तो हमें कुछ नई नई स्कीम आते हैं, एफडी बनाने जाते हैं, तो ये यूलिफ क्या चीज होती है, आप लोग हमें खासकर यही कहते हैं कि यूलिफ मत लेना आप. और दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार की तरफ से अभी ये सुनने में आया जाता है कि इन्होंने महंगा तेल खरीदा था. वो महंगा तेल खरीदा था कितने समय तक, ये तेल वो खत्म हो जाएगा, जो सस्ता तेल आया तो आने वाले समाज में लोगों को सस्ता तेल पेट्रोल मिलना शुरू होगा. धन्यवाद
0: केशव जी. धन्यवाद आपके सवाल के लिए. मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले ले रही हूँ कच्चे तेल के लिए. तो अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें काफी हद तक लॉस बना हुआ है. अगर ये दाम गिरे हुए रहते हैं कुछ अगले 2-3 महीने तक, तब ये लॉसेस जो उनके बुक्स पर हैं वो शायद कवर हो जाएंगे और फिर वो उस स्थिति में होंगे आपको दाम घटाने के. फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो दाम घट पाए. यूलिप्स की आप बात करें और सभी लोग आपको एडवाइस करते हैं उसके खिलाफ, तो यूलिप में जो समस्या रही है, एक तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म निवेश होता है. अगर आप उसको बीच में से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं मिल सकता है. दूसरा, एक वो मिक्स प्रोडक्ट था, उस निवेश के साथ साथ आपको इंश्योरेंस देता था. तो कहा यह जाता है कि या तो आप एक निवेश के लिए आप अलग एक प्रोडक्ट लें और इंश्योरेंस के लिए आप एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें. इंश्योरेंस में आप निवेश नहीं घुसा सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद जो है वो अलग होता है.
1: नेक्स्ट कॉलर इज सेतुपति फ्रॉम चेन्नई. सेतुपति.
4: गुड इवनिंग टीम.
1: गुड इवनिंग
0: सेतुपति.
4: Yeah, this is regarding the ethanol 90% and what time it will be implemented and how much gain we can get, for example, in 0 to 3 years time.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ethanol, I think government is very clear on the implementation plan. They have given some submissions before the Supreme Court also. Government is very, very upbeat on it. There are some issues which have been reported, but I think government has sort of...
1: In fact,
0: they have clarified in a very big way.
1: Yes. In fact, Deepshikha, if I may add to that, there is no fixed kind of a time thing to come up, but yeah, pretty soon Setupati, if I may say, it's going to be implemented pretty soon in a pretty quick timeline.
2: अन्य खबरों में, श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया में जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने 3 देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की. ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और आपसी

0: साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
1: दीपशिखा, इफ यू टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडोनेशिया, द ऑस्ट्रेलियन टूर एंड द न्यूजीलैंड टूर इज ऑल्सो टू कम अप। If we specifically talk of Indonesia, the India-Indonesia ties has been been upgraded to comprehensive strategic partnership in 2018 itself, and the Prime Minister in his departure statement as well said that we are going to take forward this, you know, the partnership to the next level. People-to-people ties, trade, defense, security, so on and so forth. How do you see this?
0: No, absolutely. Indonesia, if you look at even within the India-ASEAN, framework, Indonesia is now one of the number one trading partners. Mm. India imports a lot from Indonesia. So definitely, and what we are trying to do is, and what India has been trying to do is, work with its Asian partners. Create that ecosystem within the Asia. You know, we had the Look East policy, and I think all the entire Indian Ocean initiative.
1: Mahasagar.
0: Yes. So the entire focus is to develop this entire area, entire economy of that area, it is of strategic importance. And now, you know, when we saw what happened with the Hormuz Strait. Mm. So keeping the passages open and all these, I think, are very crucial questions and crucial issues which are on the table, which are likely to be taken up in this three-nation tour.
1: Yes.
2: And Faridabad se hamare saath Sachin jud rahe hain. Sachin ji, kripya apna sawal poochiye.
3: Market Mantra team.
0: Hello, Sachin ji.
3: I am specifically asking a question regarding the defense sector and the commodity gold. So what is your view on a short range, I mean say a short period of 4 to 5 months for defense sector and gold?
0: Sachin ji, you know, you are looking at a very short-term horizon for the defense sector. But if you look at, the emphasis that the government is giving to the defense, it is definitely a sector that should be looked at from medium to long-term. And for short-term, the issue is defense sector stocks have already seen valuations rise. So I would not recommend a very short-term view on this sector.
2: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग मैम, सभी को
2: गुड इवनिंग।
4: आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जैसे मैम इस टाइम नोएडा वो सोना खरीदना ठीक है, और जो रखा हुआ है वो बेच भी सकते हैं नहीं, और चांदी भी, और जिसमें मैम जैसे पहले ज्यादा की जैसे सोना रेट बढ़ गए थे तो सभी ने मैम लेके रख लिया था, अब जैसे रेट डाउन भी हो गए हैं तो क्या हम बेच सकते हैं नहीं, या और भी डाउन हो सकता है रेट अभी या नहीं, या बढ़ भी सकता है बाद में, दोनों बातें हो सकती है, आप बताइए मैम।
0: आकाश जी, सोना जो है अगर आपने देखा कुछ समय से जो है काफी उसमें बहुत तेजी से वो बढ़ा था, और क्राइसिस जब स्टार्ट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बीच में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जब चढ़ना शुरू हुआ था पहले तो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे वो खरीद रहे थे, और अब दोबारा से ऐसा ट्रेंड जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स दोबारा से खरीद रहे हैं सोना, तो उम्मीद की जाती है कि आगे जो है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो सोना जो है उसमें बढ़त हो सकती है।
1: राइट, एंड मूविंग ऑन टू ऑयल सेक्टर नाउ, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल मॉडरेटली टुडे आफ्टर ओपेक प्लस अग्रीड टू फर्दर इंक्रीज इट्स आउटपुट टारगेट्स फ्रॉम ऑगस्ट। Brent crude was trading 0.2% down at $71.95 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.2% down at $68.55 per barrel when reports last came in. Deepshika, your comments on crude, especially, you know, with the opening of Hormuz, even if it's a partial opening, and also, you know, the easing of tension, almost from around $120

ये बाला सुब्रमण्यम की आवाज में था। फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना और आज आपके साथ गीत मेरे मनमीत में है अर्पना। अगला गीत आप सुनेंगे साधना सरगम की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। लीजिए आनंद इस गीत का। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 7.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत मेरे, 11:46 और 24 सेकंड हो चुके हैं। अभी अभी जो आपने गीत सुना वो आशा जी और एस

11:55 और 4 सेकंड हो चुके हैं। अभिजीत की आवाज में फिल्म यस बॉस से ये गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज होगी, फिल्म का नाम है संघर्ष। इस गीत के बाद आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और गीत के साथ ही अर्पना को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में

0: बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं
1: अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया है कि सूडान में पिछले 6 महीनों से जारी युद्ध में 300 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों के शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने उत्तरी कोर्दोफान की राजधानी अल ओबेद में बड़े पैमाने पर संभावित अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध अपराधों को रोकने की अपील की है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अब से थोड़ी देर में 12:30 बजे से पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई को 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15-वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

सावन को आने दो फिल्म से आपने ये गाना सुना। जसपाल सिंह की आवाज में गौहर कानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजकमल। भरी गर्मी, बारिश का बेसब्री से इंतजार, शनिवार और रविवार की छुट्टियों के बाद फिर वही सोमवार की भागदौड़। दिन भर की व्यस्तता और थकान के बाद अब जाकर मिले हैं ये सुकून भरे लम्हात जहां मन ठहर सा गया है। ऐसे ही शांत पलों में पुराने गीतों की मधुर धुनें दिल को सुकून देती हैं और दिन भर की सारी थकान जैसे हवा हो जाती है।

पहली फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

बदलते रिश्ते फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आजकल अपने पसंदीदा गीत सुनने के अनगिनत जरिए मौजूद हैं। मोबाइल, म्यूजिक एप्स और इंटरनेट पर तो बस एक स्पर्श की देरी है और मनचाहा गीत हमारे सामने होता है। लेकिन इन सब के बीच भी जब अचानक रेडियो पर वही पसंदीदा नगमा सुनाई दे जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उस पल की खुशी, वो अनायास मिलने वाला एहसास और उस गीत का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। शायद

इसलिए कि रेडियो सिर्फ गीत नहीं सुनाता बल्कि उनसे जुड़ी यादों, भावनाओं और अनकहे एहसासों को भी फिर से जिंदा कर देता है।

फासले फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 39 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंध के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फासले फिल्म से गाना आपने सुना लता मंगेशकर की, माफ कीजिएगा शंकर हुसैन फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रेडियो पर अचानक अपना पसंदीदा गीत सुनना किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं होता, जैसे कोई बिना बताए हमारी मनपसंद चीज हमें उपहार में दे दे और हमारी खुशी का ठिकाना ना रहे। ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज ही तो जिंदगी को मुस्कुराने की वजह देते हैं, इसलिए रिश्तों में बड़े नहीं छोटे छोटे तोहफों का आदान प्रदान भी होता रहना चाहिए, क्योंकि तोहफों की कीमत नहीं उसके पीछे छिपा अपनापन और स्नेह मायने रखता है। किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाने के लिए कभी कभी बस एक छोटा सा उपहार या प्यार भरा एहसास ही काफी होता है।

योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। और हाँ, हम जब हम छोटे छोटे तोहफों की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत महंगे हों। एक छोटा सा रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता भी किसी के चेहरे पर अनमोल मुस्कान बिखेर सकता है। ये जेब पर भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ता, लेकिन इसकी महक दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी, लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज में। मखदूम मोहिउद्दीन ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात की खामोशी में अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरने वाला रजनीगंधा फूल सचमुच अनोखा है। दुनिया की महंगी से महंगी खुशबुएं भी इसके सामने फीकी सी लगती हैं। एक बार इसे आजमा कर तो देखिए, एक बार किसी को तोहफे में दे कर तो देखिए। यकीन मानिए, इसकी महक इतनी मनमोहक होती है कि रात भर आपका साथ निभाती है और सपनों तक को महका देती है।

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ ही

0: युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराओं कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देश

वक्त हुआ है 1:11 और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

एक दिल सौ अफसाने फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, जैसे इस चमन में फूल ही फूल खिले हों। तुम्हारी मुस्कान से हर सुबह सुनहरी लगती है और तुम्हारी याद से हर शाम सुरमई हो जाती है। जीवन की राहों पर जब भी नजर उठती है, हर दिशा में तुम्हारा ही एहसास साथ चलता है। जैसे फूल अपनी खुशबू से पूरे उपवन को महका देते हैं, वैसे ही तुम्हारा स्नेह मेरे जीवन के हर पल को महका देता है।

बॉयफ्रेंड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। उस नजर को सलाम जिसमें अपनापन भी है, स्नेह भी है और अनकही मोहब्बत का एहसास भी। एक ऐसी नजर जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाती है, थके हुए मन को सुकून दे जाती है और जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बना देती है।

जब प्रेम सच्चा हो तो कदम सोचकर नहीं दिल की धड़कनों के साथ चल पड़ते हैं। उस बेखुदी में मंजिल से ज्यादा साथी का साथ मायने रखता है।

हसीना मान जाएगी फिल्म से ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया, कल्याण जी आनंद जी।

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस

साथ ही फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया नौशाद अली ने। जब कोई दिल में इस तरह बस जाए कि हर ऋतु उसी की खुशबू बन जाए, तब प्रेम शब्दों से नहीं मुस्कुराहटों और एहसासों से जिया जाता है।

लव मैरिज फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। झूमती रात की खामोशी में चांद भी जैसे मुस्कुरा रहा है, दिल की अनकही बातें हवाओं के संग बह रही हैं और हर पल प्रेम की एक नई कहानी बनता जा रहा है।

असली नकली फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सच्चे प्रेम में विश्वास और समर्पण जितना गहरा होता है उतनी ही गहरी उसे संभाल कर रखने की चाह भी होती है। प्रेम केवल खुशी का नाम नहीं बल्कि अपने प्रिय के प्रति संवेदनशीलता, चिंता और उसके साथ हर पल बिताने की आकांक्षा का भी नाम है।

लगती फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। जिससे सच्चा प्रेम हो उसके बिना ना मन को चैन मिलता है, ना जीवन की कोई खुशी पूरी लगती है। उसकी याद हर पल साथ रहती है और मिलन की चाह मन में हमेशा बनी रहती है।

राजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 37 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य

0: श्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said India and Indonesia have elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगदृष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

दिले नादान फिल्म से आपने गाना सुना। लता और किशोर की आवाज में नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात सुरमई हो, चांदनी अपनी नरम चादर बिछा रही हो और हवाओं में फूलों की भीनी भीनी महक खुली हो, ऐसे लम्हों में ये गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो दिल में उतर आते हैं।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। इसे लिखा जानेसार अख्तर ने और संगीत दिया खयाम ने। सुरमई रात ही रात की अपनी ही एक खामोश जुबान होती है। चांद की चांदनी, तारों की टिमटिमाहट और ठंडी हवाओं की सरगोशियां मिलकर ऐसा समा रच देती हैं जहां हर धड़कन किसी भूले बिसरे गीत का सुर बन जाती है।

राम तेरी गंगा मैली से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म से आपने गाना सुना। लता और रफी की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुर से जीवन संगीत बना और संगीत से हर एहसास को एक नई पहचान मिली। कुछ धुने मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ यादों को फिर से जगा देती हैं, तो कुछ चुपचाप दिल की गहराइयों में उतर जाती है। इन्हीं मधुर सुरों के साथ जीवन के हर रंग को महसूस करें, जहां हर गीत एक कहानी है और हर कहानी में धड़कता है एक एहसास।

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि प्यार और खुशियों का निमंत्रण है। आज की ये शाम मुस्कुराहटों, मधुर सुरों और दिलों की धड़कनों के नाम है। आइए संगीत की लय में खो जाएं और इस खूबसूरत शाम को प्यार के रंगों से सजा दें।

लम्हे फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही वंदना चुग के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू

0: कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट इंडियाज लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर व्हिच करंटली एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ अराउंड 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स हैज सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल विद 38 डेवलप्ड कंट्रीज ओपनिंग देयर मार्केट्स टू इंडियन प्रोडक्ट्स थ्रू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स. These countries include the United Kingdom, Oman, the UAE, and several others. Addressing the Council for Leather Exports National Export Excellence Awards 2024-25 in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said that several countries, including Ecuador, are also keen to conclude free trade agreements with India, creating new opportunities for Indian exporters. Reserve Bank of India has announced that the government will auction dated securities worth 32,000 crore rupees on Friday to raise funds

हम राही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीतों को सुनवाने के लिए मैं आ गई हूँ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

आते हैं कि आपका प्यार जिससे है वो आज भी रहे और कल भी रहे। ये गीत आपने सुना जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तेरे मेरे सपने फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। नीरज द्वारा लिखा ये गीत है और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

दोस्तों, दोस्ती में यही फायदा होता है कि हम आपस में एक दूसरे की बात का यकीन किया करते हैं और पहले भी किया करते थे। जो बात कह दी बस पक्की हो गई।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे, जी हाँ, ताजमहल फिल्म से ये गीत था। साहिल लुधियानवी का लिखा गीत था और रोशन का संगीत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.1 MHz पर FM गोल्ड चैनल, और कार्यक्रम चल रहा है हमराही।

0: तीन देवियां, फिल्म से भी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीत दिया था एसटी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे सच्चा झूठा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ है, इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: यूं ही तुम

और अब अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों का।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हमरा ही, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

चोरी चोरी, इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। हंसराज जयपुरी की शब्द रचना थी और संगीत था शंकर जयकिशन का। अगला गीत आप सुनेंगे राज फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है, गुलशन बावरा का गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, दिल में कितनी बातें होती हैं ना। कुछ बातों को आप अपनों से साझा कर देते हैं और कुछ हम अपने जहन में दबा कर चलते रहते हैं, लेकिन जो असली दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपका साथ नहीं छोड़ते और ना ही आपकी बात का तमाशा बनाते हैं। होता है ना ऐसा, वही सच्चे दोस्त होते हैं। और अब अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

दोस्तों, अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की लिखी रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों जी तो हमारा भी नहीं करता कि हम आपको छोड़कर जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। समय कह रहा है कि अब चले जाना चाहिए, लेकिन अगले कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। ब्रिक्स की नशीली दवाओं के खिलाफ एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कल गुवाहाटी में शुरू हुई। गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। श्री गर्ग ने कहा कि आधुनिक मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क, डार्क नेट प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, नए मनोसक्रिय पदार्थों और समुद्री मार्गों के माध्यम से सीमाओं के पार काम करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। यूक्रेन ने रूस में साइबेरिया के ओम्स्क स्थित सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। स्थानीय अधिकारियों

ने हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि हमले के कारण ओम्स्क रिफाइनरी में आग लग गई। ये रिफाइनरी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से लगभग 2,700 किलोमीटर दूर और कजाकिस्तान के साथ रूस की सीमा के करीब है। इस क्षेत्र के गवर्नर विटाली खोत्सेनको ने कहा कि रूसी वायुसेना ने हमले में शामिल अधिकांश ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समयानुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: ले।
1: कुछ गीत तो ऐसे होते हैं, दिल करता है हम भी साथ साथ गुनगुनाते रहें। मना किसने किया है? जी हाँ, गुनगुनाइए ना। दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म से आपने गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, सोनिक अमी का संगीत था और जीएल रावल की रचना थी। अगला गीत आप सुनेंगे फागुन फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, कमर जलालाबादी की रचना है और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने।

0: दोस्तों कितने अच्छे लगते हैं ना ये गीत, और जब जब सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि लाइंस जो है बहुत अच्छे तरह से रट गई हैं। और पहले तो भगवान कृष्ण के जो भजन है लोग इन गीतों के माध्यम से इन्हीं धुन पर ही बना लिया करते थे। खैर, अगला गीत आप बताएंगे कि ये कौन सी फिल्म का है।
1: Yeah.

आपको मैं बता देती हूँ, ये फिल्म थी नई राहें और आवाज हेमंत कुमार की और लता मंगेशकर की थी। गीत को लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत से संवारा था रवि ने।

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में गीत सुन रहे हैं आप अपने दोस्त वंदना चौक के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप इन गीतों को सुनते हुए आनंद उठा रहे होंगे और साथ ही साथ गुनगुना भी रहे होंगे।

मदारी फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। फारूक कैसर ने गीत के बोल लिखे थे और तर्ज बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी ने। और अब अगला गीत आप सुनेंगे धरती कहे पुकार के। इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सच में जो मेहनत करना जानता है धरती उसे पुकार कर कहती है कि मुझे छू लो, और जो मेहनत करता है ना दोस्तों वो बहुत कुछ सहन करके आगे बढ़ जाता है और अपना नाम रोशन कर ही देता है। पैसों से शोहरत नहीं बनाता बल्कि कर्म करके ही शोहरत कमाई जाती है।

दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमारे साथ कोई साथ देता है किसी काम में, और साथ देने से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हमें साथ मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। घर में भी हम लोग जब काम करते हैं, हमारे घर के सदस्य जब आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। साथ ही साथ समय की भी बचत होती है और काम जल्दी निमट जाता है, फिर हम आराम से बैठ भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप को जहाँ भी मौका मिले, आप अपनों की तो कम से कम ज़रूर मदद कीजिए, ताकि हर कोई एक दूसरे को सहारा समझे और एक दूसरे का सहारा बने। हर कोई ये सोचे कि कोई काम करना किसी के लिए या किसी के ऊपर बोझ नहीं है, हमारे अपने हैं जिनका हम साथ दे रहे हैं।

यादगार फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी ने। अगला गीत आप सुनेंगे बैजू बावरा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शकील बदायूनी की रचना है और संगीत नौशाद का।

जी हाँ दोस्तों, साथ ऐसा ही होना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में दी गई चीज़ों का उदाहरण दे सकें। और अब अगला गीत श्री 420 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ में। आपको ज़रूर समझ आ गया होगा ये कौन सा गीत बजने वाला है।

दोस्तों, अब अगला गीत आप सुनेंगे। आपको ये गीत पसंद जरूर आएगा और ये कहना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं और इस फिल्म में, और फिल्म का नाम तो आप जान ही जाएंगे कि ये कौन सी फिल्म है। और साथ ही ये भी सोचना पड़ेगा कि जब इस गीत को लिखा गया तो लिखने वाले ने भी ज़रूर ईश्वर की रचना को बहुत सोच विचार किया होगा और ईश्वर ने भी तो सोचा होगा कि मैं जिस इंसान से इतनी उम्मीद करता हूँ, यहाँ से भेजता हूँ, वो जाकर भूल जाता है क्या? आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया है कि कौन सी फिल्म है, किसका गाया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मुकेश का गाया ये गीत है।

दोस्तों, इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और मुकेश ने अपनी जादुई आवाज़ में गाया था और फिल्म तीसरी कसम से ही गीत था। वाकई में ही धन दौलत सब यहीं रह जाएगा और अंत में सभी को भगवान के पास जाना है। खैर, अब समय हो रहा है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में खतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। रूस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा

FM गोल्ड्स पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अब कार्यक्रम होगा भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जय किशन का संकेत। दोस्तों, अकेले में इंसान अपनी बात को केवल उसे ही सुना सकता है ना जिसे वो सच्चा प्यार करता है और उसे मालूम है कि उसके भावों को कोई समझ नहीं सकता केवल उसके अलावा।

काबुली वाला फिल्म से गीत आपने सुना, हेमंत कुमार का गाया हुआ, गुलजार के बोल थे और सलील चौधरी का संगीत। दोस्तों, बहुत सी बातें हमारे उपनिषदों में कही गई हैं, फिर भी हम ना जाने क्यों इधर उधर उलझते रहते हैं।

सच बात है कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसे ही फल पाता है, और उसकी शक्ति में कोई संदेह नहीं है। हम जैसा उसे मानते हैं वैसा ही पाते हैं।

दोस्तों, जब हमारी नैया भवसागर में फंस जाती है तो केवल उसका ही सहारा लिया जाता है और उसे ही पुकारा जाता है। सन्यासी फिल्म से उसे पहले आपने गीत सुना और ये रचना थी भक्ति में शक्ति फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, और इस कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।